0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति

0: ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

प्रार्थना से हमारे हृदय के कलुष ही दूर नहीं होते, बल्कि परमात्मा के प्यार का असीम आनंद, सानिध्य और प्रेम भी मिलता है। हाँ, यदि प्रार्थना करने के लिए खड़े होते समय मन में किसी के लिए द्वेष आए, विरोध आए, किसी का अपराध स्मरण हो, तो उसे प्रार्थना से पूर्व क्षमा कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मन का विरोध और आत्मा का द्वेष प्रार्थना के शब्दों को दूषित कर देते हैं। सबके दोष दुर्गुण भूलकर सबकी सेवा और उन्नति करना भी प्रार्थना है। ये प्रार्थना उन सब प्रार्थनाओं से अच्छी है जिसमें भगवान का नाम तो है पर अंतःकरण की पवित्रता नहीं है। प्रार्थना का बीज पवित्रता की ही भूमि पर अच्छी तरह अंकुरित, पुष्पित और पल्लवित होता है। उसी में अच्छे फल लगते हैं, उसी से मनुष्य को प्रार्थना का आनंद मिलता है।

ईश्वर से प्रेम ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अच्छे कर्मों से ही आप ईश्वर को पा सकते हैं। अच्छे कर्म करने वालों की ही ईश्वर मदद करते हैं।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ईश्वर के अनेकों रूप अनेकों नाम हैं और अनेकों तरीकों से ईश्वर की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है।

ये थी वंदना कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:40 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं श्री राम चरितमानस गान।

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरितमानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है। सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। गाने सुहाने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर। सुबह 9:00 होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। गीतों का कारवां कार्यक्रम पेश किया जाएगा सुबह 10:00। 10:30 पर सुनिएगा हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। गूंज पहाड़ों की ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:05 पर। 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम लेकर हम आएंगे दोपहर 12:00। 12:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा सुनो सखी। दिन में 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: फिल्मों से भजन आपको सुनवाएंगे शाम 5:10 पर। 5:25 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युवा मंच। आज सुनिए सैर सपाटा, सुरमई सांझ। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:05 पर। शाम 6:30 पर मौजा गराएं दिया कार्यक्रम का विषय रहेगा बरसात के मौसम में बेलदार सब्जियों की देखभाल। किसान वाणी कार्यक्रम शाम 7:10 पर आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 8:00 विधानसभा समीक्षा आकाशवाणी शिमला से रिले की जाएगी। देशभक्ति गीत आपको सुनवाएंगे रात 8:30 पर। रात 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए गायक के द्वारा गाए चुनिंदा फिल्मी गीत धाम गीता दी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 10:30 पर सुनिएगा पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रातः 9:20 पर सुबह 11:00 दोपहर 3:00 शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और सभा के अंत में 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रिचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवकूटनीतिज्ञान् स्वनियुक्ति देशेषु जनस्तरे दृढसंपर्कं स्थापयितुं तथा स्थानीय समुदायैः सह भारतस्य सम्बन्धान् अधिकं सुदृढीकर्तुं च प्रेरितवान्। सेवातीर्थे भारतीय विदेश सेवायाः गतवर्षीय समूहस्य प्रशिक्षु अधिकारिभिः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी तान् पारंपरिक कूटनीतिक वृत्तेः परे स्वसंपर्क जालस्य विस्तारं कर्तुं अथ जनैः सह संपर्कं च सुदृढीकर्तुं प्रोत्साहितवान्। असौ भारतस्य रिक्थ सम्बद्ध शक्तीनां प्रौद्योगिक्या नवोन्मेषेण प्रभावी संप्रेषणेन च सह संयोजनं कृत्वा भारतस्य वैश्विक संपर्कं अधिकं सुदृढीकर्तुं प्रेरितवान्। असौ भारतीयोपक्रमाणाम् अंकीयोपस्थितिं सुदृढीकर्तुं महत्त्वमपि प्रतिपादितवान्। विश्वस्य युवकेषु भारतं प्रति अधिकरुचिं जनयितुं भारत को जानिये इत्येतस्य प्रश्नोत्तर कार्यक्रमस्य उपयोगस्य असौ परामर्शं प्रदत्तवान्। प्रशिक्षु अधिकारिभिः स्वप्रशिक्षणस्य भारतदर्शनस्य च अनुभवाः अभिव्यक्ताः। अस्मिन् समूहे देशस्य विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च आगताः 50 भारतीय विदेश सेवा प्रशिक्षुअधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सर्वेभ्यः संस्थानेभ्यः अन्तःप्रवेशस्य विरुद्धं कठोर पदक्षेपानि स्वीकर्तुं निर्देशं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् ऐषमः नवम राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्रीशाहः निर्देशितवान् यत् बहुसंस्थानकेन्द्रस्य मञ्चे उपलब्धानां सूचनानां कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः आधारेण विश्लेषणं करणीयं येन विविध राष्ट्रीय सुरक्षा आह्वानानां प्रतिकाराय मानक संचालन प्रक्रियाः निर्मातुं शक्यन्ते। सम्मेलनस्य प्रथमदिने राष्ट्रीय सुरक्षायाः महत्वपूर्णेषु पक्षेषु चर्चा अभवत्। तेषु आतंकवाद विरोधी आह्वानानां प्रतिकारः, बहुसंस्थान केन्द्र माध्यमेन गुप्त सूचनानां एकीकरणं, विश्लेषणं कार्यान्वयनं च, मादक द्रव्याणां नियंत्रण संबद्ध दृष्टिपत्रम्, अवैध प्रवासिनां परिचयः निर्वासनं च, तथा तेषां प्रतिकाराय नीति निर्माणं इत्यादयः विषयाः सम्मिलिताः आसन्। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः क्रेमलिन इत्यत्र रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। उपवेशने द्विपक्षीय व्यापारः, आर्थिक सहयोगः अथ आगामी उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनानि चेत्यादिषु विषयेषु चर्चा अभवत्। रूस स्थितः भारतस्य राजदूतः विनय कुमारः एवञ्च संयुक्त सचिवः मयंक सिंहः अपि भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य सदस्यौ आस्ताम्। उपवेशनावधौ डॉ एस जयशंकरेण विशेषतः आर्थिक सहयोगे, व्यापार क्षेत्रे अथ ऊर्जा क्षेत्रे
2: कार्य करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने उन्हें पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। दो दिन की इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को

0: पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। टोरंटो में अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपानियो के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद में भाग लेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। इसमें शिक्षण संस्थानों में खेलों को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने और युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने पर बल दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान एसएलआर, राइफल, बीजल लॉन्चर और थूथन लोडिंग बंदूकों सहित 23 हथियार बरामद किए गए। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमरीका की वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service, IFS, at Seva Tirth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. He encouraged them to combine India's civilizational strengths with technology, innovation, and effective communication to further strengthen India's global engagement. The Prime Minister called upon the officer trainees to serve as a catalytic agents for India's economic engagement with the world. He also emphasized the importance of strengthening the digital presence of Indian missions. Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi yesterday, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center platforms should be done to create standard operating procedures to counter various national security challenges. To effectively tackle terrorism and radicalization, Mr. Shah emphasized training for implementation of the Home Ministry's Prahar scheme, expediting trials by bringing back fugitives and utilizing trial in absentia provisions, and undertaking a comprehensive and integrated approach while investigating cases. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation, and upcoming high-level summits.

वो करने का प्रयास करो। जी हाँ, हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नए विचार के साथ आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए।

जी हाँ श्रोताओ, आज का दिन बहुत बहुत खास है। कहीं धूप खिली है तो कहीं बादल छाए हैं, कुल मिलाकर दिन सुहावना है। और श्रोताओ, आज 25 अगस्त है। अब आज के इतिहास के पन्नों पर नजर डालते हैं। आज के दिन 25 अगस्त 1957 को भारत की पोलो टीम फ्रांस में खेली गई विश्व पोलो चैंपियनशिप में विश्व विजेता बनी थी, जो भारत के लिए बड़ी गर्व की बात थी। अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का निधन आज ही के दिन 25 अगस्त 2012 को हुआ था। ये एक अमेरिकी खगोल यात्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। महान आविष्कारक जेम्स वॉट का निधन भी आज ही के दिन 1819 में हुआ था। अमेरिकी स्पेस क्राफ्ट वॉयजर 1 25 अगस्त 2012 को स्पेस में एंटर हुआ था। आज ही के दिन 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में भारत के शॉटपुट एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने रिकॉर्ड प्रदर्शन कर सोने का तमगा हासिल किया था। 1991 में आज ही के दिन बेलारूस सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश बना था।

और जिन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। 25 अगस्त 1944 को भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट का जन्म हुआ था। फिल्म अभिनेता राजीव कपूर का जन्म 1962 में आज ही के दिन हुआ था।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, डॉक्टर कृपानंद वरियार स्वामीगल की जयंती भी आज ही के दिन मनाई जाती है। इनका जन्म 1906 में आज ही के दिन हुआ था। ये एक प्रसिद्ध तमिल आध्यात्मिक वक्ता थे। और आज ही से केरल का पहला प्रसिद्ध त्यौहार ओणम भी मनाया जा रहा है। ओणम केरल का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्यौहार है, जो राजा महाबली के स्वागत, अच्छी फसल की पैदावार और समृद्धि की खुशी में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन दानवीर असुर राजा महाबली अपनी प्रजा को देखने धरती पर आते हैं। त्यौहार के दौरान रंग बिरंगे फूलों से खूबसूरत रंगोली बनाई जाती है। इस दिन शाम को 20 से अधिक व्यंजन केले के पत्ते पर परोसे जाते हैं और पंपा नदी पर पारंपरिक सर्प नौकाओं की भव्य दौड़ आयोजित होती है, जिसे बल्लम कली कहते हैं। आप सभी को ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए मिलजुल कर इस गाने के साथ हम भी मनाते हैं ओणम को।

जी हाँ श्रोताओ, त्योहार हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो किसी की अंधेरी दुनिया को खुशियों के सारे रंग से भर सकती है। जी हाँ, आज से शुरू हो रहा है नेत्रदान पखवाड़ा और इसका सीधा सा मकसद है उन लोगों तक रोशनी पहुंचाना जो दृष्टिहीनता के कारण इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख पाते हैं। आपकी एक छोटी सी पहल किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। एक दान दो चेहरों पर मुस्कान ला सकता है। दान में दी गई रोशनी किसी की भी जिंदगी को संवारती है और इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं है। भारत में हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मरणोपरांत नेत्रदान करने के लिए प्रेरित करना है और दृष्टिहीनता के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही समाज में नेत्रदान से जुड़े भ्रम को समाप्त करना भी है।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर। सुजानपुर स्कूल की प्रधानाचार्य शिक्षक मंजरी ने पर्यावरण संरक्षण से बनाई पहचान, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और सामुदायिक सहभागिता के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 21 स्थानों पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए जल्द शुरू होंगे चार्जिंग स्टेशन। बीपीएल से छूटे परिवारों को अंतिम मौका, 20 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। कांगड़ा जिले के सुलोह में 28 अगस्त से शुरू होंगे गुग्गा छतरी के मेले। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीएड की खाली सीटों के लिए 26 और 27 अगस्त को ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। डिजिटल लेन देन की क्रांति को 10 साल हुए पूरे, अगस्त 2016 में शुरू हुए यूपीआई का सफर करोड़ों के लेन देन तक पहुंच गया है। अब मौसम का हाल। 25 से 27 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी बारिश से राहत मिलने और छिटपुट बौछारें पड़ने की संभावना है।

0: श्रोताओं, इसी के साथ सुबह सुहानी कार्यक्रम का सफर यहीं पर रुकता है। अगले प्रोग्राम के साथ थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं। सुनते रहिए FM धर्मशाला।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:55 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएगी।
1: कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
4: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
5: उथराधम सिर्फ तिरुओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उथराधा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पोकलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
6: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच अखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।

0: जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेनदेन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay, the headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Union Home Minister Amit Shah asks all security agencies to take strict measures against infiltration. UPI completes 10 years of digital payments revolution, clocks nearly 13,000-fold rise in transaction volume. Government lifts export restrictions on wheat, flour and related products. BJP to contest all 117 seats in upcoming Punjab Assembly elections. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. And in men's cricket, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal give India command over Sri Lanka in the second and final test in Colombo. Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service IFS at Seva Tirth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. We have more from a correspondent.
4: Mr. Modi encouraged the officer trainees to combine India's civilization strength with technology, innovation, and effective communication.

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं गाने सुहाने। गाने सुहाने कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं समीर के लिखे गीत के साथ। शंकर एहसान लॉय की जोड़ी का संगीत है, आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, फिल्म है मिशन कश्मीर।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए हिमाचली गीत और लोकगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं करनैल राणा का गाया हुआ ये लोकगीत।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
1: कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
2: इतना इजी?
1: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
6: हिमाचली गीत और लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब सुनिए जोगिंदर सिंह को।

0: इसी के साथ हिमाचली गीतों और लोक गीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला।
1: हेलो धर्मशाला, हेलो धर्मशाला,
0: हेलो धर्मशाला। इस कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त संगीता। और आज के कार्यक्रम में हम लाए हैं आपके लिए कुछ नई कुछ पुरानी फिल्मों का गुलदस्ता, और गुलदस्ते में है पूरी 11 फिल्में। तो सबसे पहले उनके नाम आपको बता देते हैं। फिल्में हैं धड़कन, घर, हरे रामा हरे कृष्णा, हिना, जुदाई, जुड़वा 2, कच्चे धागे, कोयला, मासूम, मिस्टर इंडिया और अनपढ़। इन फिल्मों से आज के कार्यक्रम में आप कोई भी गीत सुन सकते हैं, और गीत सुनने के लिए आपने नोट करना है टेलीफोन नंबर, और टेलीफोन नंबर है 01892224391, 01892224391। तो जल्दी से मिलाइए टेलीफोन और सुनिए अपनी पसंद के गीत इन फिल्मों से। हेलो,

0: 01892224391 ये है टेलीफोन नंबर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग जी।
1: जी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद
0: जी।
1: बढ़िया है, अच्छे हैं
0: जी। बताइए और क्या नया ताजा चल रहा है जी। फोन लाइन कट चुकी है और हम इनकी पसंद भी जान नहीं पाए हैं। कोई बात नहीं, हम चाहेंगे दोबारा हमें फिर से फ़ोन करें। और श्रोता सबसे पहले अपना नाम और फिल्म का नाम बता दे तो बहुत अच्छा रहेगा। हेलो हेलो, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। हेलो, दोबारा से कॉल कीजिएगा और सिग्नल में रहकर बात अगर करें तो बहुत ही अच्छा होगा। हेलो हेलो
2: हेलो, अनपढ़ फिल्म का गीत, अनपढ़
0: जी, अनपढ़ फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे?
2: राखी वाला गीत।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, राखी वाला गीत सुनाएंगे। अपना नाम तो बताइए।
2: अजय गुप्ता से बोल रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत उससे पहले कि फोन लाइन कट जाए। बिल्कुल जी, कॉल किया, धन्यवाद
2: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: बहन जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है जगदीश साहब आपका।
1: धन्यवाद बहन जी,
0: जी
1: आपका भी हम स्वागत करते हैं।
0: हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
1: बहन जी, पुरानी फिल्म अनपढ़
0: अनपढ़ का गीत अभी हम आपको सुनवा चुके हैं, रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना।
1: मैंने
0: जी
1: दूसरा सुनना था जी, ऐसी में प्यार किया तुम।
0: चलिए अगली बार इस गाने को हम आपको सुनवाएंगे, फिलहाल तो ये जो फिल्म है उसका गीत हम
1: और कोई
0: सुनवा चुके
1: पुरानी
0: हैं।
1: फिल्म, और किसी पुरानी फिल्म का गीत कोई बता दो, कोई
0: जी
1: पुरानी।
0: फिल्म में हमने रखी हैं धड़कन, घर, हरे रामा हरे कृष्णा, हिना, जुदाई, कच्चे धागे, कोयला, मासूम, मिस्टर इंडिया। हरे रामा
1: चलो
0: हरे
1: मैं
0: कृष्णा
1: हरे रामा
0: फिल्म।
1: हरे कृष्णा का सुनवा देना बहन जी,
0: जी बिल्कुल जी,
1: फूलों का
0: कौन?
1: तारों का सबका कहना है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, ये वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं और आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद बहन जी,
0: जी।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो धर्मशाला, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। 01892224391 यह टेलीफोन नंबर, और इस नंबर को डायल करके आप जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के साथ। हेलो।
4: हेलो, नमस्कार
3: जी। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
4: अमीरचंद बोल रहा हूँ।
3: कहाँ से? जी ज्वाला जी से।
4: अमीरचंद ज्वाला जी, लाहौर
3: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिल्म का नाम बता दीजिए पहले, कौन से फिल्म का गीत सुनेंगे?
4: कोयला। कोयला,
3: कोयला का जी। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे जी? इनका फोन जो है वो कट चुका है, लेकिन इन्होंने अपनी फरमाइश बताई है, कोयला फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं और इनको हम सुनवा रहे हैं कोयला फिल्म से ये गीत है।

हेलो धर्मशाला, इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद भी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:20 होने को है। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जुड़ाव को मजबूत और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने का किया आह्वान। विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज चौथी बैठक, रोजगार गारंटी, जल विद्युत रॉयल्टी पर होगी चर्चा, सदन में किसानों से संबंधित मुद्दे भी उठेंगे। मेरा युवा भारत कार्यक्रम के तहत कुल्लू के बजौरा में 3 दिवसीय फ्यूचर यूथ लीडर्स बूट कैंप का आयोजन। युवाओं को नेतृत्व व राष्ट्र निर्माण का दिया जा रहा है संदेश। और आधिकारिक तौर पर 4 सितंबर से शुरू होने वाली चंबा जिला की पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए आज से शुरू होगी हेलीटैक्सी सेवा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा IFS के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ जुड़ाव को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र की आज चौथी बैठक है। सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। सत्र में रोजगार गारंटी और जल विद्युत रॉयल्टी मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा किसानों के मुद्दे भी सदन में उठेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: मॉनसून सत्र की पिछली 3 बैठकें कई मुद्दों पर हंगामेदार रही हैं। इस दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। सदन में आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राज्य औद्योगिक विकास निगम का 2020-21 और हस्तशिल्प हथकरघा निगम के 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। इसके अलावा नियम 62 के तहत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे, जिसमें विधायक कुलदीप सिंह राठौर प्रदेश के किसान बागवानों को दिए जा रहे कीटनाशकों की गुणवत्ता का मुद्दा उठाएंगे, जबकि विधायक पवन काजल गग्गल में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना का मामला सदन में उठाएंगे। नियम 130 के तहत युवाओं के लिए रोजगार संबंधी गारंटी के कार्यान्वयन के बारे में प्रस्ताव पर सदन में आगे चर्चा शुरू होगी। आज भी पक्ष और विपक्ष के बीच कई जनहित के मुद्दों पर टकराव देखने को मिल सकता है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: व्यावसायिक प्रशिक्षक कल्याण संघ की विभिन्न मांगों व सेवा संबंधी मुद्दों पर कल विधानसभा परिसर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री ने व्यावसायिक प्रशिक्षुओं द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए अन्य मांगों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न मांगों की व्यावहारिकता, वित्तीय प्रावधानों व नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पर भी विचार विमर्श किया। मेरा युवा भारत कार्यक्रम के तहत कुल्लू स्थित कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा में 3 दिवसीय फ्यूचर यूथ लीडर्स बूट कैंप का आयोजन किया गया है। शिविर का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अभिषेक एस ने किया। इस मौके पर अभिषेक एस ने युवाओं को संवैधानिक मूल्यों, नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य व नेतृत्व क्षमता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं का मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उन्हें देश के मूलभूत संवैधानिक मूल्यों का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। शिविर के पहले दिन विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों ने युवाओं को नेतृत्व कौशल, प्रभावी संचार, डिजिटल व वित्तीय साक्षरता सहित शासन व्यवस्था की मूलभूत अवधारणाओं से अवगत करवाया। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अखिल भारतीय समन्वित बकरी सुधार परियोजना गद्दी क्षेत्र इकाई के तहत चारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य गद्दी नस्ल की बकरियों के लिए गुणवत्तापूर्ण हरे चारे की उपलब्धता बढ़ाना व पशुपालन को बढ़ावा देना था। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अवनिंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ताओं ने कहा कि चारा वृक्षारोपण से न केवल पशुओं के लिए चारा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और टिकाऊ पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
3: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंबा जिले में आधिकारिक तौर पर 4 सितंबर यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू होने वाली पवित्र मणिमहेश यात्रा के दृष्टिगत आज से हेलीटैक्सी सेवा शुरू हो रही है। ये सेवा श्रद्धालुओं को 20 सितंबर तक मिल पाएगी। हमारे जिला संवाददाता के अनुसार भरमौर से गौरीकुंड तक हेलीटैक्सी सुविधा मिलने के साथ इस बार होली से गौरीकुंड तक भी यात्रियों को ये हेलीटैक्सी सेवा मिल पाएगी। इसके लिए 4 हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं देंगे। भरमौर से गौरीकुंड का एक तरफा किराया 3,828 रुपए, जबकि होली से गौरीकुंड के लिए एक तरफा किराया 6,255 रुपए निर्धारित किया गया है। यह पवित्र यात्रा 19 सितंबर तक चलेगी। गौरतलब है कि मणिमहेश में पवित्र डल झील में स्नान करने और कैलाश दर्शन के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मंडी जिला के सुंदरनगर स्थित कृषक प्रशिक्षण केंद्र में जायका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिले के 36 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
4: प्रशिक्षण के दौरान स्वयं सहायता समूह के गठन और संचालन, बजट, बैंक खाता प्रबंधन, नेतृत्व विकास, क्षमता निर्माण और विवाद समाधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। प्रशिक्षुओं को समूह बैठकों के आयोजन, जरूरी दस्तावेजों के रखरखाव, पारदर्शिता, आपसी विश्वास और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के महत्व से भी अवगत करवाया गया। विशेषज्ञों की टीम ने निर्माण फेडरेशन से जुड़ाव, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं, अभिसरण और डिजिटलीकरण की जानकारी भी साझा की। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के अंत में कृषक प्रशिक्षण केंद्र के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीश कुमार जंजीहा ने सभी प्रशिक्षुओं का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: हमीरपुर जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने कहा है कि जिला में 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों को सर्विकल कैंसर से बचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए HPV टीकाकरण अभियान के तहत 1,550 लड़कियों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिले में इस अभियान का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए अब स्कूल स्तर पर विशेष फोकस किया जाएगा। लाहौल स्पीति जिला के काजा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय लादरचा मेला शुरू हो गया है। विधायक अनुराधा राणा ने काजा गोम्पा से शुरू हुई शोभा यात्रा में शामिल होकर मेले का शुभारंभ किया। इस शोभा यात्रा में विभिन्न गोम्पाओं के लामा चोमो, स्थानीय लोग, सांस्कृतिक दल और अन्य कलाकार शामिल हुए। इस मौके पर अनुराधा राणा ने कहा कि मेले और त्योहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है, जो आपसी भाईचारे और सौहार्द को मजबूत करते हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में धूप खिलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मॉनसून सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, विधानसभा में सीएम बोले 2 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 1500। दिव्य हिमाचल के शब्द है, 2 अक्टूबर से 2 लाख परिवारों को 1500 रुपए और 300 यूनिट बिजली। दैनिक जागरण व हिमाचल दस्तक का एक जैसा शीर्षक है, खरीद फरोख्त के पैसे खत्म, इसलिए खाली अटैची लेकर घूम रहा विपक्ष। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जुड़ाव को मजबूत और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने का किया आह्वान। विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज चौथी बैठक, रोजगार गारंटी, जल विद्युत रॉयल्टी पर होगी चर्चा, सदन में किसानों से संबंधित मुद्दे भी उठेंगे। मेरा युवा भारत कार्यक्रम के तहत कुल्लू के बजौरा में 3 दिवसीय फ्यूचर यूथ लीडर्स बूट कैंप का आयोजन। युवाओं को नेतृत्व व राष्ट्र निर्माण का दिया जा रहा है संदेश। और आधिकारिक तौर पर 4 सितंबर से शुरू होने वाली चंबा जिला की पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए आज से शुरू होगी हेलीटैक्सी सेवा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
3: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
5: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
3: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
5: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:30 हुए हैं। हेलो धर्मशाला कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और अब जो फिल्में हमारे पास हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। मिस्टर इंडिया, मासूम, कच्चे धागे, जुड़वां 2, जुदाई, हिना, घर और धड़कन। इन फिल्मों में से अब आप कोई भी गीत सुन सकते हैं। हेलो 01892224391 यह है टेलीफोन नंबर, और इस नंबर को डायल कर जुड़ चुके हैं अगले कॉलर। हेलो
7: मैडम जी, मासूम फिल्म का गाना सुनाएंगे
6: जी। मासूम फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे?
7: कोई भी सुना देना। विनोद कुमार बोल रहा है 16 पालतर से
6: जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, और बताइए क्या कर रहे हैं?
7: बस मैडम जी बैठे हैं।
6: बैठे हैं, रेडियो सुन रहे हैं जी।
7: रेडियो सुन रहे हैं।
6: अच्छा अच्छा, चलिए।
7: गर्मी बहुत हो रही है
6: जी, बारिशें बहुत हुई, अब धूप हो रही है तो साथ ही साथ गर्मी भी हो रही है जी। कॉल कट चुकी है इनकी, और मासूम फिल्म का ये गीत उनकी पसंद पर आप सबके लिए।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो धर्मशाला, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हेलो 01892224391 ये है टेलीफोन नंबर इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। और अगले कॉलर बात करते हैं उनसे। हेलो
4: नमस्कार मैम।
3: नमस्ते जी।
4: मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। अंजलि तू मेरी हो ना सके, ऐसा होगा नहीं।
3: वाह वाह,
4: हो जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा।
3: वाह वाह, बहुत ही अच्छा डायलॉग बोला है आप। धड़कन फिल्म का ये डायलॉग है जी।
4: अच्छा जी, उसी फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ मैं, टाइटल सॉन्ग जी।
3: जी कौन सा गाना सुनेंगे फिर? चलिए जी, इनकी कॉल कट चुकी है और धड़कन फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं, तो उनकी पसंद पर सुनवा रहे हैं आप सभी को ये गीत।

0: बस तुम रहते हो।
1: हेलो धर्मशाला, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और जो फिल्में हमारे पास बची हैं उनके नाम आपको बताते हैं। मिस्टर इंडिया, कच्चे धागे, जुड़वा 2, जुदाई, हिना और घर, इन फिल्मों से कोई भी गीत आप सुन सकते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी, परसराम बोल रहा हूँ, मुकेरिया से, मानसर से।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन सी फिल्म का गीत सुनवा दें आपको?
2: पुरानी कच्चे धागे कि नवी?
1: कच्चे धागे पुरानी है। हाँ जी,
2: हाँ ठीक है, इसका ही सुना दो फिर।
1: इसका सुना दें
2: गाना जी, कच्चे धागे के साथ जिसे बांध दिया जाए।
1: नहीं नहीं, उतनी पुरानी नहीं है ये। कच्चे धागे फिल्म का जो गीत है ये हम आपको सुनवा रहे हैं। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत है।

0: हेलो धर्मशाला।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते जी, बताइए नाम और फिल्म का नाम बताइए।
1: लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। और मुझे जो गाना सुनना है वो फिल्म मिस्टर इंडिया का।
0: मिस्टर इंडिया फिल्म का जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कोई सा भी सुना दीजिए, बहुत अच्छी फिल्म थी ये, अनिल कपूर और श्रीदेवी की।
0: जी बिल्कुल, तो
1: और
0: देखी है आपने? हाँ जी
1: हाँ, फिल्म देखी है। और इसमें
0: जी फोन कट चुका है और मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं और इस फिल्म का हम गीत सुनवा रहे हैं। चलिए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो धर्मशाला।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिंगरी कुराचा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जल्दी से बताइए मैडम, कौन सा फिल्म बचा है?
0: फिल्में बची हैं घर, हिना, जुदाई, जुड़वा टू।
1: अच्छा, जुदाई नए वाले की पुराना वाला?
0: हाँ जी, नई वाली है।
1: और एक शुरू में कौन सा बताए थे?
0: घर, हिना, जुदाई, जुड़वा टू, ये फिल्में बची हैं जी। जी,
1: घर पुराना पिक्चर ना, उसमें गाना है आपकी आपकी आंखों में बस
0: महके हुए से कुछ ख्वाब हैं।
1: जी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, बिंदिया गोस्वामी, विनोद मेहरा।
0: जी बिल्कुल, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। जिन श्रोताओं ने आज के इस कार्यक्रम में फ़ोन किया वो कम से कम एक महीने के बाद फिर से इस कार्यक्रम में फ़ोन करें ताकि और भी श्रोता इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें, और जिनका फ़ोन नहीं लगा है वो अपना प्रयास जारी रखें। और अब आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया अंकित धीमान ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतिंद्र पाल सिंह। और अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: हेलो धर्मशाला।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 10 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां।

गीतों का कारवां लेकर हाजिर हैं हम और श्रोताओ आज मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बेटा फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसे लिखा है समीर ने। संगीत आनंद मिलिंद का है और संगीत गाया है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: RD बर्मन के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेताब से ये गीत।
2: ये मेरी जिंदगी।
1: ये खूबसूरत सी आवाज है शब्बीर कुमार की।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। बलमा, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं तड़ी पार फिल्म से ये गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: कार्यक्रम के आखिर में श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं कुर्बान फिल्म से ये गीत। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल, संगीत नदीम श्रवण का और गीतकार समीर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ, जिसे गाया है विक्रांत व साथियों ने।

हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति निम्मो चौधरी की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र की आज चौथी बैठक है। सत्र में रोजगार गारंटी और जलविद्युत रॉयल्टी मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा किसानों के मुद्दे भी सदन में उठेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: मॉनसून सत्र की पिछली तीन बैठकें कई मुद्दों पर हंगामेदार रही हैं। इस दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। सदन में आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राज्य औद्योगिक विकास निगम का 2020-21 और हस्तशिल्प हथकरघा निगम के 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। इसके अलावा नियम 62 के तहत दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे, जिसमें विधायक कुलदीप सिंह राठौर प्रदेश के किसान बागवानों को दिए जा रहे कीटनाशकों की गुणवत्ता का मुद्दा उठाएंगे, जबकि विधायक पवन काजल गग्गल में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना का मामला सदन में उठाएंगे। नियम 130 के तहत युवाओं के लिए रोजगार संबंधी गारंटी के कार्यान्वयन के बारे में प्रस्ताव पर सदन में आगे चर्चा शुरू होगी। आज भी पक्ष और विपक्ष के बीच कई जनहित के मुद्दों पर टकराव देखने को मिल सकता है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित से मुक्त घोषित कर दिया है। मेरा युवा भारत कार्यक्रम के तहत कुल्लू स्थित कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा में 3 दिवसीय फ्यूचर यूथ लीडर्स बूट कैंप का आयोजन किया गया है। शिविर का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अभिषेक एस ने किया। इस मौके पर अभिषेक एस ने युवाओं को संवैधानिक मूल्यों, नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य व नेतृत्व क्षमता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं का मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उन्हें देश के मूलभूत संवैधानिक मूल्यों का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। शिविर के पहले दिन विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों ने युवाओं को नेतृत्व कौशल, प्रभावी संचार, डिजिटल व वित्तीय साक्षरता सहित शासन व्यवस्था की मूलभूत अवधारणाओं से अवगत करवाया। चंबा जिले में आधिकारिक तौर पर 4 सितंबर यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू होने वाली पवित्र मणिमहेश यात्रा के दृष्टिगत आज से हेलीटैक्सी सेवा शुरू हो रही है। ये सेवा श्रद्धालुओं को 20 सितंबर तक मिल पाएगी। हमारे जिला संवाददाता के अनुसार भरमौर से गौरीकुंड तक हेलीटैक्सी सुविधा मिलने के साथ इस बार होली से गौरीकुंड तक भी यात्रियों के लिए ये हेलीटैक्सी सुविधा मिल पाएगी। इसके लिए 4 हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं देंगे। भरमौर से गौरीकुंड तक का एक तरफ का किराया 3,800

0: 28 रुपए, जबकि होली से गौरीकुंड के लिए एक तरफा किराया 6,255 रुपए निर्धारित किया गया है। ये पवित्र यात्रा 19 सितंबर तक चलेगी। गौरतलब है कि मणिमहेश में पवित्र डल झील में स्नान करने और कैलाश दर्शन के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मंडी जिला के सुंदरनगर स्थित कृषि प्रशिक्षण केंद्र में जायका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: प्रशिक्षण के दौरान स्वयं सहायता समूह के गठन और संचालन, बजट, बैंक खाता प्रबंधन, नेतृत्व विकास, क्षमता निर्माण और विवाद समाधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। प्रशिक्षुओं को समूह बैठकों के आयोजन, जरूरी दस्तावेजों के रखरखाव, पारदर्शिता, आपसी विश्वास और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के महत्व से भी अवगत करवाया गया। विशेषज्ञों की टीम ने निर्माण फेडरेशन से जुड़ाव, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं, अभिसरण और डिजिटलीकरण की जानकारी भी साझा की। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के अंत में कृषक प्रशिक्षण केंद्र के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीश कुमार जंजीहा ने सभी प्रशिक्षुओं का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीष सूद।
0: हमीरपुर जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने कहा है कि 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों को सर्विकल कैंसर से बचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए HPV टीकाकरण अभियान के तहत 1,550 लड़कियों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिले में इस अभियान का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए अब स्कूल स्तर पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए इस लोकगीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे डोगरी लोकगीत लता मंगेशकर की आवाज में। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति पवन डोगरा की आवाज में।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: भेड़ा तेरी
3: गूंज

0: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
3: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
2: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं, उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
2: जी,
3: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
2: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
3: जी विमलेश जी बिल्कुल, दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई न कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
2: बिल्कुल,
3: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं
2: जी।
3: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
2: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
3: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
2: जी
3: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
2: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
3: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
2: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांग जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
3: जी हाँ, तो श्रोताओं आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे भारत में होते हैं और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओं, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
2: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांग नागा जनजाति निवास करती है। कोयांग समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
3: तो श्रोताओ, यदि कभी आपने कोयांग पुरुषों की तस्वीरें देखी हो तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे
2: जी।
3: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर हैं।
2: कोयांग जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे मनकों के आभूषण, पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं। उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
3: श्रोताओ, यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांग योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
2: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांग समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
3: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
2: जी,
3: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
2: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओ, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
3: जी, तो श्रोताओ, लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती हैं, लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
2: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
3: तो श्रोताओ, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
3: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
2: सरितपुर की कहानी।
4: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे पशु पक्षी
5: पर क्या हो गया, हमारे घर के सारे सामान बह
6: गया, लगता है हो गई है
7: क्या? हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
8: फसल बह गई।
9: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा

0: कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी माँ की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई, मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
3: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की। लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
4: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात। यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे। आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
2: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था। लोग कहते, उफ,
2: इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
5: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
6: हमारे पशु पक्षी हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
7: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
1: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
7: फसल बह गई।
6: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान
7: जल्दी से
6: ऊपर ले जाना होगा।
7: चलो जल्दी ऊपर।
6: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
7: चलो चलो।
6: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
7: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
8: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार। अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
9: अभी आप सुने थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
10: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा हैं, जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो हैं पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी तेक्के परमबिल उषा।
0: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
1: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
0: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
1: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
0: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।
2: आपने मुझे बुलाया मैम?
3: आओ उषा, मैंने एक खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
2: जी कहिए मैम।
3: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है भाई?
2: मैम अच्छा चल रहा है।
3: गुड।
2: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
3: वेरी गुड। देखो अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
2: जी मैम।
3: तो तुम्हें एक काम करना है।
2: जी।
3: तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है।
2: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
3: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
2: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी।
3: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू मैम।
0: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
1: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
0: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
1: वर्ष था 1977 का, जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
0: ओएम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
4: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
2: थैंक यू सर।
4: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
2: लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
4: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
2: आप? धन्यवाद सर, लेकिन
4: अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
2: सर।
4: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
2: ओह, थैंक यू सो मच सर।
1: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
5: आज तो बड़ा मजा आ जाएगा दौड़ देखने में।
6: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश की पीटी उषा जो भाग ले रही है। हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई। अरे ये क्या हुआ? अरे वो पहुंच गए विजय रेखा पर, जीत गए भाई, जीत गए।
1: पीटी उषा बहुत तेज गति से दौड़ी। शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गुंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
0: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था, लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के सौवें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गईं। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
1: आप सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
0: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गाँव में हुआ था। पयोली गाँव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
1: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
0: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
1: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
0: वो अपने गृह नगर में

0: महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
1: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: चेतना,
2: जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक भाइयों, सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं विजय पथ फिल्म का गीत। अनु मलिक का संगीत है, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सैनिक भाइयों अब आपको सुनवा रहे हैं इम्तिहान फिल्म का गीत। आवाज है कुमार सानू की और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
2: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th से 6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th से 8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

उदित नारायण और अलका याग्निक की मिली जुली आवाजों में अभी सैनिक भाई सुन रहे थे मृत्यु दंड फिल्म का गीत। रचनाकार थे जावेद अख्तर, संगीतकार आनंद मिलंद। सैनिक भाइयों, अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। इम्तिहान फिल्म का ये गीत है हरिहरन और अनुराधा पोड़वाल की मिली जुली आवाजों में।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर की 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

0: स्वागत सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में। जी हाँ, बातों और गीतों के इस मिले जुले सफर में एक बार फिर से हाजिर हैं हम। और आज के इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आप सबकी अपनी रेडियो सखी रीना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ सखियों, मंगलवार का ये खूबसूरत सफर जिसमें हमारी ढेर सारी बातें तो होती ही हैं, साथ ही साथ चुनिंदा फिल्में हम आपके लिए लेकर आते हैं जिनके खूबसूरत से गीत आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन सकते हैं। तो इंतज़ार हुआ ख़त्म और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी फ़ोन कॉल्स का। तो जल्दी से डायल करें स्टूडियो का नंबर 01892224391। जी हाँ, 01892224391। और जल्दी से आपको बता देते हैं आज की चुनिंदा फिल्में जिनके गीत आप इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन सकते हैं। फिल्में हैं नायक, प्यार तो होना ही था, कयामत से कयामत तक, सरगम, सत्ते पे सत्ता, शराबी, सिलसिला, सिर्फ तुम, ताल और तेरे नाम। ये हैं हमारी आज की फिल्में सखी। और बता दें आपको कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रहता है, तो वे ही फ़ोन करें और साथ ही जब भी कार्यक्रम में फ़ोन करें तो सिग्नल का ध्यान रखें ताकि आपसे हमारी बात अच्छे से हो पाए। तो लेते हैं कार्यक्रम की पहली फ़ोन कॉल। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: मैडम जी, दर्शना कुमारी मुकेरियां से।
0: जी जी दर्शना जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है मैडम जी, आपको मिस कर रहे थे।
0: अच्छा, देखिए आप मिस कर रहे थे और हम आ गए।
1: हाँ मैडम जी
0: कैसी हैं?
1: काफी दिनों से आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात नहीं हुई काफी दिनों से।
0: जी, कार्यक्रम तो सुनते रहते हैं लगातार, है ना?
1: हाँ, पर फोन नहीं लगा हमारा ना।
0: अच्छा अच्छा, और कैसा मौसम है मुकेरियां में?
1: बहुत गर्मी है, उमस बहुत है।
0: जी जी, बारिशें हो रही हैं?
1: नहीं नहीं, बारिश बहुत कम हो रही है मैडम।
0: अच्छा, बहुत कम हो रही है।
1: हाँ जी,
0: तो आ जाइए हिमाचल, बारिशों का मजा लेना है तो
1: कोई बात नहीं, आ जाइए
0: चलिए हम गीत संगीत से ही आपका मनोरंजन यहाँ से करवाते हैं। बताइए दर्शना जी, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगी आज?
1: मैडम जी, सरगम का सुना दो, डफली वाले डफली।
0: जी,
1: सरगम फिल्म का मैडम जी, डफली वाले।
0: जी जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश आपके रेडियो सेट पर है दर्शना जी, और आप सुनिए। शुक्रिया फोन करने के लिए, यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार मैम।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: मैं शिवानी बोल रही हूँ।
0: शिवानी कहाँ से बात कर रहे हैं
1: मैम दादा से बात से मैं
0: जी? क्या करती हैं?
1: शेफ हूँ।
0: शेफ हूँ।
1: हाँ जी
0: नए नए डिशेस बनाती हैं
1: हाँ जी।
0: जी? किस तरह लगता है आपको ये काम?
1: मैम अच्छा, पूरा दिन यही होता है। मैम
0: हाँ जी,
1: अच्छा लगता है
0: अच्छा लगता है।
1: म्यूजिक।
0: और इसके अलावा क्या शौक रखती हैं?
1: सुनने
0: सुनने का?
1: का
0: किस तरह के गीत पसंद है आपको?
1: मैम, नए पुराने हिंदी पंजाबी सब।
0: सभी तरह के
1: जी
0: जी। और आज कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं?
1: मैम, तेरे नाम का
0: तेरे नाम फिल्म का कौन सा गीत? कोई सा भी?
1: कोई सभी सभी अच्छी नहीं है।
0: सभी गीत बहुत अच्छे हैं, है ना?
1: हाँ जी मैम।
0: तो ठीक है, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं इस गीत के साथ। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: नमस्कार जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी। सविता बोल रही है मैम, रानीताल से।
0: जी सविता जी, रानीताल के क्या हाल चाल हैं? आजकल तो खूब रौनके लगी हैं, है ना?
1: हाँ जी मैम, आजकल मेले लगे हुए नाग मंदिर में ना। हाँ जी, बहुत ज्यादा रौनके हो रही है वहां पर तो मैम।
0: तो वो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: बस मैम 2 महीने लगते हैं मेले ना, नाग मंदिर में हर साल ही,
0: अच्छा।
1: तो बहुत दूर दूर से आते हैं मतलब श्रद्धालु।
0: तो अभी कितना टाइम हो गया मेले लगे हुए?
1: 1 महीना हो गया मैम, अगले सितंबर तक रहेगा ना।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, संग्रांत जो होती है ना सितंबर महीने में, तब हो गए खत्म वो, तब 2 महीने हो जाएंगे ना।
0: अच्छा, तो नज़दीक वाले भी जाते रहते हैं कि दूर वाले ही लोग आते हैं?
1: नहीं, जाते हैं मैम, हम कल गए थे ना, शाम को गए
0: अच्छा।
1: थे कल। हाँ जी, आप भी आना मैम।
0: जी बिल्कुल, ज़रूर आएंगे हम भी और आपके मेले का मज़ा लेंगे।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: जी
1: बहुत
0: आप
1: मजा है
0: जी आप बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं आज?
1: जी। शराबी फिल्म का सुनवा दीजिए मैम,
0: अच्छा जी, कौन सा
1: मुझे
0: गीत?
1: 9 लख मंगवा दे रहे।
0: अच्छा जी, पसंदीदा गीत है आपका?
1: हाँ जी मैम, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है
0: जी
1: गाना।
0: अच्छा लगता है, तो फिर सुनिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। और फ़ोन किया आपने हमें सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम जी, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: जी, कैसे हो मैडम जी? ज्योति
0: जी बहुत बढ़िया है, आप बताइए कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: बोल रही हूँ, हिमाचल से दीदी। हाँ
0: ज्योति।
1: जी, पठानकोट
0: ज्योति हिमाचल में कहाँ से बात कर रही हैं?
1: से मैडम जी। बस
0: पठानकोट से। क्या करती हैं?
1: मैडम जी, घर का काम, बच्चियों को स्कूल भेजे हैं और घर के काम करते हैं मैडम जी।
0: अच्छा जी, और अपना ध्यान किस तरह से रखती हैं ज्योति?
1: मैडम जी जब फ्री होते हैं उसे लेट जाती हैं, थोड़ा बस आराम कर लेते हैं।
0: अच्छा, और अपने आप को खुश किस तरह से रखती हैं? जो चीज़ें
1: बच्चों
0: आपको खुश रखती हैं, ऐसा कौन सा काम है?
1: ऐसा बस बच्चों से, बस बच्चे आते हैं स्कूल से, बस बस बच्चों से ही खुश रहती हूँ।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। यानी कि पूरी आप गृहस्थी में अपने आप को खुश रखती हैं, है ना?
1: हाँ मैडम जी
0: जी, बहुत अच्छी बात है ज्योति। और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो आज आपकी कौन सी पसंद है कार्यक्रम सुनो सखी में?
1: मैडम जी, मैंने ऑन अभी ऑन किया रेडियो, केक कौन सी फिल्में रखी है मैडम जी?
0: जी आज हमारे पास है फिल्म नायक, प्यार तो होना ही था, क्यामत से क्यामत तक, सिलसिला, सिर्फ तुम, ताल, तेरे नाम और सत्ते पे सत्ता।
1: क्या अंत का सुना दो।
0: जी, इस फिल्म का कौन सा गीत? कोई सा भी।
1: हाँ कोई भी सुना दो मैडम जी,
0: हाँ जी,
1: कोई भी सुना दो।
0: ठीक है, आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सा गीत। और ज्योति, कार्यक्रम में आपने फोन किया, शुक्रिया।

जी हाँ सजीव, फोन इन कार्यक्रम सुनो सखी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज मैं हूँ आपके साथ रीना। सखियो, आप भी हमें कॉल कर सकती हैं, अपनी पसंद के गीत सुन सकती हैं, तो जल्दी से डायल करें स्टूडियो का नंबर 01892224391।

0: हेलो,
1: हेलो जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी। नाम बताइए अपना।
1: मैं इंदु बात कर रही हूँ।
0: बड़े गुस्से से बोल रही हैं।
1: नहीं मैम, बिल्कुल ही आपसे बात और गुस्से में ऐसा हो सकता है मैम कभी?
0: अच्छा, और इंदु कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: जी हम भी बहुत बढ़िया हैं, और आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं।
1: बड़े टाइम के बाद आपके साथ बात हो रही है मैम आज।
0: जी हाँ, बहुत समय के बाद। फिर कैसा लग रहा है आपको?
1: बड़ा अच्छा लग रहा है मैम, तभी तो फोन किया कि आप आए हो।
0: अच्छा, वैसे नहीं करती आप फोन?
1: मैं वैसे करती हूँ तो नहीं लगता, तो मैं ज्यादा ट्राई नहीं करती हूँ। फिर
0: अच्छा।
1: एक बार मेरा लग जाए तो ठीक है, अगर नहीं लगे तो उनकी किस्मत जो बैठी है स्टूडियो में। इंदौरा
0: जी हाँ। और इंदौरा के क्या हाल चाल है, मौसम किस तरह का है?
1: के मैम ठीक है, अच्छा है मौसम, बारिश वगैरह हो रही है तो ठीक है मौसम मैम। हाँ जी,
0: चलिए
1: आप
0: अच्छी।
1: बताइए मैम, रक्षाबंधन की तैयारी हो रही
0: जी बिल्कुल, सखियाँ सभी तैयारी
1: है?
0: कर रही हैं काफ़ी दिनों से, है ना?
1: हाँ जी मैम, वो तो है।
0: और जब भी कोई त्यौहार आता है तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है मुझे लगता है कि महिलाओं को ही होती है, क्योंकि तैयारियां तो
1: बिल्कुल
0: उन्हें
1: मैम, बिल्कुल महिलाओं को ही होंगी ना, उनकी मनपसंद मतलब कि चीज उनको मिल जाए बिन
0: बिन
1: मांगे
0: मांगे
1: ही।
0: मिल जाए, और एक रौनक सी रहती है ना? और शॉपिंग
1: हाँ
0: करने का
1: जी,
0: बहाना मिल जाता है।
1: बहाना, वैसे भी लेडीज को मैम बहाना चाहिए शॉपिंग करने का, बस कोई मौका मिल
0: जी
1: जाए छोड़ना नहीं है।
0: हाँ, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी बहनों का ये त्यौहार जो है वो रक्षाबंधन का बहुत अच्छे से बीते, है ना?
1: और अच्छे से हो जाए। हाँ जी
0: जी
1: मैम, बिल्कुल।

0: जी
1: साल का एक बार
0: एक
1: आने वाला
0: बार
1: त्योहार है तो सभी के लिए मैम अच्छा ही हो।
0: जी बिल्कुल। तो बताइए इंदु, आज कौन सी फिल्म का गीत सुन रही हैं?
1: मैम सिर्फ तुम का पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: हाय, बहुत अच्छा गीत आपने चुना है। आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, लेकिन पहले कुछ संदेश हैं वो आप सखियों तक, श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, उसके बाद आपकी पसंद।
1: जी मैम,
0: शुक्रिया
1: ओके
0: इंदु
1: मैम,
0: फ़ोन करने के लिए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका? गुड्डी की फीस का।
2: दिखा।
3: 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
2: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत,
3: वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
7: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
7: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: हेलो,
0: जी नमस्कार
1: नमस्कार मैम जी।
0: जी। नाम बताइए अपना
1: जी मैं सुमेरा बोल रही हूँ,
0: जी। कहाँ से
1: फैंसी मिल से। हाल
0: जी? कहाँ से?
1: ही से
0: क्या करती हैं समायरा
1: इसी घर पे रहती हूँ।
0: जी? और आज कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैम आपकी पसंद का। हाँ
0: मेरी पसंद का? पर
1: जी,
0: कार्यक्रम तो आपकी पसंद का है।
1: तो फिलहाल आप अपनी पसंद का सुना दीजिए।
0: चलिए ठीक है, आपको हम सुनवाएंगे अपनी पसंद का गीत। और कॉल के लिए शुक्रिया।
1: थैंक यू मैम।

जैसे कि उसी खूबसूरत से गीत के बाद हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिर में। माफ़ी चाहेंगे उन कॉलर से जो इस समय फ़ोन कर रहे हैं। यही कहना चाहूँगी, अगले मंगलवार ज़रूर समय से फ़ोन करें और अपने इस खूबसूरत से कार्यक्रम सुन सके का हिस्सा बने। और अब मुझे यानी अपनी रेडियो सखी रीना को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति, इसी वादे के साथ कि फिर इसी कार्यक्रम में होगी आप सब सखियों से मुलाकात। तब तक स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ।

चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है जितेंद्र पाल सिंह। प्यारी सखियों नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर एक बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेनदेन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न जैसे संवेदनशील आंकड़ों तक निजी कंपनियों की पहुंच चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का दुरुपयोग न हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हांग चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 110 अंक गिरकर 77,259 पर और निफ्टी 68 अंक गिरकर 24,151 पर आ गया। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण रुका हुआ है। श्रीलंका ने भोजन अवकाश तक पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The United Payments Interface UPI, which was launched on this day in 2016, has completed 10 years of transforming digital payments in India. It has emerged as the backbone of India's digital payments ecosystem and a critical driver of financial inclusion. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have also received global recognition. UPI is now operational across 11 countries. As of 2025, UPI accounts for nearly 49% of the world's real-time payment transaction volume. Prime Minister Narendra Modi hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. National Security Advisor and Special Representative on the India-China boundary question, Ajit Doval, today called on Vice President of the People's Republic of China, Han Sung. In a social media post, the Embassy of India in Beijing said, prior to the 25th round of the Special Representative's talks today, both sides discussed ways to strengthen peace and tranquility in the border areas. They also discussed ways to improve bilateral relations across economic, political, and multilateral fora in accordance with the consensus reached between the leaders of the two countries. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has said that cargo operations have been witnessing consistent growth over the past few years, with volumes increasing by nearly 40%. Talking to reporters in New Delhi, Mr. Naidu said the government wants to create global standard air cargo hubs and facilities across the country. On the Air India Phuket Delhi flight incident, Mr. Naidu said the Aircraft Accident Investigation Bureau is conducting investigation and the preliminary report will come soon. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will undertake an official visit to Canada and the United States beginning today. The Finance Ministry said the focus of the visit will be on strengthening bilateral economic and financial partnerships, deepening investment linkages, and advancing cooperation on shared global economic priorities. During her visit to Toronto, Ms. Sitharaman will participate in the inaugural economic and financial dialogue with her Canadian counterpart, François-Philippe Champagne. She will also hold interactions with the Indian diaspora in Toronto. During the second leg of her visit to the United States, Ms. Sitharaman will travel to Chicago, Asheville, and New York. Union Communications Minister Jyotiraditya Sindhya has said India's digital connectivity journey will not be defined merely by connecting people, but by ensuring that the networks are trusted, secure, and resilient. Addressing the 43rd Foundation Day of the Center for Development of Telematics, CDOT, in New Delhi today, Mr. Sindhya lauded CDOT for its pivotal role in the country's telecom transformation. Mr. Sindhya expressed confidence that with the contribution of CDOT, India can now lead the world in 6G. The center has empowered the West Bengal government to conduct hearings under the Citizenship Amendment Act and issue citizenship certificates to eligible applicants. The Union Home Ministry has issued a gazette notification in this regard. Chief Minister Shubhendu Adhikari told reporters that 23,000 people have so far been recognized as eligible and issued citizenship certificates out of around 2,30,000 applicants. The U.S. Department of Homeland Security, DHS, has proposed a new $1,03,265 fee on top of existing costs for all H-1B CAP subject petitions, including those for advanced degree holders. DHS estimates the fee would generate approximately $8.8 billion annually based on a projected 85,000 H-1B CAP subject petitions. According to the press release issued by DHS, the additional fee would not apply to H-1B petitions that are not subject to the cap. In men's cricket, Sri Lanka and India match was stopped due to a wet outfield on day three of the second test in Colombo. Sri Lanka trailing by 373 runs. And with that, we end this news bulletin.
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर. 1:10 हुए हैं. अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे.

0: एक साथी लिखती है, इंतहा हो गई इंतजार की। ये गाना इंतजार सच्चे प्रेम और बेचैनी की भावनाओं का एक बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण है। किशोर कुमार के दर्द भरे और रोमांटिक अंदाज तथा आशा भोसले के जवाब ने इस गीत में जान फूंक दी है। बप्पी लाहिड़ी का धीमा और कर्णप्रिय संगीत शब्दों के असर को और ज्यादा गहरा कर देता है। अमिताभ बच्चन का अभिनय और गाने के बोलों में निहित भरोसा कि बेवफा वो नहीं इस गीत को एक अमर रोमांटिक रचना बनाता है। आपको बता दें, इस गीत को लिखा अंजान और प्रकाश मेहरा ने।
1: रात प्यार की, रात प्यार
0: की। एक साथी ने लिखा है, आज का गद्यांश प्रवास जनित वियोग श्रृंगार से संयोग श्रृंगार में संक्रमण को बहुत गहराई से दर्शा रहा है। खिड़की पर सजनी आसमान में चांद को देखते हुए बैठी है और हवा के झोंकों से उसके नयन भर आए हैं। बारिश की बूंदों से आने वाली आवाज से भ्रमित होकर उसे साजन के आने की आहट जान पड़ रही है। वो बहुत उदास है, ये वियोग की तीव्र पराकाष्ठा है और ऐसे में हाथों में फूल, चेहरे पर मुस्कान लिए साजन का आना मानो वियोग के अंधकार के बाद मिलन के प्रकाश यानी संयोग श्रृंगार की अनुभूति होने लगी है। सच्ची प्रतीक्षा प्रेम को परिपक्व और गाढ़ा करती है। ऐसे में प्रेमियों का मिलन अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अब देखिए साथियों, बैठी है वो खिड़की पर अपने साजन को याद करते हुए और दुखी हो रही है। तो चलिए ये अगला गीत सुनवाते हैं। दो बदन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़, शकील बदायूनी की रचना और तर्ज बनाई है रवि ने। शब्द पहचानिएगा आप।

0: तो देखिए कहानी बन रही है या नहीं। जैसे जब पहला गीत था लो आ गई उनकी याद, तो हमारी जो नायिका है यानी कि ज्योति, वो अपने दिल ही दिल में कह रही है कि उनकी याद तो आ गई पर वो नहीं आए, तो इसमें याद शब्द था। और इसी तरह ये जो गीत था नैना, इसमें शब्द नैन इन्हें लिया गया था कि अब पिया की याद में उस बिरह में वो रो रही है, आंसू बहा रही है। हमारे एक साथी लिखते हैं, जब हमारी सगाई हुई थी कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी होने वाली धर्म पत्नी अपनी बड़ी बहन के पास अजमेर से जयपुर गई हुई है। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मेरी जॉब के कारण मीटिंग भी जयपुर में थी, पर संस्कारों के कारण मिलने तो नहीं जा सकता था और मोबाइल भी उन दिनों नहीं थे। मीटिंग के बाद मैं ये गीत गुनगुनाया करता था और मन को तसल्ली देता था, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हम दोनों एक ही शहर जयपुर में हैं पर मिल नहीं पा रहे। जी हाँ, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं और आपने अपनी बात साझा की, हमें अच्छा लगा। आइए अब अगला गीत सुनेंगे, मगर पहले ये संदेश।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: इस संदेश से पहले आपने जो गीत सुना वो था वो कौन थी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, और इसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने, संगीत था मदन मोहन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हकीकत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, कैफी आजमी ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत। आप बताइएगा कहानी में कौन सा शब्द जुड़ता है।

आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था आहट। और एक साथ ही लिखते हैं, इबारत से उठाए शब्द से गीत और गीतों में छिपी इबारत की कहानी, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। गीत, हर गीत में कहानी होती है, चांद शब्द पर चांद फिर निकला, इस गीत में भी तो कहानी है। इंतज़ार शब्द वाले आपने चुने गीत के साथ, दूसरे गीतों में भी तो कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई दूसरा गीत भी हो सकता है कि यहाँ पर जुड़ता हो। मगर उदाहरण के लिए आपको बताया जाए तो जैसे एक लाइन मैंने आप लोगों को असमंजस में डालने के लिए लिखी थी, वो आ गया और उसे पढ़ा भी इसी तरीके से था ताकि थोड़ा सा मस्ती मजाक किया जाए और आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, थोड़ा असमंजस में डाला जाए। तो अब चूंकि अगर ये गीत लिया जाता तो जो हमारे प्रोग्राम का जो एक तारतम्यता चल रही है, क्योंकि गीत के भाव अलग हैं, गीत जोश भरा है, तो यहाँ वो फिट नहीं बैठता। तो बस उसी को बताया जा रहा है कि कुछ गीत ऐसे हो सकते हैं, मगर हमने उन गीतों को चुना है जो कहानी में फिट होते हैं। और ऐसे और भी गीत हो सकते हैं, हो सकता है आपने जो बताया वो भी गीत ऐसे ही हो। जैसे कि देखिए, एक साथी ने लिखा है, कहा जाता है कि जो बात होठ तक होठ नहीं कह पाते वो नैना कह देते हैं। किसी के प्रति स्नेह हो, बिछड़ने का दुख हो या मिलन की खुशी, हर भावना सबसे पहले आंखों में झलकती है। यही कारण है कि कवियों ने नैनों को हृदय का दर्पण कहा है। एक साथी ने लिखा है, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, ये वेदना उस नारी की है जो बेबस है, लाचार है परंतु चाहत से लबरेज है। तो आइए इसी तारतम्य में सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है पेंटर बाबू। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों ने, कमर जलालाबादी और मनोज कुमार ने इसे लिखा है, उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का संगीत।

0: तो इस गीत का शब्द था बरसात, जिसमें नायिका यानी कि ज्योति अपने साजन को बुला रही है कि बरसात में आ, क्योंकि बरसात की जो बूंदे हैं उसी की आहट से तो उसे लगा था कि शायद ये उसी का हमदम है, लेकिन वो तो बरसात की बूंदे निकली। एक साथी ने लिखा है, आहट गजलों का राजा कहा जाता है और इस गीत में उन्होंने संगीत को बहुत ही धीमा और गंभीर रखा है। गीत की धुन में एक अजीब सी खामोशी और ठहराव है जो अकेलेपन के एहसास को और गाढ़ा करता है। वायलिन और गिटार का न्यूनतम उपयोग गीत के दर्द को उभरने का पूरा मौका देता है। हमारे कई साथियों ने इस गीत को लेकर अपनी टिप्पणियां लिखी हैं कि कई दिनों बाद उन्होंने गीत सुना और उन्हें पसंद आया। एक साथी लिखते हैं, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की इबारत में एक लाइन लिखी है, वो ये कि हवा चली तो दिलबर की याद आई। दिलबर की याद है या कोई एसी कूलर पंखा है कि जिसके आते ही हवा चलने का एहसास शुरू हो जाता है? चलिए, ये तो आपने लिखी मजाक की बात, मगर ऐसा है जनाब कि कुछ अनुभव जो होते हैं वो जब आप खुद अनुभव करते हैं तभी समझ आते हैं। चलिए फिलहाल सुनिए ये संदेश, फिर सुनवाएंगे आगे के गीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: ज्योति की कहानी एक मोड़ लेने वाली है। जैसा कि बात एक रात की थी, आसमान में खोया खोया चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति ने अपने साजन का इंतजार किया, लेकिन इम्तिहान हो गई थी इंतजार की। फिर उनकी याद आई, हवा चली तो दिलबर की याद आई, तो गीत बजा, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। और इसी के साथ याद आई तो नैन भर आए, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। उसके बाद दिल ने कहा वो आ गया, पर उससे पहले तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई। तो जरा सी आहट हुई तो लगा कि वो तुम ही हो। दिल ने कहा वो आ गया, पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि

आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। अब ज्योति के सामने तो वो आ गया है, अब क्या होगा सुनिए इस गीत में।

चेहरा ये शब्द इस गीत में था। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और सूरज फिल्म से ये गीत है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मेरा महबूब आया है। जी हाँ, तो जैसे हमारी कहानी चल रही है ज्योति और दीपक की, तो अब ज्योति का दीपक उसके सामने आ गया है। और इसी के साथ हमारी एक साथी ने लिखा है कि बहारों फूल बरसाओ, ज्योति का दीपक आया है, हवाओं रागिनी संभल कर गाना, क्योंकि ज्योति का दीपक आया है। और हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इसी के साथ सुनवाते हैं आपको गायत्री महिमा, इस फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, भरत व्यास के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

साथियों, कार्यक्रम का समय हो चला है। सुरीला सफर कार्यक्रम अब हमें ना चाहते हुए भी यहीं पर संपन्न करना होगा। इस गीत को फिर कभी पूरा सुनवाया जाएगा, फिलहाल आप इसका सिर्फ मुखड़ा सुन पाए हैं। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। दीजिए अपनी साथी नेहा आगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में नेत्रदान की बातें होंगी। वैसे तो शरीर के सभी अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी

आँखें कुछ अधिक विशेष मानी जा सकती है। ये हमें दृष्टि प्रदान करती हैं और दुनिया की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। अगर दृष्टि नहीं है तो पूरी दुनिया हमारे लिए अंधकारमय हो जाती है। आँखों में दृष्टि होना ईश्वर का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है, किंतु सभी लोगों के पास ये उपहार नहीं होता है। कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। कारण कई होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही दृष्टि बाधित होते हैं। कुछ लोगों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टि चली जाती है। इनमें से अधिकांश खराबियों का इलाज संभव है और ये संभव हो सकता है नेत्रदान के माध्यम से।

कहा जाता है कि नेत्रदान महादान होता है। नेत्रदान का महत्व अनमोल है। ये दान दृष्टिहीन व्यक्तियों को नई उम्मीद और नया जीवन देता है। ये उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अक्सर लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की प्रक्रिया में केवल 20 से 30 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान में पूरी आँख भी नहीं निकाली जाती, बल्कि आँख के सामने का जो पारदर्शी हिस्सा होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, वही दान किया जाता है। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। जागरूकता की कमी और सामाजिक बाधाओं के कारण नेत्रदान को अभी तक उतना महत्व नहीं मिल पाया है, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सभी नेत्रदान के महत्व को समझें।

नेत्रदान वास्तव में एक दिव्य कार्य है, किसी को प्रकाश का उपहार देकर और उन्हें रंगों से परिपूर्ण संसार देखने का अवसर देने से बढ़कर और क्या नेक कार्य हो सकता है। जो लोग मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, उन्हें अपनी इस इच्छा को घर वालों को बताना होगा। उसके बाद नेत्र बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा। इस तरह नेत्रदान की प्रक्रिया सरल हो जाती है। नेत्रदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है। जब हम नेत्रदान का संकल्प लेते हैं, तो ये कई लोगों के लिए आशा की किरण बन जाता है, जो लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नेत्रदान से दृष्टिबाधित लोगों को अंधकार से निकलकर प्रकाशमय दुनिया में कदम रखने की संभावना मिलती है। ये एक ऐसा अनूठा तरीका है जिससे हम एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो हमारे जीवन काल के बाद भी कायम रहती है। ये परोपकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर

0: का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता

0: की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
5: मैं FedEx और दिल्ली GMR Airport को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
4: We want to create global standard air cargo facilities across the country.
0: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $103,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
6: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमार डुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $103,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं घूंघट फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने, शकील बदायूनी की रचना है और तर्ज बनाई है रवि ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं दुर्गा माता इस फिल्म का गीत एस जानकी की आवाज में। इसे लिखा है साज ने और इसका संगीत बनाया है जी के व्यंकटेश ने।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: शर्मा और प्रतिभा शर्मा। सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
1: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं खयाम का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम बारूद।

सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं, जमीन के तारे। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और एस मोइंदर का संगीत। और इस गीत के साथ ही नेहा अगरकर देसाई को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उनकी सरकार ने भाजपा कार्यकाल के कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए व्हाइट पेपर कमेटी बनाई है। ये कमेटी जांच के बाद सामने आए तथ्यों को जनता के समक्ष रखेगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में भाजपा बिना मुद्दे की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान रोजगार पर करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई, लेकिन इसके बाद भाजपा विधायक दल ने वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा मौका दिया था और चर्चा भी करवाई गई। इसके बावजूद अतिरिक्त सवाल पूछने की जिद करना और फिर सदन से बाहर चले जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: विपक्ष के पास कुछ नहीं रह गया। जो नोटों से भरे टैची जो है वो बीजेपी के दफ्तर से मिल रहे हैं। इस प्रकार के जो कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया वो भी आपने देखा ना। ये सारे जो इन्होंने गलत काम किया वो सारी चीजों को हम जनता के दागत कर रहे हैं। हमारी एक व्हाइट पेपर कमेटी बनी है। जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है उस भ्रष्टाचार को जनता की अदालत में रखने का दायित्व हमारी सरकार का। कोशिश कर रहे हैं कि जो भी तथ्य हमारे पास है वो जनता की अदालत में रखें।
0: प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान बेरोजगारी और आउटसोर्स भर्तियों के मुद्दे पर पक्ष व विपक्ष के बीच तनातनी देखने को मिली। विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से बाहर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर युवाओं के साथ ठगी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का करीब 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन सरकार शुरू से अंत तक झूठ बोलती रही। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम पर धनाधन आउटसोर्स कंपनियां रजिस्टर की जा रही हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने खुले मंच से 600 नौकरियां देने की बात कही थी।
2: गारंटी ये थी कि 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में निकाल दी जाएंगी। 1 लाख नौकरियां 1 साल में और 5 लाख नौकरियां 5 साल में। जिस प्रकार से आज प्रश्न लगा था स्थगित प्रश्न, उसमें रोजगार से संबंधित और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के उसमें हमने बातें पूछी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शुरू से अंत तक झूठ ही झूठ।
0: इससे पहले विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी आज सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव देखने को मिला। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और हाथों में तख्तियां लेकर गंभीर आरोप लगाए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
3: मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हंगामा देखने को मिला और दोनों पक्षों ने आमने सामने आकर नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। विपक्ष ने हिमकेयर और सहारा योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं का आरोप है कि इन योजनाओं को कमजोर या बंद किए जाने से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है और गरीब व जरूरतमंद लोगों से मुफ्त इलाज की सुविधा छीनी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष के प्रदर्शन पर भी

0: तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को अब से ही विपक्ष में बैठने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने महंगाई और भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर विपक्ष को बात करनी चाहिए, लेकिन इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आगामी चुनाव लड़ेगी और विपक्ष को सत्ता में वापसी के ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए। कुल मिलाकर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी सदन के भीतर और बाहर सियासी पारा चढ़ा रहा। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत शिमला व माई भारत NSS के संयुक्त तत्वावधान में राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय कोटशिरा शिमला और राजकीय महाविद्यालय संजौली में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी व देश के गौरव मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का कार्यक्रम 27 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया संवाद का मुख्य उद्देश्य युवाओं, खिलाड़ियों और देश के भविष्य को एक मंच पर लाकर खेलों के विकास, युवा सहभागिता व राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर संवाद स्थापित करना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: प्रादेशिक समाचार के बाद आइए सुनते हैं कांगड़ा जिले की चिट्ठी। लेखक हैं विपन कुमार शर्मा, वाचक स्वर है प्रभा शर्मा का।
3: धौलाधार की वादियों में बसे कांगड़ा जिले के लिए अगस्त माह कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। धौलाधार की गोद में बसे विश्व प्रसिद्ध त्रियुंड ट्रैक पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग ने ट्रैक को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की कार्ययोजना तैयार की है। विभाग में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए इस वर्ष चेक पोस्ट संचालन और पर्यटकों के नियमन का कार्य ओपन टेंडर के माध्यम से थर्ड पार्टी को सौंपा गया है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्रियुंड के प्राकृतिक स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जिला कांगड़ा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहा। ASP कांगड़ा वीर बहादुर के अनुसार पिछले एक महीने में 68 लोगों को हिरासत में लिया गया। धर्मशाला, मिकलोडगंज, कांगड़ा और पालमपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के चालान किए गए और उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जिला परिषद कांगड़ा की त्रैमासिक बैठक जिला परिषद सभागार धर्मशाला में नव निर्वाचित अध्यक्ष सीमा चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार, उपाध्यक्ष अभिमन्वी कंवर, जिला परिषद सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों, विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यों पर चर्चा हुई। धर्मशाला महाविद्यालय और जिला मुख्यालय में ABBP ने छात्र हितों से जुड़ी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। फीस में 25-30% तक की वृद्धि वापस लेने और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग आंदोलन का प्रमुख मुद्दा रही। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वन मंडल धर्मशाला ने वर्ष 2026-27 के लिए व्यापक पौधरोपण अभियान की रूपरेखा तैयार की है। DFO अमित कुमार शर्मा के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 111 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 1,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले ने अगस्त में जिले की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि वे विजिलेंस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और मांगे गए सवालों के जवाब व दस्तावेज उपलब्ध हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मामला उस समय का है जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और वे स्वयं उनकी कैबिनेट में मंत्री थे। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ राजेश शर्मा ने इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बताने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मामला लंबे समय से चल रही जांच का परिणाम है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार जारी रही। कांगड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी तबादला आदेशों पर भी सुधीर शर्मा ने सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पुलिस व्यवस्था को राजनीतिक हितों के अनुसार चला रही है। पूर्व मंत्री व भाजपा नेता बिक्रम सिंह ठाकुर ने टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाओं की बातें कर रही है लेकिन अन्य जरूरी दवाइयों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बड़े प्रोजेक्टों और आधुनिक तकनीक के साथ साथ अस्पतालों में डॉक्टर, जांच और दवाइयों जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जाए।
2: आकाशवाणी शिमला FM शिमला 103.7 MHz और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे कांगड़ा जिले की चिट्ठी। लेखक थे विपन कुमार शर्मा, वाचक स्वर था प्रभा शर्मा का। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
5: बारे में समझते हैं तो क्या रहता है ना कि हमें भी ये इस बात का एहसास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना।
6: तो आज हेमलता अन्नामलाई जो सह संस्थापक है एम्पियर व्हीकल्स की, तो आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, जो कि भारत की उन महिला उद्यमियों में से गिनी जाती है जिन्होंने उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रखा जब भारत में ई मोबिलिटी अपने शुरुआती दौर में थी। और हेमलता का जन्म तमिलनाडु के सलेम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रोफेसर और माँ शिक्षिका थी।
5: बिल्कुल, उनका मानना है कि उनके बचपन का सबसे अच्छा पहलू वो स्वतंत्रता थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी। इसी स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और हेमलता ने कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है।
6: और इसके बाद हेमलता ने ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IMIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। और हेमलता ने लगभग 27 वर्ष की उम्र में उद्यमिता की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आने से पहले उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग टूर और टिकटिंग और टैलेंट एक्विजिशन जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया।
5: बिल्कुल, और इस कारण उन्हें एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है, यानी उन्होंने बहुत सारे काम पहले करके देखे। ऐसा नहीं कि एकदम से उनको सफलता हाथ लग गई, बहुत सारे कामों को उन्होंने आजमाया, बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने झेला। और उनका कहना है कि उद्यमिता के क्षेत्र में हर नया दिन अपने साथ नई चुनौतियों और विजय को लेकर आता है, लेकिन मिलने वाला अनुभव अनमोल होता है। बाद में जब वो अपने पति के साथ जापान यात्रा पर गईं, वहाँ एक सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों और आंतरिक दहन इंजन के भविष्य पर हुई चर्चा ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया।
6: और उन्हें महसूस हुआ कि भारत में भी कम लागत वाले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बड़ी संभावना है। इसी बात ने उन्हें एम्पियर इलेक्ट्रिक की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना नहीं था, वे एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित करना चाहती थी जो सस्ती, उपयोगी और ग्रामीण के साथ छोटे शहरों के लोगों के लिए भी व्यवहारिक हो।
5: जी, और उनकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटर, तीन पहिया और विभिन्न उपयोगों के लिए लोड कैरियर जैसे वाहन विकसित किए। किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद उन्होंने विकसित किए थे। और कंपनी ने कचरा संग्रहण और अन्य उपयोगों के लिए इलेक्ट्रिक लोड कैरियर विकसित किए।
6: और उनकी उद्यमशीलता की एक खास विशेषता थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल बड़े शहरों और उच्च आय वाले ग्राहकों तक सीमित नहीं माना। हेमलता का मानना था कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा बचत, रोजगार और सामाजिक विकास का माध्यम भी बन सकते हैं। जब हेमलता ने इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण शुरू किया तब भारत में ईवी उद्योग आज की तरह विकसित नहीं था।
5: बिल्कुल, उनके सामने कई चुनौतियां थीं जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सीमित जागरूकता,

0: उपभोक्ताओं का पारंपरिक पेट्रोल वाहनों पर भरोसा, बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धता, निर्माण क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करना, निवेश और पूंजी जुटाना, कुशल कर्मचारियों और टीम का निर्माण करना, ग्रामीण बाजार में नई तकनीक को स्वीकार करवाना।
1: और खास बात तो ये थी कि हेमलता का शुरुआती अनुभव ये था कि गैर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में था, इसके बावजूद उन्होंने निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया और टीम के साथ तकनीकी ज्ञान विकसित किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं केवल सेवा क्षेत्रों में नहीं बल्कि निर्माण और तकनीकी उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: बिल्कुल, अनुसंधान और विकास प्रारंभ से ही हेमलता की कंपनी की रीढ़ रहा है। इसके अलावा उनकी टीम ने बैटरियों के जीवन को बढ़ाने में उपयोगी एक चिप का भी निर्माण किया है। इस स्टार्टअप का दावा है कि ये तमिलनाडु और केरल में जो दिव्यांगजन है उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने वाली पहली कंपनी है।
1: क्या बात है। और इसके अलावा एमपीएन ने कताई और कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए त्रिशूल नाम का एक विशेष वाहन भी तैयार किया है। उनकी कंपनी ने लगभग 40% महिलाएं काम करती हैं। उनकी कंपनी के 3 पेटेंट रजिस्टर हो चुके हैं और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से जुड़े इंडियन वुमेन इन एसटीईएम प्रकाशन ने उन्हें एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर एंड मेंटर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
0: इसमें उनके सामाजिक दृष्टिकोण और रोजगार सृजन पर भी जोर का भी उल्लेख है। वो ग्रीन कॉलर और एग्रीटेक सॉल्यूशंस की फाउंडर और वाइस चेयर के रूप में उल्लेखित हुई हैं। उनकी कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है बल्कि तकनीक, पर्यावरण, रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ लेकर चलने वाली उद्यमिता का उदाहरण है।
1: और अब लेते हैं ब्रेक।

0: हमारा तो दिल यही लगता है।
1: सही बात है, क्योंकि नहीं इतनी अच्छी अच्छी कमेंट, इतनी अच्छी अच्छी से अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते हैं ना जब सारे श्रोता, तो बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के उनके साथ में एकदम उस चीज को साझा करते हुए ना।
0: आज तो आरती मैं सारे श्रोताओं के साथ सब्जी मंडी पहुंच गई हूँ।
1: हाँ सच में कितने अच्छे तरीके से सबने लिखा हुआ है ना।
0: अरे इतने मजेदार कमेंट्स है कि यहीं पे पढ़ते पढ़ते ही मैं हंसकर लोटपोट हो गई। एक हमारे साथी ने लिखा है कि भाई पुरुष और सब्जी की खरीददारी, हमारे घर सब्जी मेरी वाइफ ही खरीदती है, पर कई बार सब्जी लाना हो तो मुझे कॉल करके कहती है इतनी सब्जियां लेकर आना, लेकिन साथ में कौन सी सब्जी और कैसी क्या ये देख कर परख कर लेके आना है, इसका पूरा ब्यौरा वर्णन भी करती है, जैसे कि बैंगन छोटे गोल और वजन में हल्का हो ऐसे लाना ताकि अंदर बीज ना हो, होल नहीं होना चाहिए वरना अंदर से सड़ा निकलेगा, टमाटर थोड़े कच्चे थोड़ा पका हो, नींबू पतली स्किन वाले लाना और वो जो भाव का है उतना नहीं देना, थोड़ा कम करवाना, साथ में कड़ी पत्ते की 3-4 डंडी मांगना वो दे देते हैं, वो बात अलग है कि डर के मारे भाव कम नहीं करवाता और कड़ी पत्ते इसके पास नहीं थे ऐसा करके फ्री में नहीं लाता।
1: बहुत अच्छी बात, सब उन्होंने अच्छे से बता दिया सब कुछ। तो अब हम एक और अपने श्रोता

0: लेते हैं। वैसे जो कहते हैं कि असली परीक्षा तब होती है जब पुरुष थैला लेकर घर लौटते हैं और घर की होम मिनिस्टर, पत्नी हो या माँ हो, उसका मुआयना करती हैं। सजा की शुरुआत कैसी होती है? ये भिंडी लाए हो या लकड़ी, इतनी कड़क है, ये टमाटर तो आधे गले हुए हैं, और बचाव में क्या तर्क मिलता है? पुरुष तुरंत डिफेंस मोड में आ जाते हैं। अरे वो तो सबसे अच्छी दुकान से लाया था, उसने ही चुन कर दिया है, जबकि सब्जी वाले ने उन्हें आसानी से पुराना स्टॉक थमा दिया होता है।
1: और एक साथ ही कहते हैं, मुझे सब्जी लाना पसंद नहीं है, पर सब्जी कोई ला कर दे दे तो मैं अच्छी तरह साफ कर संभाल कर तरीके से रखना बहुत पसंद है। मेरे पति भी सब्जी की बहुत अच्छी खरीदारी करते हैं और बेटा भी करता है। मॉल संस्कृति में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है।
0: बिल्कुल सही बात कही। और एक और मैं श्रुतन जो लिखते हैं कि पुरुषों के द्वारा साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर ही लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, पूरे सब्जियों को बिना देखे ले आते हैं, जिससे सब्जियां कभी कभार खराब भी निकलती हैं। उसी समय पुरुषों पर बड़ा ही गुस्सा आता है, और साथ ही साथ लगता है कि इसे सब्जी लाने से कहने से अच्छा है कि हम खुद ही सब्जी लेने के लिए चले जाएं। ऐसे मेरे घर में तो कितनी बार हुआ है, और ऐसा जब भी हुआ है मुझे कुछ की जगह कुछ और ही बनाना पड़ा है। यानी प्लानिंग उन्होंने कुछ बनाने की कर रखी थी, लेकिन वो वाली सब्जी आई नहीं, तो कुछ और ही बनाना पड़ा। हल्की फुल्की बातों में पुरुष के द्वारा सब्जी और साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर लेते हैं, मतलब वो इन्होंने उसी चीज को लिखा है वापस से।
1: एक
0: तो
1: साथी कहते हैं कि भाई पढ़ना चाह रही?
0: नहीं, आप पढ़िए।
1: एक साथी कहते हैं, सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी श्रीमान जी पर है और कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता है, क्योंकि एक सब्जी जब बार बार लेकर आते हैं तब उनको बोलना पड़ता है, अब इस सब्जी को कुछ दिन पहले ही तो खाया था, अगली बार साथ में चलना। वैसे सब्जी खरीदते हैं, पहले हमारे यहाँ खेत था तो सब्जी बिल्कुल ताज़ी मिलती थी, और इसलिए श्रीमान जी को सब्जी का अनुभव अच्छा है, तो सब्जी अच्छी ही लाते हैं। मैं साथ में हुई तब भी हम पसंद करते हैं, यानी देखिए दोनों मिल के जाते हैं, ये कितनी अच्छी बात है ना कि सब्जी के बहाने दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पुरुषों के लिए सब्जी खरीदना किसी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं है, वो पूरी ईमानदारी, लॉजिक और वफादारी से सब्जी खरीदते हैं, भले ही घर आकर उन्हें थोड़ी डांट सुननी पड़े, लेकिन ये नोक झोंक की भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के जीवन को खुशनुमा और मजेदार बनाती है।
1: क्या बात है। और एक साथी भी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी, आपको जानकर खुशी होगी कि सखी सहेली प्रोग्राम के सखा यानी मुझे साग सब्जी की खरीदारी में माहिरता है, इसलिए घर की होम मिनिस्टर मेरी धर्मपत्नी ने ये डिपार्टमेंट मुझे ही दे रखा है। साग सब्जी फल अच्छी क्वालिटी के सही नाप तुल के सही बाल भाव और सब्जियों के अनुसार क्वांटिटी की खरीदारी करना, आलू प्याज टमाटर लहसुन और कुछ फल होलसेल रेट में ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी मंडी से लेकर आता हूँ, ताकि सब्जी और फलों के साथ साथ बजट का भी ध्यान रखते हैं। खरीदना बच्चों को भी यही खरीदारी का तरीका सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ।
0: अच्छा। और साथ ही एक और श्रोता जो लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी एक ऐसा विषय है जिस पर हर घर में एक अलग कॉमेडी शो चलता है, ये एक ऐसा घरेलू मिशन है जहां पुरुष अपनी समझदारी का इस्तेमाल तो पूरा करते हैं, लेकिन नतीजा अक्सर उम्मीद से अलग होता है। कई बार धनिया और पुदीना में उन्हें अंतर समझ नहीं आता, लौकी और तोरई जैसी सब्जियां चुनते समय वो थोड़ा संकोच करते हैं, वो अक्सर दुकानदार पर ही भरोसा करके थैला भर लेते हैं।
1: एक ने लिखा है कि जेंट्स ये सब्जी मंगवाना तो उन्हें क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता कि कौन सी सब्जी कितनी मात्रा में लेना चाहिए, जो एक पाव चाहिए वो आधा किलो होगी और जो आधा किलो चाहिए वो एक पाव ही लेकर आती है। ये बिल्कुल होता है घर घर में कि घर में करेला बहुत कम लोग खाते हैं, और जो कुछ पुरुष उन्हें मालूम नहीं होता एक किलो करेला उठा रहा है, या फिर भिंडी की सब्जी वो पाव भर लेके आ गए, तो भिंडी तो पाव भर में कुछ होना ही नहीं है। पर अब हमें गीत सुनना है।
0: बिल्कुल गीत सुनना है।

0: तो आप किन की बात लेने जा रही हो
1: सोनाली? आपके हाथ में है, कुछ कमेंट्स पढ़ दीजिए।
0: तो हम एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मैडम जी तो सब्जी खरीदने कभी बोल रहे हैं कि मैं तो सब्जी खरीदने कभी नहीं जाता हूँ, डर लगता है सब्जी थोड़ी भी गलत आ गई तो डांट पड़ेगी। मतलब ये बता रहे हैं कि इनको डांट के डर से ये कभी लेने जाते ही नहीं सब्जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर के ठीक नीचे कुछ सब्जियों की दुकान लगी हुई है और मेरे इतनी उम्र का अनुभव मुझे ये कहता है कि हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी कोई भी घर की स्त्री हो कि पुरुष हो, सब लोग सब्जियां चुन चुन कर ही खरीदते हैं, लेकिन अंत में शाम के 7-8 बजे तक जब वो ठेले वाला अपने घर लौटता है तो उसके ठेले में एक भी सब्जी एक भी फल नहीं बचा होता है। तो कभी कभी मुझे इस बात से बहुत अचरज मालूम होता है कि मुझे अनूठी भी लगती है ये बात कि जब लोग चुन चुन कर फल सब्जियां घर ले जाते हैं तो आखिर में जो कुछ फल और सब्जी जिनका सभी ने अस्वीकार किया हो वो छूट जानी चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है और सब कुछ बिक जाता है।
1: चलिए कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक।

ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी। भाई एक समय था जब पिताजी के साथ साग सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाया करता था। मंडी कुछ ही दूर पर थी और थोक मूल्य पर 2.5 किलो से कम सब्जी सट्टी में मिला ही नहीं करती थी, इसलिए हर तीसरे दिन जाना पड़ता था। और वहीं से जो यात्रा मंडी की शुरुआत हुई वो आज तक कायम है। पिताजी तो नहीं रहे लेकिन उनकी सीख रह गई, जबकि फुटकर में बहुतेरे मोल भाव हुआ करते थे। एक साथी कहते हैं कि साग और सब्जी खरीदने का अनुभव तो बचपन से ही था कि 1974 में दूरसंचार विभाग में नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं और मेरा सहकर्मी, हम दोनों किराए के रूम में पार्टनर थे।

0: उस रूम के साथ एक किचन भी हमें उसी रेंट में साथ में मिला था, उसका उपयोग करते हुए हम खुद रसोई बनाने लगे थे। हमारी ड्यूटी रोटेशनल हुआ करती थी, एक ड्यूटी सुबह की होती थी तो दूसरे की शाम की ड्यूटी एडजस्ट कर लिया करते थे। सुबह सब्जी मंडी से साग और सब्जी खरीद लेकर आते, शाम की ड्यूटी वाला दोपहर की और सुबह की ड्यूटी वाला शाम की रसोई बना लेता था। कितनी अच्छी बात है,
1: बिल्कुल मिलजुल कर। और साथ ही एक और श्रोता जो कहते हैं कि पुरुषों द्वारा साग सब्जी की खरीदारी करना एक मजेदार और अनोखा अनुभव होता है, जिसमें उनके स्वभाव की सादगी और उलझने दोनों साफ दिखती हैं। पुरुष घर से सब्जी मिली सब्जी की लिस्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं, वो पर्ची पर लिखी हर चीज को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। लिस्ट के बाहर की कोई नई सब्जी वो खुद से नहीं चुनते, मनपसंद चीज ना मिलने पर वो तुरंत घर में फोन करते हैं कि भाई ये चीज नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं।
0: ये अच्छा ऑप्शन है ना,
1: बिल्कुल
0: डाइट खाने से अच्छा ऑप्शन है,
1: पहले बात कर लीजिए आप।
0: एक साथी कहते हैं कि पुरुष और साग सब्जी खरीदना, हमारे घर में पुरुष वर्ग ही ज्यादातर सब्जी खरीद के लाते हैं और पूरे मार्केट घूम घूम के सब्जी खरीदना, अच्छी सब्जी लाना पुरुष वर्ग बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। हम महिलाएं भी करते हैं, पर मेरा अपना मानना है कि पुरुष वर्ग अच्छी खरीदारी करते हैं, मैं ऊब जाती हूँ।
1: अच्छा, बिल्कुल। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी साग सब्जी खरीदना घर की महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है, आज पुरुष भी पूरी उत्साह से सब्जी मंडी या बाजार में साग सब्जी खरीदते हुए नजर आ जाते हैं। पुरुषों की सब्जी खरीदारी का अपना ही अंदाज होता है, कोई दुकानदार से भाव ताव करने में माहिर होते हैं तो कोई बिना मोल भाव किए बस अच्छी सब्जी लेकर घर लौट आते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर घर से आई लंबी सूची को देखकर सब्जी खरीदते हैं तो कुछ पुरुष अपने हिसाब से बढ़िया सब्जी खरीद लाते हैं।
0: तो चलो अच्छा है कि भाई कुछ भी हो पर सब्जी खरीद कर लाना है और उसे साफ धो के घर में पकाना है, तभी तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ मनोरंजन के लिए गीत भी जरूरी है।

0: हरानी साहिबा बताइए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है हाँ। कि जब मैं सब्जी लेकर आता हूँ तो मेरी पत्नी बहुत क्रिटिसाइज करती है, तो रानी है ना वो।
0: इसीलिए
1: और वैसे भी कहा है ना कि निंदक नियरे राखी है, तो भाई ऐसे क्रिटिसाइज होते होते होते बहुत अच्छी सब्जी लेकर आने लगेंगे आप,
0: बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। और अब हम अपने अगले विषय पे आ जाएं, जो है घर को हम पुराने सामानों का गोदाम ना बनाएं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, घर या पुराने सामानों का गोदाम, विषय तो बहुत अच्छा है। अक्सर हम घर में इतनी ज्यादा पुराने सामान जमा कर लेते हैं लेकिन वो हमारे घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पुराना सामान आपकी ज़रूरत का नहीं है तो उसे किसी ज़रूरतमंद को देना बिल्कुल सही है। आप चाहे तो उसे रिसाइकिलिंग कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, या उससे कोई नया सामान बना सकते हैं जो आपके काम आए। इससे भी घर पुराने सामानों का गोदाम नहीं बनेगा, घर में भी पुराने सामान जमा नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका सामान भी उपयोग में आ जाएगा। इसलिए अगर सामान ज्यादा पुराना हो गया है तो आपके काम का नहीं है तो आप इसे किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या रिसाइकिलिंग करवा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम, इस विषय पर हमें आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है यह विषय। हमें समय समय पर अपने घर की सफाई करते रहना चाहिए। जो सामान यानी पिछले साल से एक साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे दान कर देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। घर को यादों और सुकून का मंदिर होना चाहिए, ना कि पुराने सामान का गोदाम।
1: क्या बात है। एक साथी कहते, इंटीरियर और सजावट के जानकारों के अनुसार जरूरत से ज्यादा सामान फ्लैट या घर को सुंदर दिखने के बजाय एक खिचड़ी या कबाड़ खाने जैसा बना देता है। ज्यादा सामान होने पर घर के कोने कोने के नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे धूल गंदगी और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ये तो बात बहुत सही लिखी है उन्होंने।
0: और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि घर में अनावश्यक और टूटा फूटा पुराना सामान जमा करने से हवा और रोशनी का आवागमन रुकता है, जिससे घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अनुपयोगी चीजों को घर से, जो चीजें होती हैं वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, इससे मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये साइंटिफिक बात भी है, क्योंकि जब आप बहुत सारा सामान रखेंगे जमा करके तो धूल मिट्टी भी जमा होगी, कोनों में जाले भी लग सकते हैं, तो उससे क्या होगा, पूरा
1: कॉकरोच हो जाएंगे,
0: बिल्कुल कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और बुरा असर पड़ता है।
1: जी। एक साथी लिखते हैं, घर को साफ सुथरा रखने के बजाय उसे पुराने सामान का गोदाम बना लेना मानसिक और वातावरणीय दोनों दृष्टियों से नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो वस्तुएं पिछले एक साल से इस्तेमाल में नहीं आई है उन्हें या तो बेच दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। नियमित डिक्लॉटर घर को व्यवस्थित रखने के लिए महीने में एक बार बेकार पड़े सामान की छटनी जरूर करें।
0: बिल्कुल। और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम ये विषय में बहुत कुछ सिखाता है, और साथ ही हमारा घर धीरे धीरे कब सामान के गोदाम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। छोटी सी कोई चीज हाथ लगती है तो मन कहता है इसे फेंकना नहीं, कभी तो काम आएगी। जाने कितनी चीजें इसी उम्मीद में संभाल कर रख ली जाती हैं लेकिन वो कभी आता ही नहीं। सामान बढ़ता जाता है, अलमारियां भरती जाती हैं और घर गोदाम बन जाता है। सामान संभाल कर रखना बुरी बात नहीं है लेकिन हर चीज को बचाकर रखना भी समझदारी नहीं है। जो चीज वर्षों से काम में नहीं आई है उसे विदा करने में संकोच ना करें, शायद वो किसी और के लिए उपयोगी हो जाए और घर घर बन जाए।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि घर घर होता है, गोदाम गोदाम होता है, लेकिन बहुत सारा बेकार सामान घर में

0: इकट्ठा होने लगे तो घर को गोदाम बनने में जरा भी देर नहीं लगती। पहले के जमाने में उपयोग में नहीं ले जाने वाली कुछ वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता था, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके, और घर भी बड़ा हुआ करता था, उसमें स्टोरेज करने की पर्याप्त जगह मिल जाती थी। आज उससे सब कुछ उल्टा है, न घर में इतनी बड़ी जगह है, न पुराने सामान का उपयोग है। आज यूज एंड थ्रो का जमाना है, जमाने के साथ चलने में ही समझदारी है। हमने देखी उन घरों की महकती खुशबू, बेकार की चीजें इकट्ठा कर इसे गोदाम का नाम ना दो।
1: वाह, इन्होंने तो गाना ही बना दिया। और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि बरसात के दिनों में घर की दीवारों, छतों के किनारों पर ढेर सारे जंगली पौधे भी उगाते हैं। इनमें भी जहरीले जो जीव जंतु रहते हैं वो रहते हैं। अगर आपको लगे कि पौधे फालतू हैं तो उन्हें वहां से हटा दें, उखाड़ कर फेंक दें। खासकर पीपल, बरगद के पेड़, ये बड़े होकर दीवारों को भी कमजोर करते हैं। अगर आपके पास जगह है तो इसे उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। फेंकने की बजाय आप किसी दूसरी जगह पर लगा दीजिए जहाँ पे इसको ज्यादा जगह मिल सके उगने के लिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि अभी हमारे घर में यही चल रहा है, सब हटाओ, और हमने बहुत हटाया है। हम हर साल हटाते हैं, फिर कुछ जमा हो जाता है, पर एक बात हमारी अच्छी है, जब कुछ नया लेते हैं तो पुराना किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं ताकि उसका भी काम चल सके। जैसे हमने नई बेडशीट ली तो अब नहीं बिछा रहे, वो हमने अपनी मेट को दे दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहना चाहिए। कि घर को अपने गोदाम बनने से हमें खुद ही बचाना है। और अब क्या करना है,
1: एक गीत सुनना है,
0: सुनते हैं गीत।

लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

0: तो अब हम अपने एक श्रोता है उनका कमेंट ले लेते हैं, जो लिखते हैं कि सभी पुरानी चीज़ों को स्टोर करना तो ठीक नहीं है, पर मैंने अपने जो दादी जी हैं उनके टाइम का जो तांबे का जो पीतल के जो सामान होते थे उनको हमने अच्छे से रख लिया है, तो इस तरीके से मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें उनको रखनी है, ये इस तरीके की चीज़ें तो आप रख सकते हैं।
1: ये ना बहुत
0: हाँ
1: उससे जुड़ी भावनाएं भी होती है
0: हाँ
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जो
1: रखना
0: बर्तन
1: भी
0: होते हैं पुराने
1: चाहिए।
0: दिए
1: और अब
0: के।
1: तो ऐसा हो रहा है ना चलन कि अब पुराने जमाने की जो चीजें हैं ना उसका ही महत्व बढ़ गया है, कि पहले हम तांबे के बर्तन में पानी पीते थे,
0: हाँ
1: बीच के जमाने में, बीच के समय में हम बहुत ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करने लगे थे, अभी अभी तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे, पर अब फिर से लोग उसी की ओर बढ़ रहे हैं, फिर से तांबे पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: ये तो चीज़ें अच्छी हैं, इनको आप मत हटाइए, लेकिन बस आपको जो पुरानी जो इस तरीके की चीज़ें
1: खासकर
0: हैं,
1: प्लास्टिक की
0: प्लास्टिक,
1: थैलियाँ,
0: प्लास्टिक
1: प्लास्टिक की
0: बिल्कुल भी आप
1: बोतलें,
0: बिल्कुल मत कराइए।
1: रद्दी रद्दी के जो पेपर हैं, उसके
0: हाँ
1: बाद में जो खराब टायर होते हैं उसे
0: हाँ
1: भी हम सहेज कर रखते हैं। होता यूँ है कि बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता है, छत का पानी भर गया और फिर डेंगू मलेरिया होने लगता है।
0: बिल्कुल
1: तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि भाई हमें सफाई भी इस तरह से करें कि हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारा।
0: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता जो कहते हैं कि कबाड़ वाली जगह पर धूल और नमी जमती है, जिससे कई तरह के जीव जंतु, सांप बिच्छू भी वहां पर डेरा जमा लेते हैं, लकड़ी के सामान में नमी के चलते फफूंद लग जाती है और कई तरह के बैक्टीरिया उसमें पनपने लगते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। बचपन से हम देखते हैं जैसी बारिश खत्म होगी लोग अपने अपने घरों की सफाई करने लगते हैं, और दिवाली के पहले पुराने सामानों को कबाड़ी को बेच दिया जाता है और जरूरतमंद को दे दिया जाता है। तो मतलब आप पुराने कबाड़ को मत रखिए, उसको निकाल
1: यानी
0: दीजिए।
1: दिवाली तक इंतजार मत कीजिए, हर 2 महीने में भी साफ किया तो बहुत अच्छा होगा, इससे हमारा ही अच्छा होगा।
0: बिल्कुल, घर भी साफ रहता है थोड़ा, जब देखेंगे ना बहुत भरा भरा जो घर रहता है ना, वहां पे थोड़ा सा तनाव सा बना रहता है, आप खुद देखिए, अगर जितना हल्कापन रहेगा घर में उतना ही ज्यादा आपको अच्छी मानसिक शांति और सुकून रहेगा।
1: और ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा अपना समय, बहुत ज़्यादा एनर्जी उन सब कामों में लगाते हैं कि भाई सामान बढ़ा लिया, फिर उसको पोछना है, उसको धोना है, उसे साफ़ करना है, उसे सुखाना है, उसी में लगे रहते हैं। और इसके कारण हम अपने कुछ क्रिएटिव काम, जैसे हमें पढ़ाई करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ अच्छी बातें सीखने का हमें मौका ही नहीं मिलता, और हम इन्हीं सभी कामों में उलझे
0: बिल्कुल, उन्हीं
1: रहते
0: में लगे रह जाते हैं।
1: हैं तो हमें इन सभी बातों को
0: बिल्कुल
1: ध्यान देना
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, और घाव पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए।
1: हाँ, ये तो बात बिल्कुल
0: ये बार
1: सही
0: बार
1: कही
0: कह
1: आपने
0: के, क्योंकि
1: कि
0: हम
1: जब
0: लोग
1: हम
0: भी
1: खाली रहते हैं ना तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं, और हम ऐसे करते हैं कि कोई भी हो, किसी के भी अगर जीवन में कुछ दुख है तो हमें उसे बार बार कुरेदना नहीं है, उस दुख की उन्हें याद नहीं दिलाना है, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। एक मुहावरा है, घाव पर नमक छिड़कना, ये मुहावरा पूरी तरह से व्यावहारिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। पुराने समय में और आज भी जाने अनजाने में अगर किसी कटे हुए स्थान पर नमक लग जाए तो इससे पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। इसी भौतिक सत्य को इंसानी व्यवहार और भावनाओं पर लागू किया गया है। जब कोई व्यक्ति पहले से ही किसी मानसिक या सामाजिक कष्ट में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऐसे ताने मारे, ऐसी बातें करे जिससे उसका दुख बढ़ जाए, तो उसे घाव पर नमक छिड़कना कहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये बात हमारे साथी ने लिख कर भेजी है,
0: अच्छा, तो ये मतलब कितने अच्छे तरीके से उसको उन्होंने बताया है ना,
1: समझाया
0: वर्णन
1: है
0: किया
1: जी।
0: है। तो हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि मुहावरा घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ है किसी के दुखी या परेशान व्यक्ति को और अधिक कष्ट देना या उसकी तकलीफ को और बढ़ा देना, दुखी व्यक्ति को और अधिक परेशान करना, किसी पुरानी या ताज़ा पीड़ा को अपनी बातों या हरकतों से और उसको ज़्यादा गहरा कर देना। ये मुहावरा वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है, अगर शरीर के यही जो आपने जैसे जिस तरह से बताया तो वही बताने हुई बात को, किस तरह से मानसिक पीड़ा होती है इस तरह से करने से, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इस तरीके की बातों को करने से, कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना वैसे भी अच्छा नहीं होता ना, कहते हैं ना मुस्कुराहटों को बांटना चाहिए,
1: बिल्कुल सही
0: दुखों
1: कहा
0: को नहीं, दुखों को, ये किसी को पीड़ा देने से अच्छा है किसी को आप मुस्कुराहट दीजिए।
1: हाँ, तो आप क्या करना है,
0: एक गीत
1: गीत
0: सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं, गीत

0: हाँ तो शुद्ध सोनाली, क्या आप बताने जा रही थी मुहावरों के बारे में?
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना भाई बहुत ही प्रचलित मुहावरों में से एक है, जिसके फलस्वरूप इस मुहावरे को इस प्रकार भी कहा जाता है कि जले पर नमक छिड़कना, इसका मतलब है किसी के दुख से दुखी नहीं होकर उसके दुख रूपी घाव पर शब्द बाण जैसे नमक का मौका देखते ही छिड़काव करते हुए अपने सहानुभूति को नहीं प्रकट करना ही है। क्या बात है।
0: और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़क यानी मुहावरा हमें ये सीख देता है कि संकट के समय लोगों को सांत्वना और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी के दुख को कम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कड़वे वचनों या व्यवहार से उसे और अधिक बढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये मुहावरा भाषा को गंभीर, सटीक और मारक बनाने की क्षमता रखता है।
1: एक साथी कहते हैं कि दोनों बातें किसी दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख या कष्ट देती है। नौकरी छूट गई हो इसके बाद अगर मकान मालिक किराए लेने आए तो ये घाव पर नमक छिड़कने जैसी बात होगी। और ये बहुत सारे साथियों ने इसी तरह की बातें लिखी है। कहते हैं कि कटे पर नमक छिड़कना और घाव पर नमक छिड़कना हिंदी का मुहावरा आम बोलचाल की भाषा में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। इन सभी का अर्थ एक है, किसी दुख या परेशान व्यक्ति के दुख को और अधिक बढ़ा देना। जब कोई इंसान पहले से ही किसी मुसीबत, दर्द या सदमे में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस पूरी स्थिति में ताने मारकर, आलोचना करके, बुरी बात बोलकर उसे तकलीफ को और बढ़ा दे तो इसे ये मुहावरा कहा जाता है।
0: बिल्कुल, अगर कोई दुखी है तो उसके उसके ऊपर आप अपने शब्द बाण चला के उसे दुखी और
1: बल्कि मरहम का काम करें अपने शब्दों के माध्यम से। और अब गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो आरती हम श्रोताओं को, सखियों को धन्यवाद कहेंगे कि उनके इतने सुंदर कमेंट्स के कारण इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर सी समृद्धि आ गई और बहुत मज़ा आया उनके कमेंट्स पढ़ के। और आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा।
1: आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आप
0: और विविध भारती सुनते रहिए। और हमें दीजिए इजाज़त, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।

103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: बीते हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की थी और बातें अधूरी रह गई थी, तो चलिए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत के इस दूसरे और आखिरी भाग में।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है। वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ है उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
3: शुक्रिया।
1: श्याम बेनेगल साहब के साथ प्रतिभा जी आपने कुछ फिल्में की हैं, हरी भरी।
2: यशपाल ने भी की है। हाँ, मैंने हरी भरी की थी।
1: तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, श्याम बाबू के साथ काम का अपना अनुभव साझा कीजिए।
2: मुझे याद है जब उन्होंने मुझे बुलाया था पहले, मतलब वो रोल बिल्कुल छोटा सा रोल था लेकिन उन्होंने मुझे उस तरह से समझाया और उस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि जैसे कि वो मेन रोल है फिल्म का।
1: जी जी जी।
2: ये उनकी खासियत थी। तो हर एक एक्टर को ना वो इस तरह से ही करते थे कि जैसे कि उस एक्टर

0: का ये रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना मेन रोल है इस फिल्म का कि मतलब बस इस एक्टर के बिना ये फिल्म नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल, एक पाठशाला के रूप में जाने जाते हैं श्याम बाबू,
0: यस
1: तो आपको क्या कुछ मिला उनसे, क्या पाया सीखने के लिए कुछ भी?
0: मतलब बहुत सहज इंसान थे, बहुत ही सहज। अपना ऐसे नहीं कि मतलब एक डायरेक्टर का वो कोई चोला पहन के वो काम करते थे, बहुत ही आम लोगों में बैठना उठना, और बहुत सहज थे वो।
1: जी
0: और वो ऐसे सहज लोगों के साथ काम करते करते आप भी खुद इतने सहज हो जाते हो।
1: बिल्कुल, अब बात सहजता की चली है और हम चलते हैं असहजता की ओर। यशपाल जी ने बचपन की बहुत सारी यादें साझा की,
0: जी
1: तो आप बताइए अपना बचपन, आपका बचपन कैसा था?
0: हाँ, ऐसे ही हमारा वही
1: खेल
0: आम की
1: वाले हाँ,
0: गुठलियाँ
1: आम की
0: वगैरह, हम भी
1: गुठलियाँ वाले।
0: खेलते थे वो सारी चीजें। गलियों में जब कीचड़ से सन जाते थे सारा, और वो जो एक सलाई होती थी उसको ऐसे गाड़ना, और उस
1: मिट्टी में,
0: वो
1: हाँ
0: वाला खेल तो हम
1: अच्छा
0: खूब खेले। खो खो,
1: हाँ।
0: संगीत कुर्सी, ये सारे खेल हम खेलते थे।
1: तो घर पे डांट नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय तो
0: अरे
1: लड़कियों
0: मार
1: की मनाही
0: पड़ती थी,
1: बहुत होती
0: डांट
1: थी।
0: किधर
1: तो बताइए ना वो एक आध किस्सा, किसी दिन
0: पड़ती
1: दौड़ के खेल के आई हो और मार पड़ी हो।
0: स्कूल के लिए मुझे ना साइकिल सीखनी थी, कुछ पैसे देके साइकिल सीखनी पड़ती है, तो वो साइकिल मैं सीख रही थी तो मेरे पापा ने ना देख लिया मुझे, तो मैं गिर गई साइकिल से, और सुबह तक मेरा पैर इतना
1: सूजा
0: सूज
1: था
0: गया
1: ओ
0: था। तो मैं मतलब सुबह मैं जब उठी तो पापा ने देखा मेरा पैर इतना बड़ा सूजा हुआ है, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, इतना बड़ा क्यों सूज गया पैर? तो मैंने कहा वो मैं गिर गई थी वहां पे, वो पत्थर था, कुछ ऐसे झूठ बोल दिया। तो वो ना सीधे उस सूजे हुए पैर पे खड़े हो गए और मुझे बोल रहे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मतलब इतना मतलब कि झूठ नहीं बोलना है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इस तरह का।
1: नैतिकता बहुत
0: हाँ,
1: सिखाई
0: बहुत
1: जाती
0: सिखाई
1: थी
0: जाती थी।
1: बचपन।
0: माँ
1: जी
0: बाप दोनों टीचर थे
1: अच्छा,
0: मेरे, माँ
1: कौन
0: बाप
1: से गांव की
0: दोनों।
1: बात है ये?
0: ये जलगांव के पास एक गांव है कासोदा, वहाँ
1: जी,
0: गांव की बात है।
1: तो अपने माता पिता से फिर वो नैतिकता की शिक्षा लेकर आई, अपने बच्चों को सिखाया, कितनी मुश्किल
0: मोबाइल
1: पड़ी।
0: की जनरेशन है ये, यहाँ नहीं सिखाई जा सकती नैतिकता की बातें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही मेरी उनको, मतलब जैसे मैं स्पिरिचुअल चीज़ों में थी तो मैं उनको लेके जाना वहाँ पे, मेडिटेशन ये वो सारी चीज़ें थोड़ा मैंने दिया वो सब कुछ उनको।
1: जी, तो कौन सा गाना यहाँ पर आना चाहिए?
0: गुलजार साहब की जो वो फिल्म है मेरा कुछ सामान।
1: तो सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद फिर यशपाल जी की ओर चलते हैं।
1: मेरा कुछ सामान गाने में एक लाइन है, 116 चांद की रातें वो लौटा दो, तो गुलजार साहब के चार नाटक मैंने किए हैं लिखे हुए, तो वो हमारे साथ रहते थे इसलिए बहुत करीब रहे। तो लखनऊ में शो था उर्दू एकेडमी में, तो उसके बाद डिस्कशन थी, तो एक शरारती तत्व तो किसी ने पूछा गुलजार साहब से कि सर वो जो गाना है इजाज़त में मेरा कुछ सामान, उसमें एक लाइन है 116 चांद की रातें, सर वो 116 ही क्यों हैं? तो गुलजार साहब बोले कि बेटा वो 117 थी, मुझसे गलती हो गई। भाई इतना ठहाका हॉल के अंदर और इतने हंसी, क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है बाप रे गुलजार साहब का।
0: ऊपर से जितने गंभीर दिखते हैं, हमने सुना है हाँ। गुलजार साहब काफी ह्यूमरस बातें भी करते हैं।
2: नहीं नहीं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। हाँ। कमाल
0: जी, आपकी बहुत सारे किरदार में, कहीं बेबसी है, कहीं एक इंस्पेक्टर है बेबस है, कहीं लाचारी भी है, और कहीं नकारात्मक किरदार निभाया है, और कहीं कॉमेडी है, तो ये जो किरदार की विविधता है, इन सारे किरदार की विविधता को कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे आप भीतर तक ले जाते हैं, कोई राज की बात बताइए, हमारे बहुत सारे श्रोता सीख रहे होंगे। जो
1: नहीं, देखिए कई बार ना एक रिजिडिटी आ जाती है ना एक्टर के अंदर अगर, और वो बाहर की चीज़ें ग्रहण ना कर पाए तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, हर रोल में एक जैसा दिखता है
0: जी।
1: तो रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, आपको एक पात्र की तरह, घड़ा एक पात्र है जैसे, खाली रहना बहुत ज़रूरी है, सरेंडर करना, मतलब आपके कोई करेक्टर आए तो आप अपने आप को यशपाल को सरेंडर कर दो थोड़ी देर, जितना हो सकता है कोशिश करना चाहिए, वैसे तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो क्योंकि यशपाल के बॉडी है, आवाज़ है, हाव भाव हैं, इतने साल हो गए, उसकी कुछ आदतें हैं, वो तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन स्क्रिप्ट बता देती है कि आपको क्या करना है
0: जी।
1: तो इसलिए जो कहानी है और स्क्रिप्ट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी कैमरामैन के लिए, ना कि कोई स्टार, क्योंकि स्टार को देख करके कई लोग डर जाते हैं या अपने आप के आइडियाज चेंज कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है।
0: बिल्कुल
1: स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ स्टारों की फिल्में बर्बाद होती हुई देखी हैं इसी चक्कर में कि स्टारों के प्रभाव में डायरेक्टर और कैमरामैन आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वो फिल्म बर्बाद हो जाती है
0: जी। क्या
1: अगर वो बिल्कुल अपनी कहानी पे रहें और अपना करें, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं ऐसे, चाहे कितना ही बड़ा स्टार आ जाए, मेरी कहानी ये है तो यही रहेगी, तो वो सफल भी हैं, वो अच्छा काम भी करते हैं, और ज़्यादातर लोग तो ये विविधताएं जो हैं करेक्टर्स की, ये स्क्रिप्ट देती है, आपको स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस ओर जा रही है, ये कॉमेडी की तरफ जा रही है, ये वेलकम टू द जंगल टाइप है, या ये गंगा जल टाइप है, या लगान टाइप है, या इसका जॉनर क्या है
0: जी, जी, जी।
1: तो वो सारा पता चल जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आदमी फिर उसी दिशा में काम करता है
0: जी,
1: बाकी दिशाएं सब छोड़ भूल जाता है
0: जी। वेलकम टू द जंगल का जिक्र किया, तो ये इसके बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव और हाँ जैकी श्रॉफ और फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी और रवीना टंडन और मुकेश तिवारी और कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और दलेर मेहंदी, और बाप रे बहुत लोग हैं इसमें।
2: राजपाल
0: राकेश देशमुख हैं, आपकी कैसी
1: हमारी भूमिका हमें भी नहीं पता अभी तक, वो देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि सच में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी बनी है, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि इसमें ना कोई कहानी ऐसा कुछ हमको नहीं सुनाया गया।
0: हाँ, हाँ,
1: बस हमको खड़े हो जाओ, यहाँ पे ये करना है, ये मूव करना, ये बोलना, ये बोलना है, हमने बोल दिया, बस खत्म।
0: अच्छा,
1: और इसमें ऐसा कुछ करेक्टराइजेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस धमाका है और धमाकेदार फिल्म है, और अक्षय कुमार ने फिर से एक बार वर्सटाइलिटी की है एक्टिंग, बड़ी वेराइटी है उसकी एक्टिंग में, और बड़ा अच्छा मुझे सुनील शेट्टी के साथ भी, इनके साथ एक नया अच्छा काम करने को मिला, काफ़ी देर तक परेश रावल जी के साथ, बड़े सीनियर एक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये 26 जून को रिलीज है, अहमद खान डायरेक्टर हैं इसके, और वेलकम दो तो आ चुकी हैं, एक और दो, तो ये वेलकम थ्री है मान लो, वेलकम टू द जंगल
0: जी। अब आपकी उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो काफ़ी चर्चित हैं और जिसमें आपने खास तरह की भूमिका निभाई है, वो है अब तक 56, जिसमें आप इम्तियाज सिद्दीकी इन सब इंस्पेक्टर
2: मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है।
0: क्या बात है, प्रतिभा जी की फेवरेट फिल्म। और फिल्म धूप है, इंस्पेक्टर राम सिंह मलिक बने हैं। आजा नचले इंस्पेक्टर साहिब, टशन में एसीपी कुलदीप सिंह बने हैं आप। वेल्डन अब्बा में पुलिस कांस्टेबल बने हैं। और इतनी बार पुलिस की,
1: ये आपने सारी पुलिस पुलिस वाली उठा ली फिल्म।
0: हाँ बिल्कुल, तो हम वही आ रहे हैं। हम ये नहीं जानना चाहते कि पुलिस की भूमिका निभाई तो कैसे मिली, ये नहीं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस की भूमिका हर फिल्मों में क्यों चुना गया, एक बात। दूसरी बात कि इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी?
1: तो सारी फिल्मों में तो नहीं, वेल्डन अब्बा धूप वगैरह में तो ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर मी। लेकिन हाँ, अब तक 56 और एक कालकूट है वेब सीरीज, उसमें जो विजय वर्मा के साथ मैं पुलिस में हूँ, वो पूरी पुलिस की ही कहानी है एक्चुअली। तो इन फिल्मों में मुझे बहुत काम किया मैंने, मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और क्योंकि ये करेक्टराइजेशन था, उसमें नाना पाटेकर थे सामने, तो आप अपने आप को बहुत बुढ़ा चढ़ा करके ओवर करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए उसमें मैंने बहुत सब्ज्यू करके किया। कोशिश की मैंने पूरी फिल्म के अंदर कि मैं बहुत लाउड ना हूँ और जेन्युइन रहूँ जितना हूँ, और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ। तो नाना पाटेकर ने भी बहुत दी फिल्म देख के मुझे बहुत पीठ थपथपाई, गले लगाया और बोला कि तुम जान हो फिल्म की, रियली तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये रोल कि कोई कैसा करेगा, बड़ा डर रहा था मैं, बट यू हैव डन ब्रिलियंट जॉब। तो उन्होंने किया, फिर बाद में हमने अपहरण भी किया। तो इसमें क्या तैयारी करनी पड़ी मुझे बाकी।
0: तो राम गोपाल वर्मा के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, उनसे जुड़ी हुई कोई किस्सा बताइए। बहुत सारे किस्से हैं आपके पास।
1: बहुत ज़्यादा किस्से नहीं हैं। अब तक 56 में एक मेरी डेथ का सीन था जो वो करने वाले थे डायरेक्ट, तो शमी तमीन को बोला कि मैं इसको कुछ करता हूँ देखता हूँ, तो हमने कुछ

0: एक प्रोड्यूसर के साथ बैठे थे, तो बोले यशपाल, मैंने कहा हाँ जी, अरे अरे, मैं कहा कहाँ बुलाया उन्होंने, एक फाइव स्टार कोई होटल था उसी में बैठे थे हम, तो वो नीचे बैठे थे तो मैं क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने बुलाया एक प्रोड्यूसर, मीट हिम, ही इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री। मैंने कहा नमस्कार जी, नमस्कार, ही हैज डन अब तक 56 विद मी, यू शुड सी दैट फिल्म, व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैज डन,
1: क्या बात है,
0: मतलब इस तरीके से मिले, आई थिंक इन दिस फिल्म यू विल बी देयर, ऐसे बोल के चले गए, बाद में कभी बुलाया नहीं।
1: क्या बात है, अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनाए।
0: याद है तुमको तूने कहा था तुझे नहीं रूठेंगे, क्या कौन सा गाना है, बिगनिंग क्या है इसकी।

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया प्रतिभा जी आपने। ये बताइए क्या हुआ तेरा वादा, कभी कोई वादा तोड़ा है यशपाल जी ने आपका? बहुत
1: इन्होंने
0: सारे
1: मेरा बहुत बार दिल तोड़ा
0: बताइए ना कुछ अंदर की बातें क्योंकि हमारे श्रोता उत्सुक हैं सुनने के लिए।
1: हाँ, 6-6 महीने शूटिंग चलती थी और मैं इधर अकेली रहती थी बहुत
2: अगर ये
1: समय
2: बोल
1: तक।
2: रही है कि बहुत बार दिल तोड़ा है तो फिर वो गाना हो जाए, एक दिल के टुकड़े
1: बहुत
2: हजार
1: ज्यादा पुराना
2: हुए
1: गाना है
2: कोई
1: वो
2: यहाँ गिरा कोई। अरे लेकिन
1: यहाँ
2: गाना कमाल है
1: गिरा।
2: ये।
0: नहीं
1: हाँ
0: अच्छा चलिए ये बताइए हमें, यशपाल जी की कौन सी बात आपको नापसंद है?
1: वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है पर्टिकुलर कि मुझे ये ना पसंद है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो तो उसको सिरे से लेके
0: वो
1: पैर
0: तो
1: तक पसंद
0: पसंद तो
1: करते
0: शादी
1: हो।
0: के पहले होता, शादी के कुछ साल तक

0: उसके बाद तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं हर पति
1: नहीं नहीं
0: पत्नी
1: वो
0: में।
1: लड़ाई वड़ाई तो हमारी आज भी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं मैं सोच नहीं सकती उनके बारे में।
2: अब हम क्या उससे ऊपर उठ चुके हैं
0: जी।
2: पहले शुरू में प्यार रहा, फिर खूब लड़ाइयां हुई, फिर लड़ाई कर कर के जब थक गए फिर दोबारा से प्यार हो गया।
0: अच्छा
2: अभी हम वो वाली स्थिति में चल रहे हैं।
0: एक आध लड़ाई वाला किस्सा बता दीजिए ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि इतने झगड़े के बाद फिर वापस प्यार होता है।
2: अरे हम लड़ते हैं तो सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, भूल चुके होते हैं कल क्या हुआ था।
0: अच्छा
2: कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम उसको ले करके जिंदगी भर गांठ बांध करके चलें, नहीं तो जी नहीं पाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाते हैं ऐसे। सब लोगों के लिए है ये बात, हमारे लिए ही नहीं। भूलना बहुत जरूरी है लड़ाइयों को, गलतियों को। हाँ गई बात गई, क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है, बच्चे हैं, अभी हम कितनी उम्र बची है इसमें भी अब लड़ झगड़ के बिता देंगे तो फिर क्या बचेगा।
0: बिल्कुल, और ये समय होता है एक दूसरे का हाथ थाम के।
2: बिल्कुल बहुत जरूरी है।
0: अब जरा प्रतिभा जी बताइए कौन सी बात नहीं पसंद करती हैं?
1: ये मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, और कोई बात? घरेलू चीजें जैसे कोई चीज रखने की इधर उधर?
1: नहीं नहीं, ये बहुत तरीके से रखते हैं हर चीज।
0: अच्छा,
1: घर में उल्टा ये ज्यादा तरीके से रखते हैं, मैं जबकि इतर बितर करके रखती हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है, बहुत।
1: मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है वैसे।
0: और आप बताइए यशपाल जी, प्रतिभा जी की कौन सी बात आपको पसंद नहीं है?
2: इसकी यही चीज पसंद नहीं है कि खाना खा के बर्तन वहीं पड़े रहते हैं। कपड़े चेंज किए तो कपड़े वहीं फेंक दिए। कुछ चीजें मतलब मान लो कोई फोटो है, वो कैंची से काटे हैं तो उसके कटे हुए कतरने वहीं बिस्तर पे पड़ी हैं, कैंची वहीं पड़ी है। फिर लाइट बुझाना नहीं, बिल बढ़ता रहे, कोई लाइट जलती रहे, उसको भूल जाती है लाइट बंद करना, ये वाली चीजें जो है ना ये बहुत बेकार।
0: सच बोल रहे प्रतिभा जी? चलिए मान लेते हैं। बताइए अब एक दूसरे का पसंदीदा रंग कौन सा है? आप बताइए यशपाल जी को कौन सा रंग पसंद है।
1: यशपाल तुमको कौन सा रंग पसंद है?
0: नहीं नहीं, आपको अपने से बताना है।
2: जो कुर्ता हमेशा पहनता हूँ,
1: जबकि मेरा भी पसंद का कलर ब्लू ही है।
0: क्या बात है, आप बताइए प्रतिभा जी की पसंद
2: नहीं,
0: का रंग?
2: इसका जो चॉकलेट कलर का जो एक सूट था NSD में, वो जो उसमें लगती थी ना, वो आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं लग पाई।
0: ओहो क्या बात,
2: वो ड्रेस में सोच रहा हूँ, और वो यूनिक मतलब जैसे एंटीक पीस नहीं होते जो राजस्थान के या किसी फोक देसी टाइप की, जो इंडियन ड्रेस, वो ड्रेस इसके ऊपर इतनी फबती थी, और इसके बाल भी ऐसे काले काले मोटे मोटे लंबे लंबे, सारी मतलब दुनिया रश्क करती थी।
0: क्या बात,
2: और इसकी जो बिंदी लगाती थी सांप जैसी, ऐसे घुमा फिरा करके काली सी, अभी भी लगी है देखो। अच्छा वो टीवी नहीं है, रेडियो है। अरे नहीं, रेडियो में कैसे दिखेगे, पर लगा रखी है, मैं बता रहा हूँ,
0: श्रोता सुन रहे हैं वो इमेजिन कर रहे हैं।
2: तो वो वाली ड्रेस जो उसके मेरा फेवरेट कलर तो जो इस पे फबता है वही है, कोका कोला कलर का।
0: इतनी सारी आपकी तारीफ खूबियां बता दी यशपाल जी ने, अभी आप सोच के चुन के बताइए क्या खूबी है यशपाल जी के, कोई खास याद हो NSD वाले दिन और या फिर अपनी जिंदगी में।
1: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है, कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीज़ों को। वैसे मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है कि मैं फॉरगिव कर पाती हूँ, मतलब
0: आप गांठ रख लेती हैं मन में।
1: हाँ थोड़ी सी मैं तो रख लेती हूँ।
0: अमूमन पुरुषों में ये बात आती है कि महिला जब कहीं समानांतर चल रही तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी ग्रो करती है आगे जाती है, तो पुरुषों में ये बात आती है यशपाल जी।
2: अरे बेकार में बदनाम है पुरुष, काहे को ऐसे है, मैंने तो जितनी जगह भी देखा है हर जगह बेचारे पुरुष भीगी बिल्ली की तरह ही रहते हैं हमेशा, हमेशा पत्नी को सम्मान ही देते रहते हैं, हमेशा मतलब महिलाओं का सम्मान ही करते हैं, बोलते भी हैं करते भी हैं, फिर भी बेचारे बदनाम है। बताइए
0: देखिए, यहाँ
2: सारी उंगलियां एक जैसे नहीं होती, सारी महिलाएं एक जैसे नहीं होती, वैसे सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं होते, हमने ये भ्रांतियां बना ली हैं। तो इसीलिए हमको इंसान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप जाति भेद भाव धर्म, इन चीजों को लेकर के हम किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और हम तो कलाकार हैं तो कलाकारी ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा।
0: बिल्कुल सही बात है। अब वापस फिल्मों की ओर आते हैं यशपाल जी, बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, और अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी सब फिल्मों में से कोई 5 पसंदीदा फिल्मों का नाम लीजिए, तो क्या याद कर पाएंगे, बताएंगे 5 या 6?
2: हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
0: और उससे जुड़ी कोई खास बात, कोई खास याद साझा करना?
2: अब तक 56 इज माय फेवरेट फिल्म, और अपहरण, गंगाजल, लगान, और एक है वेलकम टू सज्जनपुर, श्याम बेनेगल की।
0: जी जी,
2: ये ऑलमोस्ट

0: ये सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्में हैं, और दास कैपिटल प्रतिभा के साथ हमने की थी, और मेरी एक फिल्म है दादा लक्ष्मी,
1: जी
0: जो कि आई थिंक इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें हर पहलू, परफॉर्मेंस हो, डायरेक्शन हो, म्यूज़िक हो, गाने हो, लिरिक्स हो, कैमरा हो, सारी
1: उसमें मैंने भी
0: बहुत,
1: छोटा सा
0: उसमें
1: रोल किया
0: प्रतिभा ने
1: था।
0: भी एक
1: जी
0: रोल किया,
1: जी
0: बहुत ही
1: जी
0: बढ़िया हरियाणवी बोली है इसने, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, और 107 अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में उसको,
1: जी जी
0: कांस में भी, मैंने बताया था नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको,
1: बिल्कुल
0: तो बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है वो। उसका पार्ट टू बनाना है अभी, बाकी है, अभी
1: जी
0: पार्ट वन तो बन गया है, 2.5 घंटे का है,
1: जी
0: 5 साल लगे बनाने में,
1: क्या बात है,
0: लेकिन
1: बहुत
0: बनाई,
1: बढ़िया
0: अच्छी बनाई, अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि जो सोचा था वो हुआ।
1: जी। आपने डायरेक्ट भी की है
0: जी, डायरेक्ट भी मैंने की है, को
1: और
0: प्रोड्यूस भी की है
1: तो ये विचार कहाँ से आया डायरेक्शन का? तो
0: मुझसे आया था
1: जी
0: ये तो खैर है ही इंस्पिरेशन हमेशा से, लेकिन पर्टिकुलरली इस फिल्म का जो आइडिया है वो, एक फिल्म देखी थी मुझे, नट सम्राट, नाना पाटेकर की,
1: जी
0: उसमें एक कहानी थी, एक्टर की कहानी थी, जो कि बहुत ही सच्चा होता है, और वो अपने बच्चों को
1: बहुत
0: सब कुछ
1: फेमस
0: दे
1: प्ले
0: देता
1: है
0: है।
1: मराठी का नट सम्राट।
0: हाँ, तो उस फिल्म को देख के मुझे लगा कि एक हरियाणवी एक्टर की अगर स्टोरी की जाए, और बाय चांस उसी वक्त मेरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, और राजीव भाटिया ने डायरेक्ट की थी, मेरा क्लासमेट था, फिर सतरंगी जो मैंने मेन रोल किया था उसको भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला,
1: जी जी
0: नेशनल अवार्ड, संदीप शर्मा ने डायरेक्ट की थी। इसको सोच करके मुझे लगा कि हरियाणवी फिल्मों का एक दौर चलना चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था उस वक्त, मैंने सोचा हरियाणवी में बनाते हैं कोई फिल्म, तो हमने फिर पता किया कि कोई एक्टर है, तो राजू मान जी ने बताया हमें कि एक एक्टर हैं जो लीजेंड एक्टर हैं हरियाणा के, उनको हरियाणा का शेक्सपियर बोला जाता है,
1: जी जी जी
0: पंडित लक्ष्मी चंद। तो फिर मैंने उस पे काम शुरू कर दिया, रिसर्च की, 17 किताबें पढ़ी मैंने, और उनका बहुत बड़ा नाम था, उनका बहुत बड़ी कविताएं थी, उनके कमाल के वो इंसान थे, कमाल की कहानी थी, तो फिर हमने उस पे फिल्म बनाने शुरू कर दी। बाद में पता लगा कि इनको 2 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल है, कम से कम भी 6-7 घंटा चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत है,
1: जी
0: गाने भी बहुत हैं, तो उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया,
1: जी
0: और मैंने फिर इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाने की सोची, और एक पार्ट में जहाँ तक मैं नहीं हूँ, मेरे आने से पहले, और एक पार्ट मेरे आने के बाद,
1: जी
0: जहाँ मैं नहीं हूँ वो हो चुकी है, और अभी मैं जिसमें आऊँगा मेन, उसमें अभी आना है,
1: तो ये दूसरा भाग अब बनेगा।
0: दूसरा भाग बनेगा, अभी थोड़ा सा
1: जी
0: बरेली के बच्चन से थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ।
1: जी जी तो शुभकामनाएं बरेली के बच्चन के लिए, तो शुभकामनाएं हमने दी है और इस फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। तो अब बताइए यहाँ कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को।
2: बा

0: रावड़ी राठौड़ में एक आपने किरदार निभाया है, उस किरदार के बारे में बताइए।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था और मजबूर इंस्पेक्टर था, जिसकी वाइफ को ये उठा के ले जाते हैं गुंडे लोग और विलेन लोग, और जिसमें मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वहाँ की पुलिस, शहर की सब सारा सिस्टम बेकार हुआ पड़ा है। तो ये बात जब नया नया इंस्पेक्टर आता है अक्षय कुमार, उसको पता चलती है, तो फिर वो जा कर के सबको मारता पीटता है और वही वाइफ को छुड़ा के लाता है और फिर वो सिस्टम को चेंज करता है धीरे धीरे। इस टाइप की कहानी है कुछ ये, तो बड़ा अच्छा लगा, मज़ेदार था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी, और बहुत ही कमाल की लोकेशन थी। अगर आप देखें उसमें पहाड़, बड़े बड़े पत्थर
0: जी,
1: और
0: जी,
1: ये लोकेशन बहुत कमाल की थी, इसलिए वो वहाँ पे शूटिंग की गई थी। तो वहाँ गए थे शूट करने,
0: जी।
1: अच्छा रहा।
0: यशपाल जी, फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइए, आप लोग फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं।
1: जी हाँ,
0: आप
1: प्रतिभा उसकी फाउंडर मेंबर है, मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ, और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम से होता है, अभी 7वां साल चल रहा है, और हम हर साल करते हैं। पूरी दुनिया से फिल्में मंगवाते हैं, फिल्म फ्रीवे के जरिए या ऐसे डायरेक्ट भी, तो उसमें शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में और गाने, वीडियो सॉन्ग्स और AI फिल्में भी इस बार ऐड किया है
0: जी।
1: तो इस तरीके, स्टूडेंट फिल्म, मोबाइल फिल्म, ये सारे कैटेगरी होती हैं। तो पूरी दुनिया से फिल्में आती हैं, तकरीबन 300 के आसपास फिल्में आ जाती हैं
0: जी,
1: टोटल, जिसको हम देख करके सेलेक्ट करते हैं उसमें से तकरीबन 100 के आसपास, फिर उस वो 100 फिल्में हम नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टरों को देते हैं, जूरी फिल्म मेकर्स को,
0: जी जी
1: जूरी को, कि आप फीचर फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप शॉर्ट फिल्म्स का रिजल्ट दीजिए, आप लॉन्ग शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्री का, इस तरीके से हम देते हैं और वो फिर रिजल्ट देते हैं। फिर जो वो रिजल्ट देते हैं वो हम अनाउंस करते हैं और 3 दिन का फेस्टिवल रखते हैं, 2 या 3 दिन का, अब 3 दिन का हो गया है, तो वेदा कुंभा में बॉम्बे में हर दिसंबर को हर साल तो होता है फेस्टिवल, और उसमें फिर हम सम्मानित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं, और कुछ सेलिब्रिटी भी बुलाते हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा आ गए क्लास के लिए, रघुवीर यादव आ गए, और अनुभव सिन्हा की फिल्म दिखाई थी इस बार ओपनिंग फिल्म, तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं, देखते हैं।
0: जी जी, बात अनुभव जी की, चलिए अनुभव जी से कोई आपकी मित्रता या उनसे मुलाकात का लम्हा याद यहाँ पे साझा करेंगे आप?
1: नहीं, ये मैंने किया था ना, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे है, IC, वो जो हवाई हाईजैक हुआ था हवाई जहाज,
0: जी जी जी जी,
1: हाँ, उसमें हाँ, मैंने काम किया था, एक छोटा सा, बढ़िया, अच्छा रोल था, छोटा
0: जी,
1: सा, वो एकमात्र व्यक्ति था जो उस आतंकवादी को थप्पड़ मारता है,
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: उसका
0: जी,
1: रोल था मेरा,
0: बिल्कुल।
1: मैंने बोला आपके साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कोई भी रोल हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला शुरू में, बेटा छोटा सा रोल है यार, देखो कहीं तुमको ऐसा ना लगे, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं लगेगा, लेकिन रोल इतना अच्छा था कि मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया। मेरे को देख के लोगों ने सराहा कि यार क्या सॉलिड रोल किया तूने, 2 या 3 सीन है मेरे, लेकिन जो भी है कमाल के, मतलब तुमने कर दिया है, ऐसी सिचुएशन पे है वो सीन। तो मैंने कहा चलो, तो अनुभव सिन्हा का मैं फैन रहा हूँ, प्रतिभा भी, हम दोनों उनकी फिल्मों के, क्योंकि उनकी सारी फिल्में किसी न किसी मुद्दे पे होती हैं
0: जी, जी,
1: और बड़ा अच्छा वो करते हैं, तो इसीलिए प्रतिभा ने ही सलाह दी थी कि अनुभव सिन्हा को बुलाओ ना, उनकी फिल्म दिखाते हैं, तो फिर थप्पड़ फिल्म दिखाई थी हमने और ओपनिंग फिल्म, और
0: बेहतरीन फिल्म थी थप्पड़,
1: जी जी, तो उसमें फिर हम मिले थे।
0: जी प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है आप दोनों के माध्यम से और आप भी फाउंडर हैं, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए। यशपाल जी ने अपना अनुभव साझा किया है, और आप बताइए इसके बारे में, आपका क्या अनुभव होता है कि एक बड़े फलक पर ये काम कर रही हैं, और अमूमन ये काम महिलाओं के खाते में कम ही आता है,
2: हाँ,
0: तो कैसा एक्सपीरियंस होता है इतने सारी फिल्मों को अपने पास बुलाना और एक एक मुखिया की तरह करना?
2: एक्चुअली ये मैं और मेरा एडिटर, हमारी फिल्म आमो आका एक से ये मैंने काफ़ी साल लगे थे मुझे इस फिल्म को बनाने में, तो वो हम लेकर फिल्म फेस्टिवल में गए थे एक बार नासिक में, तो इतना मिसमैनेजमेंट वहाँ था, और दादा साहब फाल्के के नाम से वो फेस्टिवल करते हैं, और इतना मिसमैनेजमेंट और ये था, तो फिर मुझे वो मेरा एडिटर था, उस प्रतिभा जी आप तो ऐसे 10 फिल्म फेस्टिवल कर सकते हो,
0: क्या बात है।
2: तो मैंने कहा चलो फिर करते हैं, है ना, तो वो बात आई गई हो गई थी। और फिर मैं एक फिल्म लिख रही थी, उसके बीच में मुझे मेरी एक असिस्टेंट थी वो मुझे कह रही थी कि आप क्यों नहीं करते कोई फिल्म फेस्टिवल, आपको करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, ये बात मुझे काफी दो चार लोग अभी तक कह गए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशारा है। तो मैंने सोचा कि फिर चलते हैं, करते हैं, शुरू किया हमने। और टाइटल भी बिल्कुल आसानी से मिल गया हमें, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जबकि मुझे लग रहा था नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके
0: जी
2: होंगे
0: जी
2: या कहीं तो ये होगा टाइटल रजिस्टर्ड। पर अनुमन ऐसा हो गया कि हमें बिल्कुल आसानी से मिल गया
0: जी
2: और बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो, ये टाइटल का ही तो मेन खेल होता है ना फिल्म फेस्टिवल में।
0: जी
2: तो वो सब कुछ मतलब हम कर रहे थे, फिल्म फ्री वैसे भी फिल्में आ रही थी, और पहले ईयर में हमें 250 फिल्में मिली,
0: जी जी
2: और जबकि वो कोरोना का पीरियड था,
1: लॉकडाउन था उस वक्त।
0: जी
2: लॉकडाउन था और कहीं आप कर नहीं सकते थे। ऑनलाइन हमने फिल्म फेस्टिवल किया था,
0: क्या
2: पहले
0: बात।
2: 2 साल हमने ऑनलाइन किया, तो भी हमें इतना ह्यूज रिस्पांस ऑनलाइन में भी रहा।
0: और अब वेदा कुनवा में
2: ऑफ कोर्स अब
0: हो
2: तो
0: रहा है,
2: फिजिकली करते ही
0: तो
2: हैं।
0: बहुत बढ़िया है। और जो भी हमें लगता है श्रोता सुन रहे होंगे वो इसमें शामिल होना चाहेंगे तो शामिल भी
2: बिल्कुल
0: हो सकते हैं।
2: बिल्कुल होना ही चाहिए।
0: और प्रतिभा जी, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन आपने किया है जिसमें यशपाल जी भी।
2: यशपाल जी मेरे प्रोड्यूसर
0: अच्छा, वो प्रोड्यूसर है तो उनको डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला आपको?
2: नहीं, कभी नहीं मिला। नहीं, हालांकि वो चाहते हैं, कभी मुझे बोलने भी थे, तो मुझे सोच के कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते ना।
0: कोई रोल दे दो हमें भी, ऐसा बोला तो उस शॉर्ट फिल्म के निर्देशन का अनुभव आप साझा कीजिए, कुछ फिल्मों के
2: मतलब
0: नाम बताइए।
2: एक पिज्जा एमएमएस है मेरी फिल्म, एक नई अम्मी है,
0: जी
2: एक खुली खिड़की है, फिर आमो आंखा एक से है ना, ये सारी फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो,
0: जी
2: नो
0: जी
2: एडिटिंग, एक ही कट है वो 16 मिनट का।
0: अच्छा, क्या बात है।
2: हाँ, तो वो फिल्म का हम लोग एटलीस्ट हफ्ता भर रिहर्सल किए थे, और उसके बाद वो एक कट करने के लिए एटलीस्ट पूरा दिन लग गया था फाइनल कट आने तक।
0: अब एक गाना सुनते हैं, फिर थोड़ी
2: हाँ
0: सी बातें और करते हैं।
2: जी,
0: एक गाना बताइए, कौन सा सुनवाए?
2: कुहू कुहू बोले कोयलिया।

0: थोड़ी देर पहले जब आपकी निजी जिंदगी की बातें हो रही थी तो यशपाल जी ने आपकी बड़ी खासियत बताई, खूबसूरती को बयां किया। आप भी कुछ ऐसा वर्णन कीजिए ना, बताइए यशपाल जी की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है और उनकी क्या चीज देखकर आप फिदा हुई थी?
1: उन्होंने मैं तो, इनकी तो एक्टिंग ही देख के बहुत फिदा हुई थी।
0: और बाकी
1: मुझे ऐसा लगता था कि बस ये मतलब एक शानदार एक्टर का एक कमाल का एक बंदा है और कमाल का पर्सोना है।
0: उनकी एक्टिंग वाली कौन सी फिल्में हैं जो आपको हर वक्त याद आती हैं और जिसका
1: लगान तो ऑफ कोर्स मेरी बहुत ज्यादा
0: और कुछ फिल्मों के नाम
1: है, और अब तक 56 और मुंबई से आया मेरा दोस्त, इनकी बहुत ही मतलब ये बिल्कुल इसमें प्रिंस जैसे लगते हैं बिल्कुल।
0: क्या बात है।
1: हाँ,
0: और कभी उनकी आलोचना भी करती हैं उनकी एक्टिंग की कि ये रे ये एक्टिंग?
1: हाँ, मैं बोलती हूँ उनको कि ये थोड़ा सा वही वही वही वही तुम कर रहे हो।
0: तो उनकी जब आलोचना करती हैं तो क्या रिएक्शन होता है यशपाल जी का?
1: बिकॉज हम लोग क्लासमेट्स हैं और बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सीरियसली लेते हो मेरी चीज़ों को, ऐसे नहीं लेते कि हाँ इसको क्या समझ में आता है टाइप्स।
0: जी जी और आप महाराष्ट्र की मराठी भाषी, वो हरियाणा के हिसार के, वो हरियाणवी, तो आपने हरियाणवी सीखी, उन्होंने मराठी सीखा, एक दूसरे को भाषा आदान प्रदान?
1: हाँ, मुझे तो हरियाणवी तो सारी समझ में आती है, इन्होंने लेकिन एक ही वाक्य सीखा मराठी का।
0: कौन सा?
1: माझे भाई को मराठिया है।
0: दो चार वाक्य सुना देती है, सिखा देती है ना कुछ।
2: देखो मैं ना मराठी समझ जाता हूँ अब।
0: हाँ।
2: मैंने समझने की कोशिश बहुत की, क्योंकि मैं ससुराल में जाता था सब मराठी बोलते थे, इसके दोस्त लोग आते थे कोई मराठी, सब मराठी दोस्त बोलते थे मराठी, फिर इसकी सहेलियां आती थी मराठी, वो मराठी बोलते थे, इसका मतलब जो भी आता था मराठी बोलते थे। तो मैंने कहा मुझे समझ में कहीं मेरी चुगली उगली तो नहीं कर दें। तो हुआ क्या कि ये NSD में जब थे तो मुझे ना बड़े प्यार से बोलती थी, माझा शेमड़ा, माझा गाढ़ो, माझा पता नहीं क्या क्या बोलती थी। तो मैंने एक दिन पूछ लिया अभय कुलकर्णी से कि भैया ये शेमड़ा और गाढ़ो का मतलब क्या होता है? बोले गाढ़ो का मतलब गधा और शेमड़ा का मतलब जिसका नाक बहता रहता है। मामला उत्तरा भला हो जाए। अब ना मैं एक्सप्रेशन पे नहीं जाऊंगा, मीनिंग पे जाऊंगा। एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे थे, माझा शेमड़ा और माझा गाढ़ा, और मतलब मीनिंग कुछ और। फिर मैंने सोचा मराठी सीखना बहुत जरूरी है, बोलो चाहे ना बोलो, समझना बहुत जरूरी है।
0: तो ये जो मराठी में आपको बोला करती थी, आपने कभी हरियाणवी में इनके लिए कुछ नहीं बोला ऐसे?
1: मैं तो सब मुझे समझती
2: हूं। मेरे को वैसे वाला प्यार आता नहीं है, बाबू सोना। हाँ बस बेटा जरूर बोलता हूँ, अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं। ऐसे ही यार प्यार से बस, बाकी मुझे कुछ क्या बोलते तरीके, हाँ एक नॉन रोमांटिक बिल्कुल, ना मनाना ना तारीफ करने की मुझे अकल है कुछ। मैं बिल्कुल अखड़ आदमी हूँ बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता बेचारी ये किसे सहेली, कई सालों बाद इसको भी समझ में आया कि ये है ही ऐसा। हाँ नहीं तो पहले तो उन्हीं बातों पे लड़ाई की, कोई बात बोल दी, कोई मजाक कर लिया मान लो तो बुरा मान गए, और मैं सोचू यार मैंने तो जोक मारा था, ये तो नाराजी हो गई। तो इसलिए जोक भी थोड़ा सोच समझ के मारना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा ठीक हुआ है। अब हम एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, अपना समझते हैं कि यार हर चीज में हर बात पे नाक चढ़ा के बोलना जरूरी नहीं है, रिएक्ट करना हर चीज को जरूरी नहीं है। जिंदगी में मैंने तो देख लिया अगर पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है तो डाउट होता है।
0: बिल्कुल सही, ये आपने बहुत सही बात कही।
2: और पति पत्नी में पति को बहुत जरूरी है कि खुद की गलती ना भी हो, सामने वाले की भी गलती हो, तो अब तुम खुद बोलो कि नहीं मेरी गलती है, तब रिश्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैंने वो सीख लिया है, तो इसलिए जब ये भी गलती करती है तो मैं अपना नहीं मेरी गलती है मैं बोलता हूँ, तो हम सुधर रहे हैं बिल्कुल
0: सही रहते हैं। ऐसा
2: कभी कुछ होता नहीं
0: कि आपकी गलती हो और ये मानते हैं कि हमारी गलती
1: नहीं, नहीं इतने भी शरीफ नहीं है।
0: ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग एक साथ आए और ये दोनों की पोल खुल रही है, नहीं तो पता चलता कि अच्छी अच्छी बातें यशपाल जी बता जाते और फिर हम भ्रम में रह जाते। तो बहरहाल यहाँ पर एक ऐसा गाना होना चाहिए आप दोनों साथ में गए एक दूसरे के लिए, कभी विवाह के बाद या विवाह से पहले एक दूसरे के लिए गुनगुनाया होगा जाहिर सी बात है।
2: हाँ।
0: तो
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल

0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सचमुच बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं, हमारा तो दिल कर रहा है कि और बातें करती जाऊं, लेकिन अब कुछ चीजें छोटी छोटी जानना चाह रहे हैं कि गाना एक साथ गाते हैं फिल्मों में, आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप हरियाणा के, ये महाराष्ट्र जलगांव के गाँव के पास, खान पान का कल्चर तो काफी थोड़ा सा अलग है। हरियाणा में बहुत सारा दूध, मट्ठा, दही, तो वो खान पान का मेल जरा बताइए, दोनों लोग बताइए अपने अपने स्वाद और अपने पसंद।
1: मैं तो बोलता रहता हूँ भाई ये बना दो, जो मेरा मतलब देसी कढ़ी चावल हो गया, या वहाँ का राजमा चावल हो गया, या आलू गोभी की सब्जी होगी पंजाबी स्टाइल में। लेकिन अभी मैंने क्या है कि अभी मैं मराठी खाना भी सारा, क्योंकि दिल्ली में ही इसने जब रेपेट्री में थे तो मराठी खाना बनाती थी, हम साथ रहते थे जब, तो मेरी आदत पड़ गई थी और मैं उसका कायल हो गया था, क्योंकि मैं सबसे पूरी रिपेटरी में सबसे अच्छा खाना इसी का होता था और सब लोग यही वेट करते थे कि आज प्रतिभा क्या बना के लाएगी,
0: क्या बात है
1: और हमारा ही खाना
0: वाह।
1: हमारे ही नसीब में नहीं होता था, बाकी सब थोड़ा थोड़ा दे खा जाते थे।
0: अच्छा, तो आपको हरियाणवी खाना बनाना आता है?
1: हाँ बिल्कुल बनाना आता है, बना
0: बना के
1: लेता हूँ।
0: खिलाया आपने प्रतिभा जी को?
1: हाँ बिल्कुल कई बार खिलाया है।
0: सच है प्रतिभा जी? अच्छा
2: खिलाते हैं।
0: जी, तो चलिए ये स्पष्ट हो गई कि दो तरफा बातें हो रही। आप हरियाणा की कुछ बातें और बताइए यशपाल जी, पिताजी की, माँ की। आपने बताया था कि बहुत शरारतें बताई थी, वैसी कोई बात है तो चलते चलते बताइए हमारे श्रोता।
1: नहीं, बस ये तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था, जो कि एक मुझे ड्रीम की तरह लगता है अब, क्योंकि वो जो वैल्यू थी ना चीज़ों की उस वक्त, वो जैसे हमने पूरे परिवार ने पैसे इकट्ठे किए, तकरीबन 750 रुपये इकट्ठे किए। मेरी मदर स्वेटर बुनती थी, सिलाई करती थी कपड़े, और बड़ा भाई जो है वो एक लेमन की बोतलें सप्लाई करता था इधर रिक्शा पे, तो इकट्ठा कर करके कर करके हमने तकरीबन 750 रुपये इकट्ठे किए, और साइकिल
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: आनी थी उस दिन, और मेरे बड़े भैया साइकिल लेने गए थे, और हम पूरा परिवार, क्योंकि 6 भाई बहन थे उस वक्त, और सब लोग पहले मैं चलाऊंगा, पहले मैं चलाऊंगी, पहले मैं चलाऊंगा, और अंदर बाहर कभी इधर कभी उधर थोड़ा सा बैठे फिर उठ जाएं, मतलब इतनी बेचैनी कि कब आएगी साइकिल। फिर वहां से दूर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, 20 मकान थे हमारा बीच में था, उस दर से 10 मकान उधर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, भैया आए चलाते चलाते हरे की हीरो साइकिल, और फिर जैसे ही आए हमने जकड़ ली, और फिर एक एक करके कैंची फैंची चला चलू के, इतना मजेदार दिन था वो कि मैं बता नहीं सकता। कट्टू बॉम्बे में गाड़ी खरीदनी थी, पहली गाड़ी थी हुंडई एक्सेंट, और ड्राइवर हमने पहले ही रख लिया था, क्योंकि वो एक टैक्सी वाले से बात की थी तो उसने ड्राइवर दे दिया था यूपी का घनश्याम, तो उस घनश्याम को हमने भेजा, और उसके मोबाइल पे हमने फ़ोटो मांगी कि हमको फ़ोटो दिखाओ कौन कौन सी गाड़ी है, तो गाड़ी के कलर दिखाए उसने, मैंने कहा ये वाली लेनी है, और फिर ले आए, और फिर पेमेंट हो गई। मेरे दिमाग में दिल में बिल्कुल भी हमारे एक्साइटमेंट नहीं था गाड़ी खरीदने का। तो ये थी वैल्यू एक चीज, पैसे की वैल्यू, चीजों की वैल्यू। आज लाखों रुपए की चीजें आ जाती हैं, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहती, बच्चों में खासकर।
0: जी बिल्कुल,
2: आजकल के
1: हम तो
0: एक खिलौना बहुत कीमती हुआ करता था,
1: हम तो 20-20 पैसे 10-10 पैसे कैसे संभाल के खर्चते थे, क्या क्या आ जाता था उन दिनों, आज तो लाखों रुपए अभी बच्चे खर्च देते हैं तो पता नहीं चलता।
0: चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से, बहुत सारे श्रोता जो हैं एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, आपके हरियाणा से, हिसार से, और देश के तमाम जगहों से आना चाहते हैं।
1: मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि ऑडिशन देते हो या कहीं भी कुछ जाते हो, कोई भी नाटक करते हो, कोई भी कहीं भी कुछ करते हो, तो कभी भी दिखावा मत करो। हमने दिखाते बहुत हैं, देखो देखो मैं हंस रहा हूँ, देखो देखो मैं कितना अच्छा हूँ, देखो देखो मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूँ, देखो मैं रो रहा हूँ, देखो नहीं दिखाओ, रोवो हंसो, अपने आप पता चल जाएगा लोगों को। और दूसरा, आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो आपको पता नहीं होता, जैसे हनुमान के अंदर थी, जामवंत ने याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तुम उड़ सकते हो, इतने योजन पार कर सकते, तो वो चीज़ें आपके अंदर हैं, आप ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई गुरु होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियलिटी का 30% ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम, बाकी सारी अंदर दबी रहती हैं और हम यूज़ ही नहीं करते उसका, कुछ इनहिबिशन होती है, कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ या कुछ शर्म लड़कियों में खासकर, कि हम खुल करके अपने आप को नहीं कर पाते इजहार।
0: जी बिल्कुल,
1: तो मुझे लगता है कि वो चीजें आपको करनी चाहिए, और आप खुल करके करेंगे और दिल से करेंगे, अंदर से करेंगे, आप रोएंगे वाकई में तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप रो रहे हैं, और आप हंसेंगे तो पता चल जाएगा कि आप हंस रहे हैं, खुश हैं तो खुशी पता चल जाएगी। तो इसीलिए उसको दिखाने की बजाय होना चाहिए, बी देयर।
0: जी बिल्कुल,
1: करो मत, हो जाओ।
0: बिल्कुल प्रतिभा जी, आप ये बताइए हमें कि कोई ऐसी तमन्ना है, कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया जिसे पूरा करना चाहती हैं? महिलाओं के साथ अक्सर होता है, बहुत सारे ख्वाब देखे जाते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं, कई बार परिस्थितियां नहीं साथ देती हैं, कई बार परिवार, तो ऐसे कभी कोई नौबत आई है समझौते की?
2: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना शादी पहले नहीं कर लेनी चाहिए, पहले करियर कर लेना चाहिए फिर शादी करनी चाहिए। मैं सभी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि जो भी लड़कियाँ अगर इस फील्ड में आना चाहती है, अगर उनको कुछ लाइफ में कुछ करना है तो पहले खुद करियर कर लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
0: बिल्कुल,
2: हमारे वक्त तो ऐसा वक्त था, तो परिस्थितियाँ भी ऐसी थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर आजकल अगर कोई लड़की अगर इस फील्ड में आती है और इस फील्ड में अपना काम करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, तो सबसे पहले अपना मुकाम हासिल करो और उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक लाइन गुनगुनाइए दोनों लोग बस, यहाँ पे हम अब एक हैप्पी नोट पर ख़त्म कर रहे हैं प्रोग्राम।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ से हुजूर।
0: क्या बात है यशपाल जी और प्रतिभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
2: बहुत स्वीट, बहुत प्यारी यादें आपके साथ हमने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत शुक्रिया।
3: ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
4: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुणा वृद्धि हुई है।
6: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी यात्रा केवल लोगों को जोड़ने से परिभाषित नहीं होगी, बल्कि विश्वसनीय, सुरक्षित और लचीले नेटवर्क सुनिश्चित करने से भी परिभाषित होगी। उन्होंने आज नई दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट के 43वें स्थापना दिवस पर देश के दूरसंचार परिवर्तन में सी डॉट की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश के में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। इनका इस्तेमाल सामरिक मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन इंटरसेप्टर और छोटे मिसाइल सिस्टम में किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जाएंगे। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। National Security Advisor Ajit Doval today held special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing on the India-China boundary issue and improvement of relations between the two countries. Prior to the talks, Doval called on Chinese Vice President Hang Jiang. In a social media post, Indian Embassy said the two leaders discussed ways to strengthen peace and tranquility in the border areas and further improve bilateral ties across economic, political and multilateral fora. The Unified Payments Interface, UPI, has completed 10 years of transforming digital payments and has emerged as the backbone of India's digital payments ecosystem. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi hailed the decade-long success of service of Unified Payment Interface. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. The Finance Ministry said the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore rupees to nearly 314 lakh crore rupees during the same time period. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today held discussions with executives from Japan's leading financial institutions to boost long-term investment and strengthen India-Japan economic ties. Representatives from Mitsubishi UFJ Financial Group, MUFG, Development Bank of Japan, Mihuro, Morgan Stanley, Nomura and Nippon Life discussed investment opportunities in India. Mr. Goyal highlighted the strength and resilience of the Indian economy, noting that India recorded 7.7% growth last year despite global uncertainties and is working toward becoming a $30 trillion economy by 2047. The central government has empowered the West Bengal government to conduct hearings under the Citizenship Amendment Act, or CAA, and issue citizenship certificates to eligible applicants, showing a gazette notification issued by the Union Home Ministry. Chief Minister Suvendu Adhikari told reporters at state headquarters yesterday that 23,000 people have so far been recognized as eligible and issued citizenship certificates out of around 2,30,000 applicants. He said the remaining applicants would be processed quickly and certificates would be handed over through the respective district magistrate.

0: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
1: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
2: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जाँच करवाएं और अपनी आँखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे भजन। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में। और दोस्तों, आज के कार्यक्रम में मैं आपको लेकर चलूँगी सैर सपाटे के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर। और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी हमसफ़र पूनम। और युवा दोस्तों, अगर रोज़ाना की तरह बात की जाए आज की, तो आप जानते ही हैं कि आप भी कॉलेज की असाइनमेंट, ऑफिस की डेडलाइंस, 9 से 5 बजे की रूटीन से बोर तो हो जाते हैं। तो आज का ये एपिसोड जो है वो ख़ास तौर से आप जैसे बैकपैकर्स और एडवेंचर के दीवानों के लिए है। तो दोस्तों, युवावस्था का असली मज़ा तो पैरों के में पहिए लगाकर दुनिया में घूमने का है और दुनिया को नापने का है। तो उठाइए अपना कैमरा और बांधिए अपना बैग और चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ पहाड़ों की ठंडी हवाएँ और रात का कैंप फायर और गिटार की धुनें आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो दोस्तों, आप और हम जो हैं वो सीधे चल रहे हैं धरती के स्वर्ग यानी कश्मीर की उन हसीन वादियों में, जो आजकल सोशल मीडिया पर रील्स और ब्लॉग्स के लिए युवाओं की पहली पसंद बनी हुई है। और अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप गुलमर्ग की बर्फीली चोटियों पर स्कीइंग कर सकते हैं और पहलगांव की बेताब वैली और मिनी स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाले विस्टन के हरे भरे मैदानों से बेहतर और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, फिर देर किस बात की है। और अगर आपने किसी दूसरे स्थान पर जाने का ट्रिप बनाया है तो उसे कैंसिल कर दीजिए और कश्मीर को अपना नया वोकेशनल गोल बनाइए और साथ ही सुनते रहिए सैर सपाटा, क्योंकि सफ़र अभी बाकी है। तो पहले सुनते हैं ये मस्ती भरा गीत अपने श्रोताओं के साथ और इसके बाद बात करेंगे सैर सपाटा में उस खूबसूरत की जगह के बारे में जहाँ पर आप और हम साथ मिलकर चलेंगे। तो सुनते हैं पहले एक प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच में। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। तो जम्मू शहर से कश्मीर की दूरी लगभग 243 किलोमीटर है और पहाड़ी रास्ता होने की वजह से 5 से 7 घंटे का समय जो है वो इसमें लग जाता है। और कश्मीर की खूबसूरती की अगर बात करें तो कश्मीर सिर्फ एक जगह ही नहीं है बल्कि कुदरत की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत सी कविता है। और यहाँ के ऊंचे ऊंचे बर्फ़ से ढके पहाड़ और आसमान को छूते देवदार के पेड़ और कलकल करती बहती नदियाँ किसी का भी दिल जीत लेती हैं। और जब डल झील के शांत पानी में शिकारे तैरते हैं और ढलते सूरज की किरणें पानी पर बिखरती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे समय वहीं पर ठहर गया हो। और वसंत ऋतु में यहाँ खिले रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल और सर्दियों में चारों तरफ बिछी हुई बर्फ की सफ़ेद चादर जो है वो इस वादी को सचमुच ही धरती का स्वर्ग बना देती है। और शायद इसीलिए सदियों पहले अमीर खुसरो ने इसके बारे में ये कहा था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं पर है। जी हाँ।

0: तो कश्मीर में है और कश्मीर की हवाओं में एक अजीब सा जादू है और सुकून भी है जो हर थके हुए दिल को नई ताजगी से भर देता है। और यहाँ के सीधे सादे मेहमानवाज लोग जो हैं वो और केसर की खेती की खुशबू और गर्मा गर्म कहवा की चुस्की जो है वो मिलकर एक ऐसा एहसास जगाते हैं जिसे इंसान जिंदगी भर नहीं भूल पाता है। तो दोस्तों आप भी चाय की एक चुस्की लीजिए और सुन लीजिए एक और प्यारा सा गीत और उसके बाद जल्द लौटेंगे और कुछ जानकारी के साथ और आपके साथ कश्मीर वैली के बारे में कुछ और जानकारियां भी साझा करेंगे। लेकिन पहले एक संदेश और प्यारा सा एक और गीत।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
4: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कड़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
3: जी डॉक्टर साहब,
4: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
5: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

अच्छा दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच में। और दोस्तों, आज के युवा मंच कार्यक्रम में सैर सपाटा में हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। दोस्तों, सबसे पहले कश्मीर घाटी में बात करेंगे श्रीनगर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर जो है वो कश्मीर घाटी का दिल है और ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल पर्यटकों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है और यहाँ की खूबसूरत झीलें और ऐतिहासिक गार्डन यहाँ की मुख्य पहचान है। और श्रीनगर की डल झील यहाँ की मशहूर झील जो है वो यहाँ पर लकड़ी की खूबसूरत नावें, जिसे शिकारा भी कहते हैं, इनमें बैठकर सैर करना और पानी में तैरते हाउस बोट पर रात बिताना एक अनोखा ही अनुभव है। और यहाँ पर राजा जहांगीर द्वारा बनाए गए निषाद बाग, शालीमार बाग, चश्मे शाही बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ रंग बिरंगे फूल व फव्वारे भी देखने को मिलते हैं। और यदि आप मार्च या अप्रैल के महीने में कश्मीर आते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है, जहाँ पर लाखों रंग बिरंगे ट्यूलिप फूल जो हैं, आप उनका आनंद ले सकते हैं और आप उनकी खूबसूरती को यहाँ आकर जो है वो देख सकते हैं। और साथ ही श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर स्थित पहलगाम अपनी शांत वास्तुकला, केसर के खेतों और लितर नदी के लिए भी जाना जाता है। ये वार्षिक अमरनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु भी है और इस

घाटी का मुख्य आकर्षण है बेताब घाटी, जहां पर बॉलीवुड फिल्म बेताब की शूटिंग के बाद इसका ये नाम भी पड़ा था। और ये घाटी हरी भरी घास और पहाड़ों से घिरी हुई है। और आरू घाटी की अगर बात करें तो ये ट्रैकिंग और घुड़सवारी के लिए एक शांत और सुंदर जगह है, जो कि हमारे युवाओं की पहली पसंद भी है। और पहलगांव की विसन घाटी की अगर बात की जाए तो इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, और जहाँ देवदार के घने जंगल हैं। और अब आगे बात करेंगे श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर सोनमर्ग के बारे में। यहाँ लद्दाख जाने वाले रास्ते पर ये सोनमर्ग पड़ता है, और यहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर जो है वो देखने को मिलते हैं, और जो पर्यटक हैं इन्हें देखकर मंत्रमुग्ध भी हो जाते हैं। और यहाँ का जो ग्लेशियर, जो थासीबाज ग्लेशियर है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप गर्मियों में भी बर्फ देख सकते हैं। और इसी के साथ बहती है सिंध नदी, जो कि इस घाटी से होकर बहती है, और जहाँ पर ट्राउट मछली पकड़ने और वाइट वाटर राफ्टिंग का आनंद भी लिया जा सकता है। और यदि दोस्तों आप भीड़ भाड़ से दूर शांत वातावरण में जाना चाहें तो उसके साथ ही युसमर्ग और दूधपत्री दोनों ही जगह जो है बहुत ही बेहतरीन हैं। तो दोस्तों और भी खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएंगे कश्मीर घाटी के, और इनके बारे में और भी बातें आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम में फिर से रुकते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना फिल्म दिल मांगे मोर से। और कार्यक्रम में आगे बात करते हैं हम, और हम घूम रहे हैं कश्मीर की वादियों में, जहां पर हम बात कर रहे थे श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों की। तो आगे हम बात कर रहे थे युस्मर्ग और दूधपत्री, दोनों जगह ही बहुत ही बेहतरीन हैं। और जहां पर युस्मर्ग, जिसे यीशु का मैदान भी कहा जाता है, यहाँ देवदार के जंगलों और घास के मैदानों से ये घिरा हुआ है। और दूध पत्थरी को दूध की घाटी भी कहते हैं, क्योंकि ये खास बात इसकी ये है कि यहाँ की नदियाँ पहाड़ों से टकराकर सफ़ेद झाग बनाती हैं जो दूध जैसी दिखती हैं। और श्रीनगर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल शंकराचार्य मंदिर जो है, वो श्रीनगर को गोपाद्री पहाड़ी पर ये स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ से पूरी डल झील और श्रीनगर शहर का अद्भुत पैनोरामिक व्यू जो है वो यहाँ से दिखता है। तो इस स्थान पर जाना तो आप बिल्कुल भी ना ले।

नगर घूमने के लिए मार्च से अगस्त तक का समय जो है वो सबसे सुहावना माना जाता है, और अगर आपको बर्फबारी देखनी है तो आप दिसंबर से फरवरी के बीच में भी यहाँ जा सकते हैं। और दोस्तों, श्रीनगर के स्थानीय अनुभवों की बात की जाए तो आप पुराने शहर की गलियों में घूमने के साथ साथ पारंपरिक कश्मीरी चाय कहवा का स्वाद लेना तो बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आज श्रीनगर घूमने आप कब जा रहे हैं इसका आप प्लान कर लीजिए, और आप इस जगह पर बस, टैक्सी या फिर हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं, तो आप अपने ट्रिप को प्लान करें और इस खूबसूरत जगह का आनंद ज़रूर लें। और इसी के साथ आज के युवा मंच कार्यक्रम में बस इतना ही। अपनी होस्ट एंड दोस्त पूनम को दीजिए इजाज़त, और अगले सप्ताह इसी दिन एक नई जगह, एक खूबसूरत से स्थान पर आपको फिर से ले चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और चलते चलते सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ, मौजा गराएं दिया। ये कार्यक्रम सुनेगा शाम 6:30 पर, और जिसमें बातचीत का विषय रहेगा बरसात के मौसम में बेलदार सब्जियों की देखभाल। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, और ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। रात्रि 8:00 आकाशवाणी शिमला से विधानसभा समीक्षा रिले की जाएगी। 8:30 पर देशकान सुनवाया जाएगा, और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें पार्श्व गायक के द्वारा गाए गए गीत आज आपको सुनवाए जाएंगे। हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीता दी आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, और सभा के अंत में 10:30 पर सुनेगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, और आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये था विवरण आज शाम प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों का। अब एक नज़र कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी, जिसमें आज विशेष के साथ मदर टेरेसा जन्म जयंती पर बात होगी, और साथ ही ओणम दिवस पर भी जानकारी दी जाएगी, और इसके साथ ईद मिलाद विषय पर भी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम अश्विनी कुमार मौदगिल है। मैं लगभग 40-45 साल से खेती कर रहा हूँ। फसल बीमा योजना हमें मुआवजा जो देती है उससे हमारी मदद हो जाती है। मेरे को खरीफ 2023 में 2,80,000 रुपया मिला। इसका हमारे किसान है, उनको हम कहते हैं कि आप भी बीमा कराओ तो उसका आपको भी फायदा मिलेगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के कई विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की दैनिक हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन या ऑनलाइन माध्यम से दर्ज नहीं हो रही है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। सरकार के अनुसार इसके पीछे फील्ड कर्मचारियों की ड्यूटी का स्वरूप, दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट व नेटवर्क की कमी, बिजली की समस्या और कई कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध नहीं होना प्रमुख कारण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 विभागों के तहत आने वाले बोर्डों, निगमों के कार्यालयों और संस्थानों में कर्मचारियों की दैनिक हाजिरी बायोमेट्रिक या ऑनलाइन माध्यम से नहीं लग रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न विभागों में फील्ड कर्मचारियों के सामने अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। ऐसे में कई जगह फील्ड में तैनात कर्मचारी के लिए कार्यालय पहुंचकर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना व्यावहारिक नहीं है। दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होने, कनेक्टिविटी की कमी तथा तकनीकी समस्याओं के कारण भी ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती। इस बीच प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान बेरोजगारी और आउटसोर्स भर्तियों के मुद्दे पर पक्ष व विपक्ष के बीच तनातनी देखने को मिली। विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से बाहर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर युवाओं के साथ ठगी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का करीब 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन युवाओं को अब तक रोजगार नहीं मिला। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन सरकार शुरू से अंत तक झूठ बोलती रही।
1: गारंटी ये थी कि 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में निकाल दी जाएंगी, 1 लाख नौकरियां 1 साल में और 5 लाख नौकरियां 5 साल में। जिस प्रकार से आज प्रश्न लगा था, स्थगित प्रश्न, उसमें रोजगार से संबंधित और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के उसमें हमने बातें पूछी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शुरू से अंत तक झूठ ही झूठ।
0: इस दौरान पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने प्रदेश में आउटसोर्स पर हो रही भर्ती को लेकर सदन में सवाल पूछा था, लेकिन सदन के भीतर उनकी आवाज को दबाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि उनकी सरकार ने भाजपा कार्यकाल के कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए व्हाइट पेपर कमेटी बनाई है। ये कमेटी जांच के बाद सामने आए तथ्यों को जनता के समक्ष रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सदन में बिना मुद्दे की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान रोजगार पर करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई, लेकिन इसके बाद भाजपा विधायक दल ने वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा मौका दिया था और चर्चा भी कराई गई, इसके बावजूद अतिरिक्त सवाल पूछने की जिद करना और फिर सदन से बाहर चले जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: विपक्ष के पास कुछ नहीं रह गया, जो नोटों से भरे टैची जो है वो बीजेपी के दफ्तर से मिल रहे। इस प्रकार के जो कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, उठी आपने देखा ना, ये सारे जो इन्होंने गलत काम किए वो सारी चीजों को हम जनता के दावत करते हैं। हमारी एक व्हाइट पेपर कमेटी बनी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है उस भ्रष्टाचार को जनता की अदालत में रखने का दायित्व हमारी सरकार का। कोशिश कर रहे हैं कि जो भी तथ्य हमारे पास है वो जनता की अदालत में रखे।
0: 191 देशों, 7 महाद्वीपों की 2 लाख किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने वाले वैश्विक साइकिल यात्री सोमेन देवनाथ ने शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से शिष्टाचार भेंट की। सोमेन देवनाथ पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के निवासी हैं और वे पिछले करीब 22 वर्षों से साइकिल के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों की यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान सोमेन देवनाथ ने विधानसभा अध्यक्ष को विभिन्न देशों में मिले अनुभवों, लोगों की जीवन शैली और भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति विदेशी नागरिकों की रुचि के बारे में भी अवगत करवाया। इस बीच सोमेन देवनाथ ने आज आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा और प्रादेशिक समाचार एकांश प्रमुख रितेश कपूर से भी भेंट की और साइकिल यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के अपने भ्रमण के अनुभव साझा किए। सोमेन देवनाथ ने युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रहने और पर्यावरण संरक्षण व स्वस्थ रहने के लिए साइकिल यात्रा करने का संदेश दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ। कार्यक्रम सुरमई सांझ में सभी श्रोताओं का स्वागत। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूनम। और कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में फिल्म पेंटर बाबू से ये गीत।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, फिल्म है अगर तुम ना होते। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और धुन बनाई है RD बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं पिघलता आसमान फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और अलका याग्निक ने। गीत लिखा है माया गोविंद ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: श्रोतो, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ। तो सुरमई सांझ कार्यक्रम के अगले गीत से पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोता, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अरमान से, जिसे गाया है महेंद्र कपूर और मीनू पुरुषोत्तम ने। गीत लिखा है कुलवंत जानी ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजा गराइंदियां।

चलने से पहले एक गल और दसी दीजिए कि कार्यक्रम जो है तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर और कने कार्यक्रम प्रस्तुति थी डॉक्टर जतिंद्र पाल सिंह ता हूँ अपनी रेडियो दोस्त पूनम जो दिया अनुमति। अच्छा जी, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा गराई दिया, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुणा वृद्धि हुई है।
2: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टर्बाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NG5, NG50 और NG100 शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के बिधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 268 रन पीछे है।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
7: किसान श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, किसान वाणी के माध्यम से हम सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी आपको देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार व शनिवार को शाम 7:10 से 7:45 तक प्रसारित किया जाएगा। उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाएगा।
6: जी
7: किसान भगवान श्रोताओं, हाजिर हैं हम आपका दैनिक जानकारी और मनोरंजन भरा कार्यक्रम लेकर, जिसमें इस संघ को लेकर मैं हूं रविंदर विशेष
6: और मैं निशा शर्मा।
7: जी निशा, कैसे हैं आप?
6: जी बिल्कुल बढ़िया हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं हमारे सभी किसान बागवान भाई बहन भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने कृषि बागवानी और पशुपालन के कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे।
7: जी बिल्कुल, और जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं किसान श्रोताओं के, बरसात का मौसम चल रहा है तो ऐसे में बहुत से ऐसे रोग हैं, बीमारियां हैं जो कि पशुधन को इन दिनों लग जाती हैं।
6: जी
7: तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप समय रहते अपने पशुओं को टीकाकरण करवाएं और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पशुधन की भी सुरक्षा करते हुए अपना कृषि बागवानी कार्य सुचारू रूप से करते रहें।
6: जी बिल्कुल, और बहुत सारी सब्जियां इन दिनों लगी होती हैं हमारे किसान भाइयों के खेतों में, तो देखिए बरसात का मौसम है, इसमें खरपतवार जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, तो किसान भाई निराई गुड़ाई की सहायता से समय समय पर उसे निकालते रहें ताकि आपकी फसलों की बढ़ोतरी जो है वो अच्छे से हो जाए और उसमें किसी भी तरह के रोग जो है, कीट जो है वो ना लग पाए। और साथ ही किसान भाइयों, बरसात के मौसम में अपने खेतों में आपने पानी की निकासी का प्रबंध जो है वो समय समय पर करते भी रहना है। तो रविंदर, क्या कुछ खास है आज के इस कार्यक्रम में, बता दें अपने किसान बागवान भाई बहनों को।
7: जी किसान बागवान श्रोताओं, काम की बातों के अंतर्गत हम बात करेंगे हरड़ की खेती इस विषय पर। इसके अलावा रोजाना की तरह करवाएंगे आपका मनोरंजन लोकगीतों के साथ, साथ ही साथ सुनवाया जाएगा एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय रहेगा जैव नियंत्रण का बागवानी फसलों में उपयोग व महत्व। इस जानकारीपूर्ण बातचीत में भाग लेंगे डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा और उनसे अधिक जानकारी हासिल कर रहे हैं देवेंद्र कुमार।
6: जी तो रविंद्र, जैसा कि आज का हमारा जो विषय है वो है हरड़ के बारे में, तो हरड़ की खेती की अगर हम बात करें तो देखिए हरड़ जो है वो बड़े आकार का पर्णपाती वृक्ष है जिसका तना छोटा होता है, शाखाएं फैली हुई और इसका छत्र गोलाकार होता है। इसकी छाल गहरी भूरी, प्रायः सीधे चीरों वाली, और पत्ते जो हैं वो वृत्ताकार होते हैं। इसकी लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है और इमारत और कृषि के औजार बनाने और दूसरे कई कामों में उपयोग में लाई जाती है। इसका वृक्ष विशेषकर फल की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, जो कि टैनिन का अच्छा स्रोत है, और रंगाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
7: जी बात यदि की जाए किसान बागवान श्रोता इसके फूलों की, तो इसके फूल पीले सफेद और फल सूखने पर साधारणतया 5 कोनों वाले होते हैं। इसके बीज सख्त और पीले रंग के होते हैं। किसान बागवान श्रोता, फल नवंबर से मार्च तक लगते हैं। इसका फल सख्त अंडाकार या लंबोतरा होता है, जो कि लगभग 3 से 8 सेंटीमीटर लंबा और पीले व हरे पीले रंग का होता है।
6: जी बिल्कुल किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं जलवायु और मिट्टी के बारे में। तो देखिए हरड़ के प्राकृतिक क्षेत्र में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक, और न्यूनतम तापमान जो है वो -1 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री तक होता है, और वार्षिक औसत वर्षा जो है वो 750 मिलीमीटर से 3250 मिलीमीटर होती है। पौधा ठीक से वृद्धि के लिए प्रकाश पर निर्भर करता है, ये थोड़े कोहरे को भी झेल लेता है और आग को भी सहन कर सकता है।
7: जी अब बात कर लेते हैं हरड़ की नर्सरी उगाने की विधि की। किसान बागवान श्रोताओं, ये अंकुरण के लिए एक हटी किस्म है। इसका बीज सख्त बीज कवच और जैविक हस्तक्षेप के कारण कम अंकुरित होता है। फल अधेड़ आयु के पेड़ों से दिसंबर जनवरी में इकट्ठे किए जा सकते हैं। उनके गुदे को निकाल लिया जाता है और गुठली को छाया में सुखाया जाता है। बीज को बीजने से पहले कुछ एक ऐसे तरीके हैं जिन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। सबसे पहले बीज को छोटे आकार के बोरी के थैलों में भर दिया जाता है और बाद में 5 हफ्तों तक इन थैलों को 2 से 3 फीट गहरा गोबर के ढेर में इस तरह रखा जाता है कि उनमें से कोई भी ऊष्मा की हानि ना हो। ये सख्त बीज कवच को नरम बनाने में सहायक होते हैं और बीज अंकुरण को बढ़ाता है।
6: जी बिल्कुल। और इसके बाद रात में बीज को नल के पानी में भिगोया जाता है और दूसरे दिन इसको सीमेंट के फर्श पर खुली धूप में फैला दिया जाता है। ये क्रिया जो है वो 11 दिन तक दोहराई जाती है। ये सख्त बीज कवर को बिना अंदर ही गिरी नष्ट किए हुए तोड़ने में सहायता करता है। सख्त गुठली को हथौड़े से तोड़कर गिरी को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद गिरी को 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बेवेस्टिन से उपचारित किया जाता है और इसके बाद प्लास्टिक की थैलियों में बीज दिया जाता है। ये बीज उपचार अंकुरण को 70% तक बढ़ा देता है।
7: जी किसान बागवान श्रोता, अब बात कर लेते हैं हरड़ के रोपण विधि और देखभाल। पौधरोपण का कार्य जुलाई के महीने में शुरू किया जाता है। पौधरोपण के रकबे में 8x8 मीटर की दूरी पर 1 घन मीटर आकार के गड्ढे खोद देने चाहिए। उन गड्ढों को अच्छी तरह से सड़े हुए गोबर की खाद और बाहर खोद कर रखी गई मिट्टी से आधा भर देना चाहिए। 1-2 अच्छी बारिश की बौछारों के बाद पौधरोपण कर देना चाहिए। जब पौधरोपण किया जाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्यूंद जोड़ जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर रहे, क्योंकि ऐसा करने से कॉलर सड़न की संभावना कम होती है। और नए रोपित पौधों को दिसंबर के महीने में घास और भूसे से ढक देना चाहिए ताकि पौधों को पहले वर्ष कोहरे के प्रभाव से बचाया जा सके।
6: जी बिल्कुल।
7: अब बात कर लेते हैं कि हरड़ के उपयोग क्या क्या है, किस प्रकार से हरड़ का इस्तेमाल हमारे किसान बागवान श्रोता कर सकते हैं। किसान बागवान श्रोताओं, हरड़ को शरीर की सभी बीमारियों और क्षय को बाहर करने वाली माना गया, लेकिन तंतु वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले भी है। ये फिर से युवा करने और अपने उत्तम गुणों के कारण पाचन प्रणाली के लिए सबसे बढ़िया मानी गई है। इसके फलों का गूदा आयुर्वेदिक प्रसिद्ध दवाई त्रिफला का एक अभिन्न घटक है, जिसको बढ़े हुए लीवर के इलाज के लिए, पेट के विकारों में और आंखों के दर्द में प्रयोग किया जाता है।
6: और साथ ही इसके फलों का रस अम्लपित्त के इलाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका उपयोग हृदय रोग, जहर कम करने, पेट कब्ज, दस्त, फोड़े, फिंसी, मसूड़ों, अल्सर और बहुत सारे रोगों में होता है। इसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। त्वचा रोग विकारों में जैसे कि पुराने घाव या त्वचा के झुलसने पर हरड़ बहुत उपयोगी मानी जाती है। और इसके गूदे को नारियल तेल में उबालकर बालों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फलों को ज्यादातर चमड़ा रंगाई के काम में भी प्रयोग किया जाता है और इसी कारण इसकी विदेशों में भी अच्छी खासी मांग है।
7: जी तो ये तो बात हुई हरड़ की खेती के विषय में। अब निश्चित रूप से हमारे किसान बागवान श्रोता को इंतजार होगा मनोरंजन का। तो आइए हम और आप सुनते हैं कृतिका तनवर की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, आप लोकगीत के बाद आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी पूर्ण बातचीत, जिसका विषय रहेगा जैव नियंत्रण का बागवानी फसलों में उपयोग और महत्व, जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा से जानकारी हासिल कर रहे हैं देवेंद्र कुमार। तो आइए सुनते हैं।
1: जी
2: किसान भाइयों नमस्कार। रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जानकारी पूर्ण विषय, और आज की जानकारी पूर्ण बातचीत का विषय रहने वाला है जैव नियंत्रण का बागवानी फसलों में उपयोग व महत्व। इस विषय पे जानकारी देने आ रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैव नियंत्रण होता क्या है और इसका क्या महत्व है।
3: देवेंद्र जी, जैव नियंत्रण जो है हमारा एकीकृत कीट प्रबंधन का एक भाग है, जिसमें हम मित्र कीटों का प्रजनन करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, ताकि हम शत्रु कीटों को मित्र कीटों द्वारा उनका कंट्रोल कर सके, उनका उपचार कर सके। उसमें हम हमारे मित्र कीट होते हैं, मित्र फंगस होती है, हम इनका प्रजनन जो है आर्टिफिशियली लैब में करते हैं, वह बागवानों को इनको हम देते हैं अपने फसलों में उपयोग करने के लिए, ताकि वो उन हानिकारक कीटों को कंट्रोल कर सके दे, और उनको जो इकोनॉमिक लॉस होता है अपनी फसलों को, उसको बचाया जा सके। तो ये जैव नियंत्रण है। जैव नियंत्रण में हमारे प्रमुखता तीन टाइप के कीट हैं, उनका हम प्रजनन करते हैं। इसमें एक तो पैरासाइट्स होते हैं, परिजीवी जिनको बोलते हैं, एक प्रीडेटर्स होते हैं जो कि शिकारी होते हैं, और एक मित्र फंगस होती है। मित्र फंगस

0: कई तरह की होती है जो कि हम जैव नियंत्रण में यूज करते हैं। पैरासाइट्स या जो कि परजीवी होते हैं वो अपनी जीवन अवस्था या अपनी लाइफ साइकिल का वो हानिकारक कीटों के अंडों में या उनके वयस्कों में अपना मतलब जीवन चक्र पूरा करते हैं, और
1: जी
0: उस अवस्था में वो जो हानिकारक कीटों के प्रजनन को रोक देते हैं। जैसे कि हमारा ट्राइकोग्रामा ही है, वो एक एग पैरासाइट है, मतलब
1: जी
0: वो कीटों के अंडों के ऊपर अपना परजीवी है वो, तो वो उन अंडों के ऊपर जो है प्रजनन करता है, और उस अवस्था में जो हानिकारक कीटों के अंडों से जो है हानिकारक कीट नहीं निकल पाता, वो अंडा की अवस्था में ही उसको खत्म कर देता है।
1: जी
0: उसी तरह से दूसरे हमारे होते हैं शिकारी कीड़े। शिकारी कीड़े मतलब वो डायरेक्ट जो है फीड करते हैं या तो एडल्ट कीड़ों के ऊपर या फिर लार्वा के ऊपर या अंडों के ऊपर। तो उसके भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारा रेडोविड बग हो गया, एंथोकोरिड बग हो गए, तो ये डायरेक्ट जो है अंडों को खाते हैं। जैसे रेडोविड है वो डायरेक्ट लार्वा को खा लेता है, और जो एंथोकोरिड है वो डायरेक्ट अंडों को भी खाता है और वयस्कों को भी खाता है हानिकारक कीटों के। तो वो इस तरह से वो डायरेक्ट शिकार करता है और हानिकारक कीटों की पॉपुलेशन को खेतों में या बगीचों में कम कर देता है। उसी तरह से तीसरी प्रजाति है हमारी जो है मित्र फंगस की है। उसमें हमारी बवेरिया बेसियाना हो गई, आपकी मेटारिजियम हो गई, हमारी बवेरिया बेसियाना, तो ये जो है हम कुछ फंगस जो है ये मित्र फंगस के रूप में हम यूज करते हैं हानिकारक फंगस को कंट्रोल करने में, या फिर जैसे ट्राइकोडर्मा है वो तो हानिकारक फंगस को ही इफेक्ट करती है, जबकि बवेरिया बेसियाना और मेटरिजियम वो हानिकारक कीटों के ऊपर डायरेक्ट प्रयोग करने से उनको मार सकती है। जिस तरह से रासायनिक दवाइयां काम करती है उसी तरह से ये हमारी मित्र फंगस काम करती है, ये दो फंगस जो मैंने बताई।
1: जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा कि मित्र कीट और मित्र फंगस, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि ये मित्र कीट क्या होते हैं और साथ ही साथ जो शत्रु कीट है वो क्या होते हैं, और साथ ही मित्र फंगस के बारे में आपने बताया तो ये क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे किसानों को दें।
0: मित्र कीट जो है वो हमारे फसलों को एज सच नुकसान नहीं पहुंचाते। वो ज्यादातर मांसाहारी जब बोल सकते हैं या नॉन वेजिटेरियन बोल सकते हैं वो होते हैं, तो वो कीड़ों के ऊपर ही फीड करते हैं। जबकि जो शत्रु कीट है वो हमारे फसलों के ऊपर, मतलब वो सोच सकते हैं आप वो वेजिटेरियन होते हैं तो वो डायरेक्ट या तो हमारी फसलों के पत्तों को खाएंगे या फ्रूट को खाएंगे, लेकिन जो मित्र कीट है वो उन शत्रु कीटों को ही खाते हैं। और जो शत्रु कीट है वो इकोनॉमिकल लॉस करते हैं हमारे को, उससे डायरेक्ट हमारा इकोनॉमिकल लॉस होता है। वो हमारा चाहे फ्रूट के ऊपर, फ्रूट को नुकसान पहुंचा के हमारे को इकोनॉमिक लॉस करे, या सब्जी को खाकर या उसको नुकसान पहुंचा के हमारे को इकोनॉमिकल लॉस करे, लेकिन मित्र कीट जो है कुछ भी ऐसा हमारा डायरेक्ट हमारी फसलों के ऊपर इफेक्ट नहीं करते, और वो मतलब एज सच हमारी मदद करते हैं शत्रु कीटों को कंट्रोल करने में। और जो शत्रु कीट हमेशा आपको नेचर में मिल जाएंगे, जहां फसल होगी वहां पे शत्रु कीट होगा ही होगा,
1: जी
0: लेकिन जो मित्र कीट है ये आपको बहुत कम मात्रा मिलेगा। जैसे कि अब जो बहुत कॉमन है मित्र कीट, हम इसको तोता मामा भी बोलते हैं या लेडी बर्ड बीटल भी बोलते हैं, तो
1: जी
0: ये बहुत मतलब आम पाया जाने वाला मित्र कीट है। लेकिन आपने देखा होगा कि मित्र कीट जैसे तोता मामा ही है वो कभी भी हमारे पत्तों को, सब्जियों के या फिर फ्रूटों के पत्तों को नहीं खाता, उसके ऊपर अपना भोजन नहीं करता, लेकिन उस पर अगर आपके एफिड लगा होगा, व्हाइट फ्लाई वगैरह लगी होगी, तो उनके ऊपर वो हमेशा जो है भोजन उनके रूप में लेता है, उस अवस्था में उसको खत्म कर देता है। तो शत्रु कीट जो है आपको फसलों में मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मित्र कीट बहुत कम अवस्था में मिलेंगे। इसीलिए हम मित्र कीट का जो है प्रजनन आर्टिफिशियली लैब में करते हैं और फिर इसे जो है हम अप्लाई करते हैं फील्ड में।
1: जी बिल्कुल। तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि कौन कौन से मित्र कीट और मित्र फंगस को हम जैव नियंत्रण में प्रयोग करते हैं।
0: मित्र कीट जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी दो प्रजाति के टाइप तो हमारे मित्र कीटों के होते हैं, और मित्र फंगस जो हम तीन टाइप की कर रहे हैं जो हम अपनी लैब में कर रहे हैं। जो हम मित्र कीट जो कर रहे हैं उसमें हमारे परजीवी हैं, जो हम परजीवी हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ट्राइकोग्रामा है। ट्राइकोग्रामा की हमारी चार स्पीसीज हम यहाँ पे अपनी लैब में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि ट्राइकोग्रामा एम्ब्रियोफेगम है, ट्राइकोग्रामा प्रिटियोसम है, ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम है, और ट्राइकोग्रामा चिलोनिस है।
1: जी
0: ये चार टाइप हम जो है ट्राइकोग्रामा की अपनी लैब में तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक और परजीवी है चिलोनिस ब्लैकबर्नी, वो भी एक एग पैरासिटॉइड है जो कि अंडों के ऊपर परजीवी है, वो भी वो हम चिलोनिस ब्लैकबर्नी भी हम यहाँ पे लैब में तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे कह सकते हैं शिकारी कीड़े, उसमें हम रेडोविड बग कर रहे हैं, एंथोकोरिड कर रहे हैं, और इसके अलावा हम एफलेनिस माली भी तैयार कर रहे हैं, जो कि वुली एप्पल के लिए बहुत ही असरदार है और वो वुली एप्पल को डायरेक्ट जो है उसको प्रिडेट करता है। उसके अलावा जो मित्र फंगस है उसमें हमारी बवेरिया बेसियाना हम तैयार कर रहे हैं, मेटरिजियम कर रहे हैं, और ट्राइकोडर्मा कर रहे हैं। ये तीन फंगस जो है हम अपनी लैब में तैयार कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब आजकल के समय की यदि बात करें तो आजकल के मौसम में, बरसात के मौसम में, हमारे बागवान भाई कौन कौन से कीटों का प्रयोग, यानी कि कौन कौन से जो मित्र कीट हैं उनका प्रयोग अपनी बागवानी में कर सकते हैं, जिससे उनको अपनी बागवानी में अधिक उत्पादन प्राप्त हो और उनका मुनाफा भी बढ़े।
0: हाँ जी देवेंद्र जी, आजकल हमारे बागवान जो है हमारे से एंटोमोपैथोजेनिक निमाटोड्स ले जा सकते हैं, इनका भी हम प्रोडक्शन जो है अपनी लैब में कर रहे हैं। ये जो है एंटोमोपैथोजेनिक निमाटोड्स, ये हमारे जो रूट बोरर है जो सेब में और जो कि और भी फ्रूटों में लगते हैं, उसके लिए काफी फायदेमंद है। तो ये एक तरह से एक निमाटोड है जो कि मतलब सूत्र क्रीम बोलते हैं इनको,
1: जी
0: जो कि आम नजर से हमारे को नहीं दिखते, वो माइक्रोस्कोप के नीचे ही हमारे को देखने पड़ते हैं। इनकी भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और इनको जो है बागवानों को हम मिट्टी में मिला के देते हैं, और इस मिट्टी का उन्होंने प्रयोग करना होता है अपने बगीचे में, अपने तौलियों में जहाँ पे रूट बोरर का अटैक है, तो वहां पर इनका प्रयोग किया जा सकता है और इससे जो है काफी फायदा पहुंचता है। अगर बागवान डायरेक्ट इसको अपने तौलियों में नहीं प्रयोग करना चाहते तो अपने गोबर में भी इसको मिक्स कर सकते हैं, तो गोबर में जो है इनकी तादाद अपने आप बढ़ेगी,
1: जी
0: क्योंकि गोबर में भी उसी तरह का एक व्हाइट कलर का कीड़ा होता है, उसकी शरीर में जो है ये पनपते हैं और ये पूरे गोबर में फैल जाएंगे, और ये इस गोबर को आप सर्दियों में बागवान जो है अपने खेतों में या अपने बगीचों में डाल सकते हैं, जिससे कि रूट बोरर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल जो है फ्रूट फ्लाई का भी अटैक काफी आता है, जो कि उसमें फ्रूट के ऊपर जैसे कि हमारे आपके अमरूद हो गया, आम हो गया, ये जो निचली क्षेत्र में हमारी बागवानी होती है उसमें जो है फ्रूट फ्लाई का काफी अटैक आता है, तो उसके लिए भी हम जो है एक ल्यूर बना रहे हैं, मतलब अट्रैक्टेंट बना रहे हैं वहां पे अपनी लैब में, मिथाइल यूजिनॉल ल्यूर, वो बागवान हमसे ले जा सकते हैं और उसको अपने बगीचों में इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो मेल फ्रूट फ्लाई होती है वो अट्रैक्ट होती है उस ल्यूर को, जो हार्मोन है उस ल्यूर के अंदर, और उसके अंदर हमने जहर मिलाया होता है, तो और उसको वो चाटती है और वो मर जाती है। जब फ्रूट फ्लाई मर जाती है तो उनकी प्रजनन की साइकिल जो है टूट जाती है, और उससे जो है फ्रूट फ्लाई की पॉपुलेशन कम होती जाती है, और उससे हमारे को फ्रूट को जो है हम बचा सकते हैं। तो ये दो चीजों का आप तो प्रयोग बागवान कर ही सकते हैं। उसके अलावा आजकल जो है वुली एप्पल का भी काफी अटैक बगीचों में आ रहा है, तो उसके लिए भी हमारे से जो है बागवान एफलेनिस माली ले जा सकते हैं, वो भी एक प्रीडेटर है जो कि डायरेक्ट जो है वुली एप्पल एफिड को खत्म करता है, तो ये इन चीजों का प्रयोग अभी बागवान कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अनार की कोई बागवानी कर रहा है तो उसमें जो है आपने देखा होगा कि अनार में अनार बटरफ्लाई का काफी अटैक होता है, एक अनार की तितली होती है, वो अनार की तितली जो है वो अंडे देती है फ्रूट के ऊपर, और वो जो है सुंडी बन के फिर फ्रूट्स को खत्म कर देती है अनार, तो अनार के लिए भी ट्राइकोग्रामा कार्ड्स हमारे से ले जाए जा सकते हैं, हमारी लैब से वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपने बगीचों में इंस्टॉल करके उसका भी काफी अच्छा फायदा बागवान ले सकते हैं।
1: तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि यदि कोई किसान या बागवान भाई आपसे मित्र कीट अथवा मित्र फंगस को प्राप्त करना चाहता हो, तो वो किस प्रकार से और कहाँ से आपसे मित्र कीट और मित्र फंगस प्राप्त कर सकते हैं?
0: रविंद्र जी, ऐसे तो हमारी प्रयोगशाला शिमला में बनी हुई है, वहाँ पे हम मित्र फंगस और मित्र कीटों का प्रजनन व प्रोडक्शन कर रहे हैं, फार्मर बागवान हमारे से आके वो ले जा सकते हैं, या दूर दराज के क्षेत्र हैं कि या फिर दूर दराज है बागवान नहीं हम शिमला आ सकते या हमारे पास नहीं आ सकते, तो वो अपने नजदीकी ब्लॉक में उद्यान विकास अधिकारी व विशेषज्ञ उद्यान भी बैठते हैं हर ब्लॉक में हिमाचल में, तो उनके थ्रू उनको हम ये डिमांड दे सकते हैं अपनी मित्र कीटों की या मित्र फंगस की, तो उनके थ्रू वो डिमांड हमारे पास आ जाएगी, तो हम वो प्रोड्यूस करके वो प्रोडक्शन करके उनको पहुंचा सकते हैं उद्यान विकास अधिकारी और विशेषज्ञ उद्यानों के थ्रू।
1: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बातचीत के अंत में आपसे अब ये जानना चाहेंगी कि यदि आप सभी किसान और बागवान भाइयों बहनों को कोई संदेश देना चाहते हैं, तो आप वो संदेश क्या देना चाहेंगे?
0: मेरा तो यही संदेश होगा कि मित्र कीटों का प्रयोग करने से पहले मित्र कीटों की पहचान करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मित्र कीट जो है बहुत कम क्वांटिटी में हमारे और नेचुरल कंडीशंस में हमारे बगीचों में होते ही होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे लेडी बर्ड बीटल या तोता मामा हमारे बगीचों में होते ही होते हैं, हमें उनको कंजर्व करना है, हमें रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कम से कम करना है ताकि इनकी पॉपुलेशन जो है बढ़े हमारे बगीचों में, और ये जो अपने आप ही शत्रु कीटों को कंट्रोल करने में सहायक हो। ऐसा हो सकता है कि अगर हम मित्र कीटों का ही प्रयोग करें या नेचुरल फार्मिंग ही करें तो उससे क्या हो सकता है कि कुछ टाइम तक तो हमारी पैदावार कम भी हो सकती है, लेकिन हमारे को वो लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। एक और है कि हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है अपनानी पड़ेगी कीट प्रबंधन के लिए, जिसमें हमें हर एंगल से हमारे को कीट प्रबंधन करना पड़ेगा, उसमें रासायनिक दवाइयों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, मित्र कीटों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब हमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि किस अवस्था में हमें मित्र कीट यूज करने हैं, किस अवस्था में हमें रासायनिक दवाइयां यूज करनी है, ताकि रासायनिक दवाइयों का अधिक भी हमें उपयोग ना करें, क्योंकि रासायनिक दवाइयों का ज्यादा उपयोग करते हैं तो हमारे जो शत्रु कीट है उनमें भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। जहां पे हमारी दवाई पहले कुछ की डोज थोड़ी कम लगती थी, उससे वो दुगनी तिगनी हो चुकी है अभी। तो इसको हमें को ध्यान में रखते हुए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमारे को लानी पड़ेगी, एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है हमारे को उपयोग में करना पड़ेगा, जिसमें मित्र फंगस, मित्र कीट, रासायनिक दवाइयाँ और भी मतलब मैकेनिकल कंट्रोल भी हम यूज करें, ताकि हम शत्रु कीटों की पॉपुलेशन को कम से कम कर सकें।
1: तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने जैव नियंत्रण का बागवानी फसलों में उपयोग और महत्व के विषय में हमारे सभी श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान बागवान श्रोताओं, अभी आपने सुना जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था जैव नियंत्रण का बागवानी फसलों में उपयोग और महत्व। इस जानकारीपूर्ण बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा और उनसे अधिक जानकारी हासिल कर रहे थे देवेंद्र कुमार।
3: तो रविंदर, अब हमारे किसान बागवान भाई बहनों को क्यों ना एक और लोकगीत सुनवा दिया जाए।
2: जी,
3: तो आइए महेंद्र राठौर की आवाज में सुनते हैं ये लोकगीत।

0: किसान बागवान श्रोताओं, अभी आपने सुना महेंद्र राठौर की आवाज में ये मधुर सा लोकगीत।
1: इसी के साथ अब समय भी हो चला है हमारे इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने का। तो किसान वाणी कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:42 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: किसान वाणी कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडी वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा,
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल,
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे,
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सुना है हिमाचल के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना फिर शुरू होने वाली है?
4: हाँ बिल्कुल, जनगणना 2027 का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर 2026 तक होगा और 17 से 31 अगस्त तक se-snowbound.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी स्वयं भर सकते हैं। उसके बाद प्राप्त होने वाली SE ID को संभाल कर रखें और घर आने वाले प्रगणक को देना ना भूलें।
3: मैं अभी अपनी स्वगणना पूरी करती हूँ।
4: आप भी आज ही अपनी स्वगणना पूरी करें।
5: हाँ!

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश में 18 सरकारी विभागों में नहीं लग रही

0: बायोमेट्रिक हाजिरी, फील्ड स्टाफ के लिए व्यावहारिक नहीं व्यवस्था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार ने भाजपा कार्यकाल के कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाई व्हाइट पेपर कमेटी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच सियासी टकराव जारी, एक दूसरे के खिलाफ किया प्रदर्शन। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कुलाधिपति अंतर विश्वविद्यालयी विकसित भारत 2047 परिषद टास्क फोर्स के गठन करने की घोषणा की और वैश्विक साइकिल यात्री सोमेन देवनाथ ने युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आग्रह, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की दैनिक हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन या ऑनलाइन माध्यम से दर्ज नहीं हो रही है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। सरकार के अनुसार इसके पीछे फील्ड कर्मचारियों की ड्यूटी का स्वरूप दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट व नेटवर्क की कमी, बिजली की समस्या और कई कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध नहीं होना प्रमुख कारण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 विभागों के तहत आने वाले बोर्डों, निगमों के कार्यालयों और संस्थानों में कर्मचारियों की दैनिक हाजिरी बायोमेट्रिक या ऑनलाइन माध्यम से नहीं लग रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न विभागों में फील्ड कर्मचारियों के सामने अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। ऐसे में कई जगह फील्ड में तैनात कर्मचारियों के लिए कार्यालय पहुंचकर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना व्यावहारिक नहीं है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान बेरोजगारी और आउटसोर्स भर्तियों के मुद्दे पर पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से बाहर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर युवाओं के साथ ठगी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का करीब 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन युवाओं को अब तक रोजगार नहीं मिला। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन सरकार शुरू से अंत तक झूठ बोलती रही।
1: गारंटी ये थी कि 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में निकाल दी जाएंगी, 1 लाख नौकरियां 1 साल में और 5 लाख नौकरियां 5 साल में। जिस प्रकार से आज प्रश्न लगा था स्थगित प्रश्न, उसमें रोजगार से संबंधित और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के उसमें हमने बातें पूछी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शुरू से अंत तक झूठ ही झूठ।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उनकी सरकार ने भाजपा कार्यकाल के कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए व्हाइट पेपर कमेटी बनाई है। ये कमेटी जांच के बाद सामने आए तथ्यों को जनता के समक्ष रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सदन में बिना मुद्दे की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान रोजगार पर करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई, लेकिन इसके बाद भाजपा विधायक दल ने वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा मौका दिया था और चर्चा भी करवाई गई, इसके बावजूद अतिरिक्त सवाल पूछने की जिद करना और फिर सदन से बाहर चले जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: विपक्ष के पास कुछ नहीं रह गया, जो नोटों से भरे टैची जो है वो बीजेपी के दफ्तर से मिले। इस प्रकार के जो कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया भी आपने देखा ना, ये सारे जो इन्होंने गलत काम किए वो सारी चीजों को हम जनता के दावत करते हैं। हमारी एक व्हाइट पेपर कमेटी बनी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया उस भ्रष्टाचार को जनता की अदालत में रखने का दायित्व हमारी सरकार का। कोशिश कर रहे हैं कि जो भी तथ्य हमारे पास है वो जनता की अदालत में रखें।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
3: पापा जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया।
4: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
5: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं, तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
6: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये क्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी आज सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव देखने को मिला। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और हाथों में तख्तियां लेकर गंभीर आरोप लगाए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
7: मानसून सत्र के चौथे दिन भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हंगामा देखने को मिला और दोनों पक्षों ने आमने सामने आकर नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। विपक्ष ने हिमकेयर और सहारा योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं का आरोप है कि इन योजनाओं को कमजोर या बंद किए जाने से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है और गरीब व जरूरतमंद लोगों से मुफ्त इलाज की सुविधा छीनी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष के प्रदर्शन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को अब से ही विपक्ष में बैठने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
1: बेसिक सुविधाएं स्वास्थ्य की है, उस पर ध्यान नहीं। हिमकेयर सहारा योजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ऐसी योजना जिसको बच्चा बच्चा जान, लेकिन उसके बावजूद बेसिक सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य की जिस प्रकार से उपलब्ध होनी चाहिए गरीब लोगों के लिए, और झूठा प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उन योजनाओं की जनहित की योजनाओं के खिलाफ जिस प्रकार से चलाया है, हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हैं? सरकार आपकी है। अगर आप कोई काम अच्छा नहीं हो रहा तो आप सरकार के सामने अपनी बात रखिए, वहाँ शायद इनकी बात सुनी नहीं जाती, सुनी जाती तो मानी नहीं जाती। ऐसी स्थिति में ये विवश होकर के सड़कों पर उतर आए हैं।
7: दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने महंगाई और भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर विपक्ष को बात करनी चाहिए, लेकिन इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आगामी चुनाव लड़ेगी और विपक्ष को सत्ता में वापसी के ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए।
8: ये विधानसभा फेस नहीं कर सकते। पहले दो हफ्ते या तीन दिन इन्होंने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में उलझा दिए, जबकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को एक पीरियड में देखते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी सदन चलाना चाहती है और ये सदन रोकना चाहती है। ये तो ओपीएस के विरोधी है। हमने 136,000 कर्मचारियों को ओपीएस दी, सबसे बड़ा फैसला किया। इनकी चिंताएं बढ़ रही है, उन चिंताओं के चलते हताशा में ये नारेबाजी कर रहे हैं। और
7: कुल मिलाकर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी सदन के भीतर और बाहर सियासी पारा चढ़ा रहा। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को एक साझा मंच पर लाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कुलाधिपति अंतर विश्वविद्यालय विकसित भारत 2047 परिषद अथवा टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। लोकभवन शिमला में हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज राज्यपाल ने ये घोषणा की। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को 10 दिनों के भीतर 100 दिवसीय रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। 191 देशों, 7 महाद्वीपों की 2 लाख किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने वाले वैश्विक साइकिल यात्री सोमेन देवनाथ ने शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से शिष्टाचार भेंट की। सोमेन देवनाथ पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के निवासी हैं और वे पिछले करीब 22 वर्षों से साइकिल के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों की यात्रा कर रहे हैं। इस बीच सोमेन देवनाथ ने आज आकाशवाणी शिमला के प्रादेशिक समाचार एकांश प्रमुख रितेश और कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा से भी भेंट की और साइकिल यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के अपने भ्रमण के अनुभव साझा किए। सोमेन देवनाथ ने युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार पर भी बल दिया।
9: मैं 19 साल में 191 देश का यात्रा किए और ये यात्रा का मेन मकसद है एड्स के बारे में नई पीढ़ी को समझाना और साथ साथ भारतीय संस्कृति के बारे में बताना। ये 2 लाख किलोमीटर का सफर था और 191 देश पूरा दुनिया में। अभी मैं पूरा भारत में एक सफर कर रहा हूँ जिसके मेन मकसद है रियूनियन भारत, वन ट्री वन लाइफ एंड इंडियन यूथ एंड स्पोर्ट्स। ये मैसेज लेके मैं 1 साल का पूरा यात्रा संपन्न करना चाहता हूँ, जो 28 राज्यों और 5 यूनियन टेरिटरी का सफर होगा।
0: मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि सहकारी सभाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन स्तर पर कार्य करती हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से आम लोगों से जुड़ी होती हैं। हमीरपुर में आज राज्य सहकारी विकास संघ के जिला स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने ये बात कही। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते लगभग 4 वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सहकारी सभाओं के हितों की रक्षा के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिले के लिए अनेक बड़े संस्थान मंजूर किए हैं और प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा भी हमीरपुर में बनाया जा रहा है, जो जिला वासियों के लिए गर्व की बात है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 18 सरकारी विभागों में नहीं लग रही बायोमेट्रिक हाजिरी, फील्ड स्टाफ के लिए व्यावहारिक नहीं व्यवस्था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार ने भाजपा कार्यकाल के कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाई व्हाइट पेपर कमेटी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच सियासी टकराव जारी, एक दूसरे के खिलाफ किया प्रदर्शन। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कुलाधिपति अंतर विश्वविद्यालय विकसित भारत 2047 परिषद टास्क फोर्स के गठन करने की घोषणा की और वैश्विक साइकिल यात्री सोमेन देवनाथ ने युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आग्रह, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार पर दिया बल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
11: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
10: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
11: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
10: जानकारी लें, अधिकार जाने।
11: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
10: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
12: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। देश गान सुनिए।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से विधानसभा समीक्षा रिले की जाएगी।
1: लुकिंदर बेगटा, ब्यूरो प्रमुख, आज समाज शिमला। वाचक स्वर प्रभा शर्मा।
2: प्रदेश विधानसभा में आज सदन का माहौल जहां प्रश्नकाल के दौरान हंगामेदार रहा, वहीं दोपहर बाद सदन की कार्यवाही शांत माहौल में चली। सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान रोजगार के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक भी हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से मिले जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य और अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते थे, लेकिन एक सवाल पर बहुत समय लग जाने के बाद अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिस पर विपक्ष बिफर गया और सदन में नारेबाजी करने लगा। विधानसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल जारी रखा और कुछ देर बाद विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जहां पदों की जरूरत होगी राज्य सरकार उसे भरेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्स आधार पर लगे कर्मचारियों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इसके लिए भी सरकार नीति बनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि फंक्शनल पद वर्तमान सरकार के समय से नहीं बल्कि पूर्व सरकार के समय से खाली हैं। मौजूदा सरकार ने केवल खाली पदों को भरने के साथ साथ युक्तिकरण की प्रक्रिया को अपनाया है। विधायक जीतराम कटवाल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के मूल सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी तरीके से कार्य कर रही है और लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग में भर्तियों की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए सरकार ने स्वरोजगार की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के खाली पदों को भरा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना से कोई पैसा नहीं मिला है और जो पैसा मछुआरों को दिया गया है वो राजीव गांधी मत्स्य योजना के तहत दिया गया है। इससे पहले विधायक जीतराम कटवाल ने पूछा कि गत दो वर्षों में 30 नवंबर 2024 तक विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों की कुल कितनी रिक्तियां हुई। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख पक्की नौकरी देने की बात कही थी। ये लोगों से किया गया वायदा है और 4.25 साल के कार्यकाल में हिमाचल में 4 लाख रोजगार होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस में 3,753 पद खाली हैं, जल शक्ति विभाग में 517 पद, राज्य बिजली बोर्ड में 3,635 पद, लोक निर्माण विभाग में 2,768 पद, उच्च शिक्षा में 3,432 और प्राइमरी में 10,853 पद और स्वास्थ्य विभाग में 1,298 पद खाली हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोई भर्ती नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि फंक्शनल पदों को भरने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में पुलिस की एक भर्ती निकली थी और उसमें भी पेपर लीक हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस के 1,350 पद भरे हैं और 1,000 पदों की भर्ती शुरू हो गई है। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल पर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उनकी सरकार सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा को जीरो वेटिंग पर लाने के लिए कार्य कर रही है और जल्द ये सुविधा प्रदेश के सभी प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में मिलनी आरंभ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन थी और इसे सरकार ने बदला है। एमआरआई 3 टेस्ला मशीन चमियाणा, टांडा, नेरचौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए खरीदी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई है और एम्स से 1 करोड़ रुपए सस्ती दर पर रोबोटिक सर्जरी उपकरण खरीदे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल उत्तर भारत का पहला राज्य है जहां सरकारी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी से 100 से अधिक ऑपरेशन किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक रोबोटिक सर्जरी का खर्चा 1,30,000 रुपए आता है और ये सरकार खर्च कर रही है। मरीजों से इसके एवज में 30,000 रुपए ही लिए जा रहे हैं। स्पेशल वार्ड के मरीज से 50,000 रुपए लिए जा रहे हैं। चमियाणा अस्पताल में इसके 80,000 रुपए लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लैब का ऑटोमेशन के लिए टेंडर कर दिया गया है और 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधायक किशोरी लाल के सवाल के जवाब में कहा कि परौर से पधर तक फोरलेन सड़क के निर्माण कार्य के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य कंसल्टेंट की तैनाती कर दी है। उन्होंने कहा कि सड़क की अलाइनमेंट का कार्य अभी प्रारंभिक स्तर पर है। सड़क निर्माण कार्य के आरंभ होने की समय सीमा और वास्तविक स्वरूप व कार्य क्षेत्र के संबंध में स्पष्ट जानकारी डीपीआर के तैयार और स्वीकृत होने के पश्चात ही उपलब्ध हो सकेगी। विधायक राकेश कालिया, विनोद सुल्तानपुरी, संजय अवस्थी, मलेंद्र राजन, रामकुमार चौधरी, हरदीप सिंह बाबा ने भी अपने अपने सवाल पूछे। सदन में आज शून्यकाल में विधायक डीएस ठाकुर, प्रकाश राणा और लोकेंद्र कुमार ने जनहित के मुद्दे उठाए। प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में विशेष वक्तव्य में खुलासा किया कि गग्गल एयरपोर्ट के नजदीक भूमि के बेनामी सौदों का पता चला है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच में एयरपोर्ट के समीप भूमि के संदिग्ध बेनामी सौदों को लेकर 9 स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई हैं। इन मामलों की विजिलेंस जांच की जा रही है और 4 मामलों में एसआईटी द्वारा विजिलेंस में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आए मामलों को हिमाचल प्रदेश काश्तकारी व भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए संबंधित जिलाधीशों को भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीब की जमीन, सरकारी धन और हिमाचल के हितों की रक्षा करेगी। इस बीच सदन में आज बाजार में बिक रहे नकली पीजीआर और इससे बागवानी पर हो रहे प्रभाव का मामला भी गूंजा। विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने नियम 62 के तहत ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बाजार में बिक रहे नकली पीजीआर के कारण प्रदेश की 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की सेब आधारित आर्थिकी संकट में है। उन्होंने विदेशों से आ रहे इस प्रतिबंधित रसायन को साजिश करार दिया और कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने सेब के लिए न्यूनतम 15 रुपए समर्थन मूल्य की मांग भी की और कहा कि एमआईएस के तहत 200 बोरी बेचने तक बागवानों से जमीन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाने चाहिए। इस पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किसानों बागवानों से खुले बाजार में बिक रहे नकली पीजीआर से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने माना कि खुले बाजार में कुछ नकली पीजीआर मिल रहे हैं और किसान बागवान इनके झांसे में आ रहे हैं। बागवानी मंत्री ने बीमारी वाले प्लांट मटेरियल के मुद्दे पर कहा कि सरकार ने राज्य में बिना क्वारंटीन रूट स्टॉक लाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद चोर रास्तों से अभी भी ये रूट स्टॉक प्रदेश में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि बागवानी विभाग खुद किसानों को ब्रांडेड दवाइयां बेचेगा। जगत सिंह नेगी ने सेब को सबसे अधिक खतरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और मौसम की मार से बताया और कहा कि इससे बागवानों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक पवन काजल द्वारा नियम 62 के तहत गग्गल में भूमि अधिग्रहण, विस्थापन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व पुनर्स्थापन बारे लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कहा कि सरकार गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार से प्रभावित और विस्थापित होने वाले हरेक परिवार को मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि भू अधिग्रहण प्रक्रिया से मुआवजा लेने से वंचित परिवारों को राहत व पुनर्वास योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गग्गल एयरपोर्ट में भू अधिग्रहण और प्रभावितों के पुनर्वास व राहत प्रदान करने पर कुल 33,349 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। सदन में आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार दूसरे दिन भी चर्चा जारी रही। नियम 130 के तहत लाई गई चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हुए और दोनों पक्षों के बीच बहस भी हुई। सत्ता पक्ष ने सुक्खू सरकार के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कार्यों को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई, वहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि रोबोटिक सर्जरी की बात करने वाली कांग्रेस सरकार अस्पतालों में पैरासिटामोल भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। विधायक रणधीर शर्मा ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को फार्मासिस्ट हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन प्रदेश में आए दिन दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हिमकेयर में घोटाले की बात कर रही है, जबकि पूर्व सरकार ने करीब 400 करोड़ रुपए खर्च कर लोगों को उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई थी।
1: विधानसभा समीक्षा अभी आपने सुनी। लुकिंदर बेगटा, ब्यूरो प्रमुख आज समाज शिमला, और वाचक स्वर प्रभा शर्मा का था। ये
3: अरे वाह, न्यू कार, प्रमोशन मिल गया क्या?
4: प्रमोशन नहीं, ट्रू वैल्यू मिला।
3: मतलब प्रीमियम लुक, प्रीमियम प्राइस भी।
4: प्रीमियम लुक तो है, पर प्राइस एकदम रीजनेबल, वो भी लो डाउन पेमेंट और इजी ईएमआई ऑप्शंस के साथ। मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू पे पाएं ग्रेट ऑफर्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी प्री ओन्ड कार्स विद अप टू 1 ईयर वारंटी एंड 3 फ्री सर्विसेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर नियरेस्ट ट्रू वैल्यू डीलरशिप और लॉग ऑन टू www.marutisuzukitruevalue.com। TNC apply।
0: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:11 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

0: इसी के साथ आज का सबरस कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: लीजिए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और 9 न्यूज एट 9 रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से $200 अरब की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण

0: मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: उम्मीद 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: सीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
6: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दो दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
7: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
8: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में दो बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण

0: समर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. Defence Minister Rajnath Singh says missile technologies developed by DRDO to be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal pitches the country as a global data center hub, highlights $200 billion investment commitments from global hyperscalers. And in men's cricket, host Sri Lanka trailed by 238 runs against India in first innings as rain forces early stumps on day 3 of Colombo Test. The Unified Payments Interface, UPI, has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The finance ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore rupees to nearly 314 lakh crore rupees during the same time period. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling upon the countrymen to share their UPI experience, the Prime Minister stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. Our correspondent reports that by bridging the digital divide, advancing financial inclusion and expanding access to digital financial services, UPI has empowered individuals and communities across the country while driving broad-based economic participation.
3: Today, one out of every two real-time digital payment transactions globally happens in India. As of 2025, UPI accounts for nearly 49% of the world's real-time payment transaction volume. Last month, over 23 billion transactions were recorded through UPI across the country. UPI has emerged as the backbone of India's digital payment ecosystem and a critical driver of financial inclusion. The unprecedented scale achieved by UPI have also received global recognition. UPI is now operational across 11 countries, including France, Singapore, UAE, Sri Lanka, Bhutan, and Mauritius. Talking to Akashvani News, a Delhi-based shopkeeper, Yogesh, said that UPI has made payments convenient and hassle-free.
4: I have been using UPI for the last 10 years, and ever since I started using it, I have never faced any problem with change or loose cash. The biggest advantage is that whether a person has money in their wallet or not, they always have UPI on their mobile. So this is a great benefit.
3: A resident from Bihar, Sanu Bharti, said,
5: UPI has enabled people across the country to easily transfer money digitally, either to their bank accounts or directly to another person. With the help of UPI, even ordinary people, vegetable vendors and street vendors can now make and receive payment easily.
3: In just a decade, UPI has transformed the scale of digital payments in the country, making transactions faster, simpler, and more accessible. With Dipendra and Rishu, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: In Maharashtra, Deepti Sharma, a homemaker from Mumbai, said UPI has made everyday payments quick and convenient.
6: I like UPI payments for all kinds of transactions because it's instant. It doesn't have any hidden fees. And the best part of it, that it is not, besides being safe and secure, it is very easy and user-friendly. You just need your phone and you're sorted.
2: Shailesh Rambhia, who runs a retail shop in South Mumbai, praised UPI for transforming the way businesses operate.
7: UPI is a great thing. Earlier, customer had a problem. They didn't have cash. We didn't have change. Now, money is directly transferred to the bank. So, the problem of depositing cash in the bank is solved.
2: Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to the country's private defence industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defence ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. More from our correspondent.
8: The provision will enable successful transition of missile system development to industrial production, reflecting the continued efforts of DRDO to leverage the capabilities of the Indian industry for the development and manufacture of advanced defense systems. The objective is to enhance domestic manufacturing capabilities, strengthen the defense industrial base, and create opportunities for the participation of Indian MSMEs and other technology partners in the supply chain. The initiative aims to enhance operational capability, reduce import dependence, and increase domestic value addition. DRDO has expressed commitment to working closely with Indian industry to facilitate the transfer and absorption of advanced defense technologies and to further strengthen the country's indigenous defense capabilities. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
9: National Security Advisor Ajit Doval today held special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing on the India-China boundary issue and improvement of relations between the two countries. The talks assume significance as they are being held ahead of Chinese President Xi Jinping's anticipated visit to New Delhi to attend the BRICS summit on 12th and 13th of September.

श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं पार्श्व गायक केके के बारे में। दोस्तों, केके को उनके बेहतरीन गानों के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले और कई बार वे नॉमिनेटेड भी हुए थे। और उनके अवार्ड्स की अगर बात करें तो वर्ष 1999 में उनके गैर फिल्मी एल्बम के गाने पल के लिए उन्हें बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड मिला था, और वर्ष 2009 में फिल्म बचना ए हसीनों के लिए खुदा जाने गीत के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। साथ ही उन्हें वर्ष 2006 में फिल्म इकबाल के गाने आशाएं के लिए भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। तो आइए सुनवाते हैं आपको उन्हीं का गाया हुआ एक और प्यारा सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, केके को फिल्म फेयर अवार्ड में 6 बार बेस्ट मेल प्ले सिंगर प्लेबैक सिंगर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जिसमें हम दिल दे चुके सनम, हम राज 10, ओम शांति ओम और बचना ए हसीनो जैसी फिल्में थी। और उन्हें कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड साउथ भी उन्होंने जीता था, और तमिल गानों के लिए उन्हें

एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हिमाचली गीतों व लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी।

राज प्रभाकर और कौशल्या देवी की आवाज़ों में आपने ये लोकगीत सुना। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं रामलाल तुल्ली की आवाज़ में।

रामलाल तुल्ली की आवाज में आपने ये लोकगीत सुना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धाम गीतांदी। तो अगला लोक माफ कीजिएगा अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं लालचंद की आवाज में।

ओम प्रकाश व साथियों की आवाजों में अभी आपने ये लोकगीत सुना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धाम गीतांदी।

आप सुन रहे थे ये लोकगीत नेक सिंह ठाकुर की आवाज़ में। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धाम गीतांदी। और अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं बलदेव सांख्यान का गाया हुआ।

स्वरचला और साथियों की आवाजों में गाए इस लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धाम गीतांदी। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 10:30 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

बनफूल फिल्म के इस गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल हैं हसरत जयपुरी के और धुन बनाई है शंकर जयकिशने और फिल्म है सपनों का सौदागर।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनते हैं आनंद बख्शी के बोलों को। आवाज़ है अमित कुमार की और फिल्म है बालिका वधू।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
1: गीत फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएँ मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली UPI ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने UPI को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने UPI अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि UPI की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत

0: पाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decade-long success of UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to country's private defence industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defence ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. India Today highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the special representative talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry said in a statement that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between the leaders in Kazan in October 2024 and Tianjin in August last year. The government is closely monitoring the prevailing seasonal respiratory illness trends across the country through a robust pan-India surveillance network. It stressed that there is no cause for panic or alarm. Secretary of the Department of Health Research and Director General of the Indian Council of Medical Research, Dr. Rajiv Behel, was addressing the media in New Delhi today. He said the influenza viruses currently circulating in the country are consistent with the seasonal patterns observed in recent years. The Supreme Court today agreed to consider setting up a special bench to hear the centre's plea on OBC creamy layer criteria. The center has sought clarification on the applicability of the 11th of March judgment of the Apex Court for candidates of the Civil Services Examination 2025. The Delhi government has said there is currently no shortage of onions or sugar in the capital. Delhi Chief Minister Rekha Gupta reviewed their availability and prices in the national capital today. Government said if the prices rise further, it will procure onions and sugar from a central government institution, NAFED, and arrange to make them available at various locations across the capital. It is also assured that the items will be sold at the procurement price, while the Delhi government will cover transportation and other related costs. The government has debunked claims circulating on social media that the central government will provide 1 year of free mobile recharge to all women on the occasion of Raksha Bandhan. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, said that the video is fake. The PIB said that no such announcement has been made by the central government. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 265 for 8 against India in their first innings as rain forced early stumps on day 3 of Colombo Test, Sri Lanka trailing by 238 runs. Earlier, visitors declared their first innings at 503, powered by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal's centuries. India are currently leading the two-match series 1-0. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Chhattisgarh and East Rajasthan tomorrow. Meanwhile, parts of Delhi NCR witnessed light to moderate rain during the day. IMD has said that cloudy sky conditions will continue to prevail over Delhi with spells of light to very light rainfall for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
2: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रमों का प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। कल के कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।